आप सुनते हैं श्री रामचरित मानस से संगीतमय प्रस्तुति। आज आप सुनेंगे बालकांड भाग 83।

राजा जनक की नगरी देखने के क्रम में पुरवासियों के मन मोहते हुए श्रीराम अपने अनुज लक्ष्मण के साथ नगर के पूर्व भाग में पहुंचते हैं, जहां धनुष यज्ञ की रंगभूमि की रचना की गई है। जनकपुर के बालकगण बड़े उत्साह तथा आदर के साथ दोनों भाइयों को यज्ञशाला की रचना दिखा रहे हैं। श्रीराम ने अपनी मधुर मनोहर वाणी में अनुज लक्ष्मण को यज्ञ भूमि का परिचय दिया और दोनों भाई सारा कौतुक देख गुरु के पास लौट चले।

0: प्रशासनस्य वा राजनीतिकदलस्य परिधौ सीमितो नैवास्ति।
1: आज देश का हर नागरिक विकसित भारत के सपने से भरा हुआ है। विकसित भारत का सपना अब किसी एक व्यक्ति का नहीं रहा, किसी सरकार का नहीं रहा, किसी दल का नहीं रहा, देश के जन जन का सपना बन चुका है, संकल्प बन चुका है। और इस सपने की पूर्ति के लिए हमें अपना हर पल समर्पित करना है। एनडीए के 12 वर्षों की एक बड़ी सफलता ये भी है कि देश कांग्रेस के कुचक्र से आजाद हुआ है।
0: अस्मिन् अवसरे एनडीए घटक दलैः प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः ऐतिहासिक उपलब्धेः श्लाघनाय एकः संकल्प प्रस्तावः स्वीकृतः। एतदन्तरं सम्पूर्ण विश्वतः प्रधानमन्त्रिणे अभिनन्दन सन्देशाः आगच्छन्तः सन्ति। अमेरिकादेशस्य राष्ट्रपतिः डोनाल्ड ट्रम्पः यूरोपीय आयोगस्य अध्यक्षा उर्सुला वॉन डेर लेयेन, इटली देशस्य प्रधानमन्त्री जॉर्जिया मेलोनी, जर्मनी देशस्य चांसलर फेडरिक मर्ज, इजराइल देशस्य प्रधानमन्त्री बेंजामिन नेतन्याहू, कनाडा देशस्य प्रधानमन्त्री मार्क कॉर्नी सहैव दक्षिण कोरिया देशस्य राष्ट्रपतिः ली जे म्यूंग इत्यादयः प्रमुख वैश्विक नेतारः श्रीमोदिनं प्रति वर्धापन प्रेषितवन्तः। संस्कृति मन्त्रालयेन गतवर्षस्य कृते संगीत नाटक अकादमी पुरस्काराः अथ च उस्ताद बिस्मिल्ला खान युवा पुरस्काराः घोषिताः। अकादमी संघस्य सामान्य परिषदा संगीत नृत्य रंगमंच पारंपरिक लोक जनजातीय कला वैविध्येभ्यः कलामंचं यावत् विविध क्षेत्रेभ्यः 88 प्रसिद्धाः कलाकाराः 24-2000 अथ च 25-2000 अकादमी पुरस्कारार्थं चिताः। एते चिताः पुरस्कार विजेतारः अशेषस्य हि देशस्य प्रतिनिधित्वं कुर्वन्ति। ये विभिन्न राज्येभ्यः केन्द्रशासित प्रदेशेभ्यः च सम्बद्धाः सन्ति। बैडमिंटन प्रतिस्पर्धायां सिडनी नगरे प्रचल्यमानायाः ऑस्ट्रेलियन ओपन स्पर्धायाः महिलानां वर्गे पीवी सिंधु तन्वी शर्मा च सफलताम् अवाप्य द्वितीय चक्रं प्रति प्रविष्टवत्यौ। इति वार्ताः।
2: Di sini siaran luar negeri All India Radio, saudara-saudara pendengar di seluruh Kepulauan Republik Indonesia dan di mana saja siaran kami ini dapat didengar. Penyiaran Anda Kishore Das bersama dengan semua staf seksi bahasa Indonesia dari studio di sini di ibu kota India New Delhi mengucapkan selamat pagi, selamat berjumpa kembali, ikutilah beberapa acara yang kami sajikan untuk pagi hari ini. Siaran kami ini setiap hari dapat Anda ikuti melalui dia gelombang 13.710 kHz pada jam 7-8 pagi waktu India, yaitu 8.30 hingga 9.30 waktu Indonesia bagian Barat. Beberapa acara yang kami sajikan untuk pagi hari ini adalah sebagai berikut: setelah sebuah uraian lagu instrumentalia, uraian yang lain lagi lagu rakyat, lagu-lagu non-film, dan akhirnya sari acara esok harinya. Sebuah uraian. Di agama Hindu, ada sejumlah buku peraturan adat istiadat yang menganalisa struktur sosial, jurisprudensi, dan nilai-nilai kehidupan. Ini memberi falsafah kehidupan yang dapat didefinisi sebagai studi normatif tentang lembaga-lembaga sosial dan perlakuan di masyarakat. Buku-buku ini membahas soal-soal terutamanya tentang pikiran logis dan berusaha menyediakan norma-norma yang memperbedakan antara apa yang baik dan apa yang buruk, dan yang adil dan yang tidak adil. Ketika menetapkan peraturan-peraturan, pengetahuan dasar memang memainkan peranan penting. Akan tetapi, otoritas dan dari peraturan-peraturan ini terletak pada asal-usul dari pengetahuan itu. Sebenarnya, orang-orang metodologis ilmu pengetahuan dewasa ini mengakui bahwa pematuhan ketat pada cara-cara ilmu pengetahuan yang terdiri dari observasi, klasifikasi, dan kesimpulan dengan sendirinya tidak sanggup membawa keputusan-keputusan bernilai atau memutuskan pertanyaan-pertanyaan harus dan tidak harus yang terkandung dalam teks-teks ini mencakup penilaian-penilaian etika walaupun ada atau tidak semua kemutakhiran, kehakiman, dan kerumitan-kerumitan ritualistik yang terkandung di dalam itu.

प्रधानमंत्री इंडिया प्रतामा जवाहरलाल नेहरू पर्णा मंगातकान आंडा बिरसा मंगेनाली कोंडिसी सवा नगारा डिंगान मलिहात स्टेटस परम्पुआन परम्पुआनिया सवागे उड़ांग तर प्लाजार पंडित नेहरू मंगुतारकान पर्यातान इनी उन्तुक आलासान यंग तपात पारा सात इंडिया मम्बुका लिम्बारान बारू बलियाव इंगिन मंगुलांग कम्बाली पर्यातान कयातान बाबा स्टेटस परम्पुआन डिडाला मासाराकात कीता अकान डिलिहात सवागे तोलोक उकुर डरी पम्बांगुनान डान का देवासान सवागे सबुआ बांगसा ओले सलुरु दुनिया तरुतामा सहिंगा कतिका इंडिया जाऊ सबलुम बराडा डिबावा ककवासान पारा पंजाजा या बिसा बरबांगा हाथी पाडा पंडिरियान सजाजार परम्पुआन डी डाला मासाराकात सबुआ श्लोका बरबहासा संस्कृता मनुंजुकान इनी यत्र नम्यस्ते पूज्यंते रमंते तत्र देवता यंग बरती तंपा डिमाना पारा परम्पुआन डिसंबा देवा देवा संडिरी तिंगाल डिसाना सजाकलामा हिंदू इंडिया तला मयंबा पारा देवी आपाका इतु दुर्गा काली लक्ष्मी अथवा सरस्वती देवा डालाम बंतुक परम्पुआन सलालू मंजडी सिम्बॉल ककवातान पयलामात ककायान पम्लाजारान डान पंगहांचुरान कजाहतान उन्तुक मंडापातकान सदिकित डरी परजालानान परम्पुआन परम्पुआन इंडिया सलामा बर वाक्तु वाक्तु मारिला कीता मुलाय डरी जामान कुनो इनी आडाला जामान यंग मंबरिकान इंडिया बबरापा चंडकियावान परम्पुआन तरबाइक सपर्ती गायत्री अनुसुया डान मैत्रेयी तीडा आडा परम्पुआन यंग डी लारांग उन्तुक मंगयाम पंडिडिकान आडाला डी एरा वेडुक डिमाना परम्पुआन पुन मंजालान कान तुगास तुगास क पंडिता आनिया इनी आडाला एरा यंग मंबरिकान परम्पुआन परम्पुआन हाक उन्तुक ममिली मित्रा हिडुपिया मलालुई स्वयंबरा बाइक इपोस रामायणा मापुन महाभारता।

मंचरिता कांतंतांग स्वयंवरा सीता डान द्रौपदी जुगा तीडा आडा रिचुअल डी जामान इंडिया कुनो यंग डी जालान कान तांपा स्त्री डी सांपिंग स्वामिया चरिता देवा रामा यंग मलाकु कान असुमेधा यज्ञ निगान मंगुकीर सबुआ पातुंग इमास स्त्रिया सीता उन्तुक मंगांतिकान कतीरा हडिरान सीता मरुपाकान चुंतो प्लांगरान अपपुन तरहरा हाक हाक परंपुआन अडला प्लांगरान सेरियस डिंगान कॉन्सिक्वेंसी कॉन्सिक्वेंसी बरात लागी बाइक महाभारत डान रामायण मंचरमिन कान इतु जिका प्रांग डी महाभारत तरजडी उन्तुक मंबालास डंडाम पंगहिनान कौरवा कपाड़ा द्रौपदी रातु डरी पारा पांडवा रामा बरप्रांग मलावान रावणा डान पासुकान्या उन्तुक मंग हुकुम्या कारेना तला मंचुलिक सीता वालापुन मामिली की समुआ इल्मु यंग तला डी प्लाजारिया रावणा हारुस तुंडु कारेना तला मलांगार हाकाक परंपुआन वालापुन परंपुआन तला मनिक मायती तंपात यंग तर होरमात डी एरा वेदिक इंडिया जामान परतंगहान बायाक मंचावुत हाखाक मरेका डी जामान इनी बायाक पंगवासा आन डरी लुआ डरी का दाटांगा डरी पारा पंजाजा मुस्लिम डिंगान समुआ परातुरानिया बायाक हालांगान डी तुजुकान बागी परंपुआन पारा सजारावान मलिहात जामान इनी सवागे जामान का ग्लापान बागी परंपुआन इंडिया कतिका बायाक कजाहतान सोशियल सपर्ति पर निकाहान आनाक प्लांगरान पर निकाहान लागी बागी जांडा जौहर सती कव्यासान देवदासी डी इंडिया स्लातान पुडा डान लाइन लाइन मन डिक्लरासी कान का हरिरानिया डी मासराकत इंडिया परंपुआन तीडा हया का हिलांगान हक हक पॉलिटिकिया तथापि जुगा का व्यवसान बर आगामा इनी मम पंगारूही पंडिडिकान डन स्टातुस स जाजार मरेका डी मासाराकात परंपुआन डी बुआत उन्तुक हिडुप डी अंतारा अम्पात तंबोक रूमा मरेका सुल्तान परंपुआन पंगवासा प्रतामा डरी का सुल्तानान दिल्ली तीडा ममिली की हाक उन्तुक ममिली मित्रा हिडुपिया तापी का बायाकान का जहातान इंडिया परतंगान डी इनी डी बातासी कपाडा मासराकत हिंदू सजारा मंचरिता कान बाबा पारा पंगिकुत बुद्धा जैन डान क्रिस्तेन सडिकित मुद्रात उन्तुक स्वाल का व्यवसान परंपुआन मरेका मंडापात कान आक्सेस मुडा उन्तुक पंडिडी कान परंपुआन डी जामान ककवासान राजा अशोका मंगामिल वागियन डी डालाम पये बारान आगामा गीता ताहू बाबा आनक परंपुआन अशोका यायतु संघमित्रा पर्गी का श्रीलंका उन्तुक मयेवार का बुद्धिज में चातातान चातातान डरी पारा पंगुंजुंग डरी लुआर नगरी मंबरी का साक्षियान बाबा वालापुन इंडिया स्लातान ममिली की का व्यासान देवदासी स्टातुस परंपुआन डी साना लवी बाइक डरी पारा डी इंडिया उतारा पारा सात इतु लापुरान लापुरान मयाता कान बाबा रातु चालुक्या विक्रमादित्य यायतु प्रिया कताला देवी मंगवासाई तीगा डेसा परंपुआन लाइन यायतु जाकी आवे मंगवासाई तुजु पुलु डेसा मनरुत पंचाता सजारा बर का बांगसा आन पुर्तुगाल यायतु डोमिंगो पायस पारा परंपुआन डी का राजा आन विजयनगर ममिली की पर वाकिलान डी त्याप त्याप लाहान मरेका डापात बर गुलात मम्बुई कान त्रोम्पेट डान मंगुना कान पडांग डिंगान संपूर्ण नूनिस जुगा मयबूत कान बाहवा परंपुआन डी पकरजा आन उन्तुक मंचातात लापुरान लापुरान पंगेलुआरान डान उड़ुसान उड़ुसान का राजा आन समुआ इनी मनुंजुक कान बाहवा मरेका मंग कोम्युनिकासी कान पंडिडी कान आवाल डरी ककवासान इंग्रिस मंगिरिंग इंडिया कपाड़ा जामान मॉडर्न चित्रा डरी रानी लक्ष्मीबाई यंग मलावान इंग्रिस डिंगान मंगेंडोंग बाई लाकिलाकिया डी पिंगांग डालम रिवोल्यूसी प्रतामा डी ताहुन सरिबू लापान रातु स्लिमा पुलु तुजु बायाक परंपुआन मुंचुल उन्तुक मामायन कान प्राणान पंतिंग डालम परग्राकान कमडे कान कमुडियान इनी तंतुया तला तरजडी सतला महात्मा गांधी तर्जुन का डालम परजुआंगान कमडे कान का

0: महात्मा गांधी मम प्रोपागांडा कान ईडे सर्वोदया अथवा कमाजवा मयलुरु डरी हासिल हासिल तुलिसानिया डालम हरिजान डन इंडिया मुडा समूह औरंग डापात मलिहार डिंगान जिलास बागमाना महात्मा गांधी मंग इंगिन कान परम्पुआन उन्तुक कलवा डरी रूमा मरेका डन ममाइन कान प्राणान पंतिंग डालाम मम्बावा नगरी इनी मनुजू का मर्डेकान डन सदिकित डमी सदिकित डिंगान क सगड़ा पान पारा पमिपिन रिफॉर्मिस सपर्ति राजा राम मोहन राय दयानंद सरस्वती डन लाइन लाइन प्राक्तिक प्राक्तिक सपर्ति सती प्लांगारान जांडा उन्तुक मनिका लागी डन पर निकाहान आनक आनक डी लारांग सचारा हुकुम पास्का कमर्डेकान इंडिया आरला सातु डरी सक्यान बायाक नगारा यंग ममिलिकी प्रधानमंत्री परम्पुआन कपाला पंगाडिलान परम्पुआन डन किनी प्रेसिडेंट परम्पुआन जुगा इंडिया ममिलिकी बबरापा कपाला मंत्री डरी नगार नगारा बागियन गुबर्नूर गुबर्नूर डन दूतावसार परम्पुआन सलामा आना पुलु ताहुन तराखिर सत्या पार्थ पॉलिटिक ममिली की पमिपिन पमिपिन परम्पुआन पंतिंग वालापुन सचारा स्टैटिस्टिक जुमला परम्पुआन डी पार्लियामेंट तीडा सबरापा डन बाया क्लोम्पक हाखाक परम्पुआन मलोबी उन्तुक पम्बुआतान ड्राफ्ट अमेंडमेंट ताहुन सरिबू सम्मिलान दातु सम्मिलान पुलु आनाम यंग मम्बरिकान परम्पुआन सातु प्रतिगा कुर्सी डी डालाम लोकसभा सलाइन पॉलिटिक परम्पुआन इंडिया किनी आडा डी डालाम उरुतान उरुतान तर आतास बिडांग बिडांग लाइन सपर्ति डॉक्टर पंगाचारा आर्सितेक ब्यूरोक्रात आंगोता पॉलिसी इल्मुवान लुआर आंकासा पनुलिस रातु का चांतिकान सकालीपुन वालापुन तला मम्बरिकान परम्पुआन का सुक्सेसान इंडिया मॉडर्न जुगा बायाक मम्बरिकान जालान कलवार बागी पंडरितान लुआर ब्यासा किनी तांतांगान तरबसार बागी परम्पुआन इंडिया आडाला उन्तुक मंगुरांगी तिंकात माल न्यूत्रिसी क सेहातान यंग रंडा कमातियान इबू डान कुरांग्या पंडिडिकान उन्तुक मंचापे इने मरेका तीडा हाया मंबुतुकान बांतुआन तरुस मनरुस डरी पमनिंता तथापि जुगा डुकुंगान बसार डरी लाकी लाकी सक्यान।
1: Kita masih bersama dengan siaran luar negeri All India Radio. Dalam acara yang berikutnya, kini ikutilah lagu-lagu non-film berupa lagu-lagu pop India.

0: Dengan demikian, selesailah acara kami untuk pagi hari ini. Saudara-saudara pendengar, acara kami untuk besok adalah sebagai berikut. Setelah sebuah uraian, lagu instrumentalia, lagu rakyat, lagu-lagu non-film, dan akhirnya sehari acara esok harinya. Di sini siaran luar negeri All India Radio, saudara-saudara pendengar, sebelum kami mengundurkan diri dari udara, saya, penyiar anda Kishore Das, bersama dengan semua staf seksi bahasa Indonesia dari studio di sini di ibu kota India, New Delhi, kami mengucapkan selamat pagi, sampai berjumpa kembali besok pada waktu dan gelombang yang sama. Terima kasih banyak saudara-saudara pendengar, selamat tinggal, sampai berjumpa kembali, bye-bye, dadah.
1: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
2: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, पिछले 12 वर्षों में 25 करोड़ से अधिक लोगों का गरीबी से बाहर आना एनडीए सरकार की सही नीतियों का प्रमाण। भारतीय वाणिज्य मंडल ने पश्चिम बंगाल में 1,00,000 करोड़ रुपए के निवेश की योजना बनाई। उत्तर पूर्वी बंगाल, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्र, ओडिशा, केरल और माहे के कुछ स्थानों पर आज मूसलाधार बारिश की संभावना। पश्चिम एशिया संघर्ष में तनाव के बीच अमरीकी सेना ने ईरान में कई ठिकानों पर हमले किए। प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सराहना की और देश से ओलंपिक के लिए महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करने का आग्रह किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विकसित भारत 2047 के लिए प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप इस वर्ष की बैठक का विषय है, विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक में विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल भाग लेंगे। वे समावेशी मानव विकास ढांचे पर चर्चा करेंगे।
4: बैठक में देश भर में उद्यमिता को बढ़ावा देने, कौशल विकास को मजबूत करने और अस्थायी रोजगार के अवसर सृजित करने के उपायों पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। इन चर्चाओं में शासन, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, अभिसरण, साझेदारी और डेटा आधारित प्रणालियों सहित प्रमुख सहायक तत्वों का उपयोग करते हुए एक कार्यान्वयन प्रारूप तैयार करने पर बल दिया जाएगा। इसके साथ ही अल्प, मध्यम और दीर्घकालिक परिणामों पर नजर रखने के लिए एक तंत्र भी स्थापित किया जाएगा, जिससे जवाबदेही और मापन योग्य प्रभाव सुनिश्चित हो सके। समावेशी मानव विकास पर राष्ट्रीय दृष्टिकोण के साथ राज्य के दृष्टिकोणों को संरेखित करने पर विशेष बल दिया जाएगा। नीति आयोग की शासी परिषद 26 से 28 दिसंबर 2025 के दौरान आयोजित मुख्य सचिवों के 5वें राष्ट्रीय सम्मेलन की सिफारिशों पर भी ध्यान केंद्रित करेगी। अनुपम मिश्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी। श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने हमेशा देश के भरोसे को मजबूत किया है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित एनडीए सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में 25 करोड़ से अधिक लोगों का गरीबी से बाहर आना सरकार की सही नीतियों

0: हमारी नीतियां सही हैं, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत का सपना अब देश के हर नागरिक का संकल्प बन चुका है। उन्होंने कहा कि वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बावजूद भारत ने वर्ष 2025-26 में 7.7% की विकास दर हासिल की है।
0: एनडीए के 12 वर्षों की उपलब्धियों की एक और विशेषता है, हमें ये उपलब्धियां वैश्विक अस्थिरता और अशांति के दौर में हासिल हुई है। दुनिया के बड़े बड़े देशों की अर्थव्यवस्थाएं संघर्ष कर रही है, तब भी 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है। और पिछला क्वार्टर तो जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है।
1: भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने बताया कि एनडीए सम्मेलन में 35 राजनीतिक दलों के 75 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। श्री नवीन ने मीडिया से बातचीत में कहा कि एनडीए नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त किया और उनकी ऐतिहासिक उपलब्धि पर बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के लगातार सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने की उपलब्धि पर अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें बधाई दी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया संदेश में कहा कि श्री मोदी एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं। रूस ने श्री मोदी को सभी भारतीय प्रधानमंत्रियों में सर्वश्रेष्ठ करार दिया है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू सहित विश्वभर के नेताओं से मिले बधाई संदेशों के लिए उनका हृदय से आभार व्यक्त किया है। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जनकल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम सरकार द्वारा गरीबों के कल्याण के लिए उठाए गए कदमों के बारे में चर्चा करेंगे।
2: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने गरीबों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की। गरीबों के लिए पक्का घर उपलब्ध कराना मोदी सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए 4 करोड़ से अधिक घर आवंटित किए गए। वहीं खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत देश भर के 81 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। ओडिशा के कालाहांडी जिले के इंद्रमणि नायक ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि इस योजना से गरीब लोगों को बहुत लाभ मिल रहा है।
3: गरीब कल्याण योजना जो नरेंद्र मोदी ने जो किया है वो हमारा फैमिली 5 है, जो हमको 5-5 किलो दे रहे हैं, जो अभी पहले से बहुत दिक्कत था, अभी तो बहुत हम लोग अभी सुखी शांति से सब जी रहे हैं।
2: दुनिया की सबसे बड़ी सार्वजनिक स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत जरूरतमंद परिवारों को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जा रहा है। वहीं प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों पर लोगों को सस्ती दरों पर जेनरिक दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही है। देश भर में अब तक लगभग 10.82 करोड़ लोगों ने आयुष्मान भारत योजना के तहत कैशलेस इलाज का लाभ लिया है। जम्मू कश्मीर के बारामूला के रहने वाले फैयाज अहमद ने कहा कि यह योजना आपातकालीन परिस्थितियों में गरीब लोगों के इलाज में बहुत मददगार साबित हो रही है।
4: जब से आयुष्मान भारत का स्कीम मोदी जी ने लॉन्च करा है, कभी भी किसी को जरूरत पड़ती है तो उसको भरपूर और एक आला मयारी इलाज बेहतरीन अस्पताल में मिलता है और राइट टाइम पे मिलता है, कोई क्यू में रहना नहीं पड़ता। मोदी जी हिस्ट्री के बेहतरीन कस्टोडियंस में से एक है, जो अपने आवाम का एक बेहतरीन कस्टोडियन है।
2: पारंपरिक ईंधन जैसे कोयले और लकड़ी के धुएं से होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं से राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की, जिसके तहत अब तक 10.55 करोड़ से अधिक महिलाओं को मुफ्त LPG कनेक्शन दिए गए। वहीं सड़क किनारे कारोबार करने वाले रेहड़ी पटरी विक्रेताओं को ऋण देने के लिए शुरू की गई PM स्वनिधि योजना के तहत अब तक 1.12 करोड़ से अधिक लोगों को ऋण दिए जा चुके हैं। भारत ने सामाजिक सुरक्षा में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। वर्ष 2015 में 19% लोगों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिल रहा था, जो वर्ष 2025 में बढ़कर 64% से अधिक हो गया है। सरकार द्वारा किए गए प्रयासों से

0: लगभग 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया, जो जन कल्याण और समावेशी विकास के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और एआई से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारतीय वाणिज्य मंडल आईसीसी ने पश्चिम बंगाल में अपनी सदस्य कंपनियों के माध्यम से 1,00,000 करोड़ रुपए के निवेश को बढ़ावा देने की योजना बनाई है। एक रिपोर्ट।
3: भारतीय वाणिज्य मंडल आईसीसी के अध्यक्ष ब्रजभूषण अग्रवाल के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के बीच नई दिल्ली में हुई बैठक में इस प्रस्ताव पर चर्चा की गई। आईसीसी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में आर्थिक गतिविधियों को लेकर नया उत्साह और सकारात्मक माहौल दिखाई दे रहा है। इससे राज्य के आर्थिक वृद्धि को गति मिलेगी और निवेश के लिए एक आकर्षक केंद्र के रूप में उसकी पहचान और मजबूत होगी। भारतीय वाणिज्य मंडल की स्थापना वर्ष 1925 में उद्योगपति घनश्याम दास बिड़ला और अन्य व्यापारिक नेताओं ने की थी। यह देश के सबसे पुराने उद्योग संगठनों में से एक है। समाचार से कृष्णकांत।
1: पश्चिम एशिया में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। अमरीका ने कल ईरान के कई ठिकानों पर हवाई हमले किए। अमरीकी सेना ने बताया कि ये हमले ईरान की लगातार आक्रामक गतिविधियों के जवाब में किए गए हैं। एक रिपोर्ट।
4: अमरीकी हमलों का ये दूसरा दिन है। इससे कुछ घंटे पहले ईरान ने बहरीन, कुवैत और जॉर्डन में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर हमले किए। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि बातचीत में गतिरोध के लिए ईरान को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। वहीं संयुक्त राष्ट्र में ईरान के राजदूत ने कहा कि ईरान धमकी और दबाव के बीच किसी तरह की बातचीत नहीं करेगा। इस बीच ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC ने कहा कि ओरमूज जलडमरू मध्य को सभी जहाजों और तेल टैंकरों के लिए बंद कर दिया गया है। संघर्ष के कारण वैश्विक तेल बाजार पर भी असर पड़ा है। कच्चे तेल की कीमत $93 प्रति बैरल से ऊपर पहुंच गई है। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरलम, माहे, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्र और सिक्किम के कुछ क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में ओलावृष्टि के साथ वर्षा का अनुमान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सराहना करते हुए ओलंपिक के लिए बड़े लक्ष्य निर्धारित करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में NDA सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि युवा खिलाड़ी लगातार बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं। फीफा विश्व कप 2026 का आज से आगाज हो रहा है। ये टूर्नामेंट 19 जुलाई तक अमरीका, कनाडा और मैक्सिको में आयोजित किया जाएगा।
5: फीफा विश्व कप का यह अब तक का सबसे बड़ा संस्करण है। इसमें पहली बार 48 टीमें भाग ले रही हैं। पहले के संस्करणों में 32 टीमें शामिल होती थी। मेजबान देश अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको को विश्व कप में सीधे प्रवेश मिला है। अन्य 45 टीमों ने 2 वर्ष लंबे क्वालिफाइंग अभियान के जरिए जगह बनाई है। टूर्नामेंट में 12 ग्रुप हैं। प्रत्येक ग्रुप में 4-4 टीमें शामिल हैं। हर ग्रुप की शीर्ष 2 टीमें सीधे नॉकआउट चरण में प्रवेश करेंगी। प्रतियोगिता में कुल 104 मुकाबले खेले जाएंगे। इसमें 72 ग्रुप स्टेज और 32 नॉकआउट मुकाबले होंगे। फाइनल 19 जुलाई को खेला जाएगा। समाचार कक्ष से मैं चिराग झा।
1: और आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं देवेंद्र त्रिपाठी।
6: धन्यवाद जागृति। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। जनसत्ता ने प्रधानमंत्री मोदी के 12 वर्ष पूरे होने पर आयोजित अभिनंदन बैठक में उनका बयान दिया है। कांग्रेस ने अपनी नाकामियों का ठीकरा हिंदुओं पर फोड़ा। लोकसत्य ने श्री मोदी का बयान दिया है, भारत अब आत्मनिर्भर, सुरक्षित और समृद्ध राष्ट्र बन रहा है। झटका शीर्षक से हिंदुस्तान लिखता है, मार्च के बाद 20% तक महंगा हुआ जरूरत का सामान, रसोई का खर्च करीब 1,000 रुपये तक बढ़ा। दैनिक भास्कर ने नीट पेपर लीक मामले में NTA अधिकारियों की संसदीय समिति से मुलाकात को सुर्खी बनाया है। संसदीय समिति के सामने NTA ने रखा सुरक्षा प्लान, समिति ने कहा हमें अमेरिका और चीन जैसे देशों से सीखना चाहिए। अमर उजाला ने अपने संपादकीय पृष्ठ में पीओके की पीड़ा का विश्लेषण किया है। पत्र लिखता है, इस्लामाबाद ने पीओके में निर्दोष नागरिकों के साथ जैसी बर्बरता दिखाई है उससे क्षेत्र की वास्तविक स्थिति फिर से दुनिया के सामने उजागर।

0: The human contribution to global warming highest ever in 2025, says an annual study called Indicators of Global Climate Change. The findings are a further reminder to the rapidly rising global temperatures, writes the Indian Express. And with that, it's back to you, Shagun.
1: Thank you, Subhadra. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi to chair 11th Governing Council meeting of Niti Aayog in New Delhi today. Prime Minister says lifting more than 25 crore people out of poverty during past 12 years of NDA government shows that its policies are correct and moving in right direction. Indian Chamber of Commerce plans to channel investments worth 1 lakh crore rupees into West Bengal. IMD forecasts heavy rainfall in places over northeast, sub-Himalayan West Bengal, Odisha, Kerala and Mahi today. US military strikes multiple targets in Iran in latest escalation of tensions in West Asia. And Prime Minister Modi praises performance of Indian sportspersons and urges the nation to set ambitious targets for Olympics. For details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and News on AIR app. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं असदुल्ला। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल मीटिंग की सदारत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि एनडीए सरकार के गुज़श्ता 12 साल के दौरान 25 करोड़ से ज्यादा अफराद को गुरबत से बाहर लाए जाने से ये जाहिर होता है कि सरकार की पॉलिसियां दुरुस्त हैं और वो सही सम्त में आगे बढ़ रही है। इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स मगरबी बंगाल में 1 लाख करोड़ रुपए मालियत की सरमायाकारी में सहूलत पैदा करने का इरादा रखता है। भारतीय मौसमियात महकमे ने शुमाल मशिक, मगरबी बंगाल, जेली हिमालयी खित्ते, उड़ीसा, केरला और माहे में शदीद बारिश की पेशगोई की है। मगरबी एशिया में कशीदगी में फिर से इजाफा हो गया है। अमरीकी फौज ने ईरान में कई ठिकानों पर हमले किए हैं और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भारतीय खिलाड़ियों की कारकर्दगी की सताइश की है और ओलंपिक खेलों के लिए बड़े निशाने तय करने पर जोर दिया है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन कल्चरल सेंटर में नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल मीटिंग की सदारत करेंगे। विकसित भारत के लिए टीम इंडिया के वज़ीर आज़म के नज़रिए के ऐन मुताबिक इस साल के मौजू विकसित भारत 2047 के लिए जामे इंसानी तरक्की में उम्र, खित्ते, सिन्फ या समाजी और माशी पस मंज़र के क़तअ नज़र हर भारतीय की बहबूद और तरक्की पर तवज्जो मरकूज़ की गई है। गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग में इस नज़रिए को हकीकत की शक्ल देने और पूरे मुल्क में हर शहरी के लिए इसे ठोस और नुमाया नतीजे में बदलने की हिकमत अमली पर तबादले ख्याल किया जाएगा। गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग में वज़राए आला और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहिबान 4 बुनियादी पहलुओं के ताल्लुक से इंसानी फरोग के जामे फ्रेमवर्क पर गौरवखोज करेंगे, जिसमें बुनियादी इंसानी सरमाया, मुस्तकबिल के लिए तैयार हुनरमंदी, रोज़गार, छोटा कारोबार, सेहत, तग़ज़िया और बहबूद, नीज सबके लिए मुसावात और वक़ार शामिल हैं। मज़ीद तफसील हमारे नामा निगार से।
3: आज की इस मीटिंग में पूरे मुल्क में कारोबार को फ़रोग देने, हुनरमंदी की वसत और रोज़गार के पायदार मौके पैदा करने के इक़दामात पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। इसके अलावा अमल दरआमद से मुतालिक खाका इज्तमाई तौर पर तैयार करने पर भी तवज्जो मरकूज की जाएगी, जिसमें हुक्मरानी, डिजिटल पब्लिक बुनियादी ढांचे, साझेदारी, डेटा पर मबनी निज़ाम, नेज मुख्तसर, दरमियाने और तवील मुद्दती नतीजों पर नज़र रखने का एक मुनज़्ज़म तरीक़ा कार शामिल होगा। इस तरह जवाबदेही और नुमाया असरात को यकीनी बनाया जा सकेगा। इसके साथ साथ जामे इंसानी फरोग के ताल्लुक से कौमी नज़रिए के साथ रियासतों के नज़रियात को हम आहंग करने पर भी खास जोर दिया जाएगा, ताकि मसावियाना और ठोस तरक्की की समत मुत्तहदा और इज्तमाई हिकमत अमली को तकवियत मिल सके। नीति आयोग की गवर्नेंस काउंसिल चीफ सेक्रेटरियों

0: से रह रहे हैं।
1: हिफ्जान सेहत से मुतालिक दुनिया की सबसे बड़ी अवामी स्कीम आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना इकतसादी तौर पर कमजोर कुनबों को 5 लाख रुपए का हेल्थ कवरेज फराहम कर रही है। साथ ही जन औषधि केंद्रों से जेनरिक दवाएं कम कीमतों पर मुहैया की कराई जा रही हैं। आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए जम्मू कश्मीर के बारामूला के फैयाज अहमद ने बताया कि आयुष्मान भारत स्कीम के तहत गरीबों को मुश्किल तरीन हालात के दौरान इलाज हासिल करने में सहूलत फराहम की जा रही है।
2: मैं एनडीए सरकार और मोदी जी का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने बहुत सारी जो स्कीमें चलाई जिसमें मुल्क के अंदर हिस्ट्री में पहली बार एक गरीब को सीधा बरह रास्त फायदा पहुंचा डिजिटलाइजेशन के जरिए। आयुष्मान भारत की बात करना चाहूंगा, मोदी जी की सरकार से पहले मुल्क में यह होता था अचानक किसी की बीमारी का पता चलता था या बीमारी के टाइम जो ऑपरेशन सर्जरीज करनी होती थी उन्हें या तो जमीन बेचनी पड़ती थी या घर की कोई कीमती शय बेच कर वो चीज़ों का पैसे का बंदोबस्त करके ऑपरेशन और बाकी चीज़ें कराने पड़ते थे। लेकिन जब से आयुष्मान भारत का स्कीम को मोदी जी ने लॉन्च करा है तब से ये चीज़ पूरे मुल्क में नहीं है।
1: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 10 करोड़ 55 लाख से ज्यादा खवातीन को मुफ्त एलपीजी गैस कनेक्शन फराहम किए जा रहे हैं। नई दिल्ली से सुपर्णा साइकिया की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं कौनैन हैदर।
3: इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स आईसीसी अपनी मेंबर कंपनियों के जरिए मगरबी बंगाल में 1 लाख करोड़ रुपए मालियत की सरमायाकारी में सहूलत पैदा करने का इरादा रखता है जिससे रियासत की इक्तसादी सलाहियत और तरक्की के इम्कानात में सनतों के बढ़ते हुए एतमाद की अक्कासी होती है। इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर ब्रिजभूषण अग्रवाल की ज़ेर क़यादत सनती इदारे के एक वफद और मरकजी वजीर जितेंद्र सिंह के दरमियान नई दिल्ली में मीटिंग के दौरान इस तजवीज़ पर तबादले ख्याल किया गया। मज़कूरा ऐवानी तजारत ने कहा है कि मगरबी बंगाल में पुरउम्मीदी और मुस्बत रफ्तार का नया माहौल देखने में आ रहा है जिससे माशी तरक्की की रफ्तार तेज करने में मदद मिल सकती है। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भारतीय खिलाड़ियों की कारकर्दगी की सताइश की और ओलंपिक्स खेल के बड़े मकासद मुतयन करने पर जोर दिया है। कल नई दिल्ली में मुनाकिदा एनडीए कॉन्क्लेव में इजहार ख्याल करते हुए जनाब मोदी ने नौजवान एथलीट्स की हुसूलियाबियों और भारत में खेलों की तेज रफ्तार तरक्की को उजागर किया।
4: भारत दुनिया की बिगेस्ट स्पोर्ट्स लीग की धरती बनता जा रहा है। आने वाले सालों में हमारी ये ख्याति और बुलंद होगी। ओलंपिक्स के लिए हमारी तैयारियां भी भारत की एस्पिरेशन का ही प्रतिबिंब है। हमें छोटा नहीं सोचना है, हमें लक्ष्य ऊंचे रखने हैं, उन्हें प्राप्त करने के लिए पूरी ताकत लगा देनी है।
3: अमरीकी फौज ने कल ईरान में कई ठिकानों पर फिर से हमले किए। अमरीकी फौज ने कहा है कि ईरान की लगातार जारहियत के तनाजुर में जवाबी कार्रवाई करते हुए ये हमले किए गए हैं। लड़ाई खत्म कराने के लिए मुजाकरात बहाल करने की कोशिशों के बावजूद मगरबी एशिया में फिर से कशीदगी बढ़ गई है। बहरैन, कुवैत और उर्दुन में जहां अमरीकी फौजी मुतयन हैं, ईरान के हमलों के चंद घंटों बाद ये अमरीकी हमले हुए। ईरान के मीडिया ने मुल्क के जुनूब में बंदर अब्बास, सिरिक, मिनाब और किशम जजीरे में धमाके होने की इत्तिला दी है। उधर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यह तंबीह की है कि ईरान को तातुल का शिकार मुजाकरात की कीमत चुकाना होगी, जबकि अक्वाम मुत्तहिदा में ईरान के नुमाइंदे ने कहा है कि ईरान धमकियों और दबाव में आकर बातचीत नहीं करेगा। इधर ईरान के पासदारान इनकलाब ने तेल टैंकरों और कमर्शियल बहरी जहाजों समेत हर तरह के जहाजों के लिए आबनाए हुरमुज के बंद होने का दावा किया है। भारतीय मौसमियात महकमे ने अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, केरल, माहे, उड़ीसा, मगरबी बंगाल के जेली हिमालयी खित्ते और सिक्किम में बाज मकामात पर आज शदीद बारिश की पेशगोई की है। मौसमियात महकमे के मुताबिक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश होने और ओले गिरने का इम्कान है। ये थी खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं कौनैन हैदर।
1: शुक्रिया असदुल्ला। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारात ने अलग अलग खबरों को अपनी शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा इनकलाब और प्रताप समेत आज के सभी अखबारात ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी को तवील तरीन मुद्दत तक मुंतखब वजीर आजम के तौर पर खिदमात अंजाम देने को सफ़े अव्वल पर शाये करते हुए लिखा है कि यह भारत की तारीख में एक अहम संगे मील है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू समेत मुतअद्दिद ममालिक के सरकर्दा रहनुमाओं ने وزیراعظم کو

0: मुबारकबाद दी है। रोजनामा प्रताप ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के इस बयान को सफ़े वल पर नुमाया किया है कि ज़मीनी सतह पर कवानीन और पॉलिसियों का नफाज ही अच्छी हुक्मरानी की कलीद है। उन्होंने सिविल सर्विस में खवातीन की बढ़ती हुई नुमाइंदगी की भी सताइश की।
1: और अब आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल मीटिंग की सदारत करेंगे। वज़ीर आज़म ने कहा है कि एनडीए सरकार के गुज़श्ता 12 साल के दौरान 25 करोड़ से ज्यादा अफराद को गुर्बत से बाहर लाए जाने से ये जाहिर होता है कि सरकार की पॉलिसियां दुरुस्त हैं और वो सही सम्त में आगे बढ़ रही है। इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स मगरबी बंगाल में 1,00,000 करोड़ रुपए मालियत की सरमायाकारी में सहूलत पैदा करने का इरादा रखता है। भारतीय मौसमियात महकमे ने शुमाल मशिक मगरबी बंगाल के ज़ेले हिमालयी खित्ते उड़ीसा केरला और माही में शदीद बारिश की पेशगोई की है। मगरबी एशिया में कशीदगी में फिर से इजाफा हो गया है। और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भारतीय खिलाड़ियों की कारकर्दगी की सताइश की है और ओलंपिक खेलों के लिए बड़े निशाने तय करने पर जोर दिया है। इसी के साथ आकाशवाणी से खबरनामा खत्म हुआ।

अब आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ से चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़ पर 8:45 हुए हैं। ये वक्त है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम स्वरगंगा का। आइए इसमें सुनते हैं राग जौनपुरी। कलाकार है उस्ताद जावेद अली खान। आपके साथ संगत कर रहे हैं हारमोनियम पर जहीर अहमद और तबले पर अख्तर हसन।

अभी आप सुन रहे थे राग जौनपुरी, कलाकार थे उस्ताद जावेद अली खां। आपके साथ संगत करने वाले कलाकार थे हारमोनियम पर ज़हीर अहमद और तबले पर अख्तर हुसैन। इसके साथ ही शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अब संपन्न होता है। हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़ पर। आइए अब सुनते हैं उद्योग पत्रिका।

0: साथियों नमस्कार। कहा जाता है कि प्रबंधन किसी भी व्यवस्था या संस्था को संचालित करने की एक सफलता की कुंजी है। प्रबंधन किसी भी संस्था, संगठन या कार्य को सुव्यवस्थित ढंग से संचालित करने की कला और विज्ञान है। ये केवल संसाधनों का उपयोग करने तक सीमित नहीं है, बल्कि उपलब्ध मानव, वित्तीय और भौतिक संसाधनों के सर्वोत्तम समन्वय द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने की प्रक्रिया भी है। आज के प्रतिस्पर्धी और तेजी से बदलते परिवेश में प्रभावी प्रबंधन की भूमिका पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। आज इन्हीं सब विषयों पर बातचीत करने के लिए हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया प्रोफेसर हेमेंद्र डांगी जी को। आप प्रबंधन विशेषज्ञ हैं, कॉमर्स डिपार्टमेंट, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, दिल्ली यूनिवर्सिटी में। हम आपका स्वागत करते हैं, नमस्कार।
1: धन्यवाद सर।
0: हेमेंद्र जी, ये प्रबंधन से हम क्या समझे, किस प्रकार का प्रबंधन? एक आर्थिक प्रबंधन भी है, सामाजिक प्रबंधन भी हो सकता है, वित्तीय प्रबंधन जिसे कहते हैं, और एक संस्था, ये प्रबंधन भी हो सकता है। हम किस रूप में आप इसे परिभाषित करेंगे, कहां कहां इसकी आवश्यकता ज्यादा पड़ती है?
1: प्रबंधन एक ऐसा चीज है जिसको लोग, कुछ लोग जो है इसको एक करिकुलम के तरीके से देखते हैं, एक विषय के तौर पर देखते हैं, पर मुझे लगता है कि हर व्यक्ति अपने जीवन में किसी न किसी रूप में प्रबंधन कर रहा होता है, चाहे वो उसने फॉर्मल एजुकेशन नहीं भी ली हो या चाहे उसने फॉर्मल एजुकेशन ली हो, चाहे उसने बिजनेस मैनेजमेंट में डिग्री ली हो, पर हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में प्रबंधन कर रहा है। आपने बिल्कुल ही सही कहा कि प्रबंधन का जो बात है वो जीवन के हर पहलू में है, चाहे समय का प्रबंधन करना हो, चाहे वित्तीय संसाधनों का प्रबंधन करना हो, चाहे बिजनेस को, ऑर्गेनाइजेशन को, मैनेजमेंट को प्रबंधन करना हो, या एक जीवन का अपने आप में एक प्रबंधन का स्थान है सर।
0: लेकिन हेमेंद्र जी, आजकल के दौर में, आज इस भागम भाग जिंदगी में और सबको आगे और आगे निकल जाने की दौड़ लगी हुई है, इस दौर में सबको यही चाहता है कि मुझे कुछ ज्यादा से ज्यादा मिले। तो इस सेंस में मैं कह रहा हूँ कि जो वित्तीय प्रबंधन है वो ज्यादा से ज्यादा गेन करने की होती है, इसे आप किस प्रकार देखेंगे?
1: वित्तीय प्रबंधन ज्यादा से ज्यादा गेन करने का तो है ही, पर इससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि जो अवेलेबल रिसोर्सेज आपके पास है, क्योंकि आपके पास हमेशा सीमित होते हैं, तो उनको किस तरह से उपयोग किया जाए कि उनसे जो हमें रिटर्न मिल सके, उनका उपयोग कर सके, वो मैक्सिमम तरीके से कर सके, शायद वित्तीय प्रबंधन में भी यही मूल मंत्र है। देखिए, प्रबंधन की आवश्यकता क्यों पड़ी, अब ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि प्रबंधन का जो कॉन्सेप्ट है या प्रबंधन का जो विचार है वो आया था कि जब किसी चीज की कमी हो तो उसको कैसे मैनेज किया जाए, जैसे पैसे की कमी है, समय की कमी है, तो एक पहलू ये है कि जब संसाधन ज्यादा हो तो मैनेज कैसे किया जाए, एक संसाधन कम हो तो कैसे मैनेज किया जाए। तो बड़ा इंटरेस्टिंग ये सिचुएशन है, समय की कमी है तो आप प्रबंधन करोगे, आपके पास वित्त की कमी है तो प्रबंधन करोगे, पर एट द सेम टाइम इसी तरह से इंफॉर्मेशन की अबंडेंस है। आज की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि हम इन्फोमेटिक्स में रह रहे हैं, हम जो है हर तरफ से सूचनाओं से गिरे हुए हैं। आज का जो युवा है उसके पास इतनी सूचनाएं अवेलेबल है, हम सबके पास इतनी सूचना अवेलेबल है, मेन स्ट्रीम मीडिया आपके माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से, आसपास के सिस्टम से, अब आपके पास जो प्रबंधन करना पड़ रहा है वो अबंडेंस का मैनेजमेंट करना पड़ रहा है। तो वित्तीय का जो आपने प्रश्न पूछा उसमें हम जनरली स्केयरसिटी मैनेजमेंट करते हैं कि जहां रिसोर्सेज की कमी है उनको हम मैनेज करने की बात करते
0: तो
1: हैं।
0: तो एक अच्छे प्रबंधक को, एक अच्छे मैनेजर को उसमें किस प्रकार के गुण होने चाहिए?
1: एक अच्छे प्रबंधक और एक अच्छे मैनेजर को मेरे ख्याल से कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं जो हम जरूर एक बिजनेस स्कूल में भी ट्रेंड करते हैं, उनको प्रशिक्षण देते हैं। उसमें एक तो ये होता है कि एक अच्छे मैनेजर

0: को, एक अच्छे लीडर को, एक अच्छे एंटरप्रेन्योर को, उद्यमी को, सबसे बड़ी बात है कि वो इनोवेटिव नई सोच विकसित करे, लीक से हटके करे।
1: लेकिन कई बार ये भी तो होता है कि नई सोच हमने विकसित तो कर ली, लेकिन उसको आगे ले जाने के लिए, उसको ग्रो करने के लिए उसके पास संसाधन नहीं होते हैं, उसे किस प्रकार से मैनेज करें।
0: बहुत ही अच्छी बात है आपने कही, और वही चीज जो है आप देखेंगे कि अभी जो प्रेजेंट परिस्थितियां हैं उसमें इस पे लेके ही ज्यादा फोकस दिया जा रहा है। पहले बहुत ही प्रतिभाशाली व्यक्ति जो है बहुत ही अच्छा उम्दा आइडिया देते थे, पर इकोसिस्टम नहीं होने की वजह से वो आइडिया कभी ग्रो ही नहीं कर पाता था, वो व्यक्ति रिस्क नहीं ले पाता था। अब सरकार का भी ये एक मूवमेंट चल रहा है, स्टार्टअप इंडिया जैसे है, या एक हर विश्वविद्यालय में, हर कॉलेज में आजकल स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए एक सेल बनाई जाती है, इंक्यूबेशन सेंटर बनाए जाते हैं। तो उसमें अगर कोई व्यक्ति के पास विचार है, अगर आइडिया है, तो वो संसाधनों की कमी की वजह से पीछे ना रह जाए, इसके लिए एक इकोसिस्टम बनाया जा रहा है। अब ये इकोसिस्टम रातों रात तो नहीं बन सकता है, अब इसमें कल्चरल शिफ्ट आ रहा है। जैसे बड़े बड़े संस्थान है, दिल्ली विश्वविद्यालय है, IIT IIMs है, इनमें तो ये बड़ा एस्टेब्लिश्ड हो चुका है कि भाई इनमें इकोसिस्टम में आप जो है एक इनोवेशन सेल्स बनाइए, एंटरप्रेन्योरशिप सेल बनाइए, बच्चों को स्टार्टअप का मौका दीजिए। और अब Tier 2 Tier 3 सिटीज में, छोटे विश्वविद्यालयों में, इनमें भी ये कल्चर आ रहा है, और मैं पूरा उम्मीद कर रहा हूँ कि ये कल्चर जो है जब थोड़े समय बाद पूरे भारत लेवल पर आएगा, तो आपका जो ये बहुत ही जेन्युइन कंसर्न है कि आइडिया बहुत अच्छा है, अगर बीज बहुत अच्छा है पर उसको आसपास पानी, खाद, बिजली, प्रकाश ये ना मिले तो कैसे वो ग्रो करेगा। तो ये काम इकोसिस्टम अब विश्वविद्यालय कर रहे हैं, कॉलेजेस कर रहे हैं, इन्वेस्टर कर रहे हैं, और सरकार कर रही है।
1: हेमेंद्र जी, यहाँ पर जब इकोसिस्टम की बात आती है तो हम इसे कई बार कैटेगराइज कर लेते हैं, कैटेगराइज करते हैं इन द सेंस कि हम लोकलाइज कर लेते हैं। शहर की बात अलग होती है, गांव की बात अलग होती है, और गांव में भी गांव की बात, यानी कि जो बिल्कुल रिमोट एरिया है वहां पर हम कोई स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, आइडिया है, अच्छे विचार है, लेकिन हमारे पास संसाधन नहीं है, तो इसे किस प्रकार मैनेज किया जाए।
0: ये आपने बहुत ही एक पर्टिनेंट बात बोली है कि गांवों की समस्याएं अलग है, शहरों की समस्याएं अलग है, और मेट्रोपॉलिटन सिटी की अलग समस्याएं हैं। पर जब ये उद्यमिता का आइडिया आया या एंटरप्रेन्योरशिप का जो आइडिया आया, तो पहले हमने कुछ समय तक ये देखा कि ज्यादातर लोग जो है जो ग्लोबल लेवल पर, वैश्विक लेवल पर जो समस्याएं हैं और उनका जो समाधान निकला, जैसे ये टैक्सी की एग्रीगेटर्स का आइडिया आया या जहां आया, तो हमने वहां के कॉन्टेक्स्ट में जो आइडिया डेवलप हुआ उसी को हमने यहाँ पर भी कॉपी करने की कोशिश करी। पर आपने ये बताया कि गांवों की समस्याएं अलग है, एक किसान की समस्या अलग है, गांव के युवा की समस्याएं अलग है, तो उनके लिए गवर्नमेंट के बहुत सारे इनिशिएटिव है। पर अब समस्या मेन क्या है कि उनकी अवेयरनेस, जिस इंटेंट के साथ ये कैंपेन चलाए जा रहे हैं, अगर इसकी अवेयरनेस को अगर ठीक किया जाए तो संसाधनों की कोई कमी नहीं है। अगर किसी के पास अच्छा आइडिया है तो आज का तो सोशल मीडिया का जमाना है, वो अपना आइडिया सोशल मीडिया पर लगाए, वो अपना आइडिया कहीं डिस्कस करे, फोरम पर डिस्कस करे, और उसके आइडिया में मेरिट है, तो आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे सक्सेस स्टोरी आपको मिल जाएगी कि कहीं गांव से कोई आइडिया निकला, किसी ने उसको आइडेंटिफाई किया और उसको फंडिंग की गई, और वो आर डूइंग ग्रेट।
1: हर कोई चाहता है कि उसका जो फाइनेंशियल ग्रोथ हो वो बढ़े, और इसके लिए वो खुद अपने पैरों पे खड़ा होना चाहता है। साथ में सरकार भी कहती है कि आप एक जॉब क्रिएटर बने, जॉब लेने वाले नहीं, जॉब देने वाले बने, लेकिन इसमें आगे चलकर भी कई सारी परेशानियां होती हैं, तो इसको किस प्रकार से इसको मैनेज किया जाए।
0: जॉब क्रिएटर की जो बात है वो बिल्कुल ही सही है, क्योंकि हमारी इकोनॉमी में, और स्पेशली जब हम बात कर रहे हैं कि 2047 तक हम विकसित भारत होंगे, और अगर विकसित भारत बनना है तो इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है कि एक इकोनॉमी में एक अच्छा खासा बैलेंस बना रहे, और उस बैलेंस को बनाने में सबसे महत्वपूर्ण बात यह हो जाएगी कि हम जॉब क्रिएटर कैसे बने। अब जॉब क्रिएटर में जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग आइडिया को लेके स्टार्टअप शुरू कर देते हैं, बिजनेस शुरू कर देते हैं, स्टार्टिंग में कुछ समस्याएं आती है, उससे घबरा के वो अपना आइडिया बंद कर देते हैं या बिजनेस बंद कर देते हैं या शिफ्ट हो जाते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स भी बहुत ज्यादा एनकरेजिंग नहीं है, क्योंकि स्टार्टअप का जो फेलियर रेट है वो अनफॉर्चुनेटली बहुत हाई है। पर इससे हमें घबराने की जरूरत नहीं है, कोई भी जब नई शुरुआत करते हैं, और स्पेशली युवा के अंदर वो शक्ति है, भारत के अंदर वो शक्ति है कि वो हमारी लोकल समस्याओं को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि देखिए हमारे यहाँ पर अगर कोई भी आइडिया थोड़ा सा भी हिट कर गया, क्लिक कर गया, तो मार्केट इतना बड़ा है कि जो हम कहते हैं ना यूनिकॉर्न बनना, वो तो अगर कोई बन गया आइडिया तो शेयर मार्केट इंडिया में इतना है कि वो यूनिकॉर्न बन जाएगा। तो ये थोड़ा सा स्टार्टिंग में पेशेंस रखने की जरूरत है, थोड़ा एक्सप्लोर करने की जरूरत है, थोड़ा ये समझने की जरूरत है कि कोई भी आइडिया अगर आपने कंसेप्चुलाइज किया और उसको आप अगर समय देना पड़ेगा, उसके लिए थोड़ा सा धैर्य की जरूरत है। तो धैर्य अगर आप रखेंगे, एक कैलकुलेटेड रिस्क लेंगे, और अगर आप संसाधनों का सही से उपयोग करेंगे, तो मुझे लगता है कि हमारा जो ये स्टार्टअप फेलियर रेट है ये कम हो सकता है, सक्सेस रेट बढ़ सकता है, और सही मायने में जॉब क्रिएटर बन सकते हैं।
1: जी हेमेंद्र जी, आज डिजिटल युग है, तकनीकी युग है, इनोवेशन का युग है, तो इसमें जो प्रबंधन

0: कि जो कार्यशैली है, स्टाइल है, काम करने की जो शैली है, वो किस प्रकार से आज का जो डिजिटल युग है वो प्रभावित कर रहा है।
1: एआई को लेके एक बहुत बड़ा कंसर्न आजकल आ रहा है, और प्रबंधन में आपने बिल्कुल कहा कि जो काम पहले चार लोग करते थे, जो काम रूटीन रिपीटेटिव होते थे, वो रूटीन रिपीटेटिव काम जो है वो मैनेजमेंट में जो हम सिखाते थे, ट्रेन करते थे, वो काफी हद तक अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ले रहा है। इसमें कोई शक की बात नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है।
0: तो इसका मतलब हम ये समझे कि जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने जब जगह ले रही है तो कुछ काम आसान हो गया, आपको ऐसा नहीं लगता है?
1: कुछ काम बहुत आसान हो गया है, पर इसके प्रति जो एक ये नेगेटिव माइंडसेट बन गया है कि ये जॉब ले लेगा, मुझे लगता है कि ये ओवरस्टेटेड है, इसकी जरूरत नहीं है। जब कंप्यूटराइजेशन आया तब भी एक डर था। हाँ, ये जरूर है कि एआई का मोमेंटम स्पेक्ट्रम जो आ रहा है वो बहुत हाई है, और अब वही व्यक्ति सर्वाइव करेंगे जो एआई को रिस्पॉन्सिबल तरीके से, एडवांटेजेस तरीके से यूज कर पाएंगे। आप अगर ये कहेंगे मैं समय के बदलाव के साथ एआई के साथ लिटरेट नहीं होना चाहता हूं, मैं एआई के कंधे के साथ कंधा मिला के लिए तैयार नहीं हूं, तो मुझे लगता है कि आपको समस्या आएगी। पर जो अब डिफरेंशिएटर ये बन जाएगा कि मैं एआई को अच्छा यूज कर पाता हूं, कोई और एआई को अच्छा यूज नहीं कर पाएगा, तो मैं सर्वाइव करूंगा, उसको दिक्कत आएगी। पर ऐसा नहीं है, नए तरह के जॉब आएंगे, एआई में अपने आप में जॉब आएंगे। पर इसमें मैं एक बात जरूर आपसे ये कहूंगा, हमें एआई में भी ये समझने की जरूरत है, भारत जैसे देश में हमें सिर्फ एआई का कंज्यूमर मार्केट नहीं बनना है, एआई का यूजर मार्केट नहीं बनना है, एआई के डेवलपमेंट साइड में जाने की जरूरत है। पॉइंट है कि हमें देखना है कि अब हम एआई की बात कर रहे हैं तो हम एआई के यूजर हैं या एआई के सर्विस प्रोवाइडर हैं।
0: तो कंप्लीटली हमें एआई पे डिपेंडेंट हो जाना चाहिए?
1: मुझे नहीं लगता है कि हमें एआई पे डिपेंडेंट होना चाहिए या हम एआई पे डिपेंडेंट कभी हो पाएंगे। एक बैलेंस है, एक रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ एआई रहेगा और वो उसका इथिकल यूज करना पड़ेगा, जिसलिए लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क आज नहीं तो कल आएंगे, जिसमें एक डिमार्केशन लाइन बनेगी कि कब एआई को रिस्पॉन्सिबल यूज किया जाए और कब ये डेंजरस हो सके।
0: और आज जो है सोशल मीडिया किस प्रकार से प्रबंधन को, मैनेजमेंट को प्रभावित कर रहा है?
1: सोशल मीडिया ने जो बिजनेस की रीच है, बिजनेस का कवरेज है, आइडिया की वायरलिटी है, इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से उद्यमों को, बिजनेसों को फायदा किया है। आज मेरा आइडिया है, प्रोडक्ट है, मैं किसी भी सोशल मीडिया पर डाल देता हूँ, मुझे मेन स्ट्रीम मीडिया का नहीं एक्सेस है, उतना मेरे पास बजट नहीं है, इतना मैं कैटर नहीं कर पाता हूँ, तो मैं आराम से सोशल मीडिया के थ्रू मार्केट की नीड को कैटर कर पा रहा हूँ। तो सोशल मीडिया एक डबल एजेड सॉर्ड है, क्योंकि इससे मेरा रीच एंड कवरेज तो बढ़ गया, पर इफ एनीथिंग गोज रॉन्ग इन सोशल मीडिया तो रातों रात मेरे को जो है बिजनेस में नुकसान भी हो सकता है।
0: अर्श से फर्श पर आ सकते हैं,
1: अर्श से फर्श पर आ सकते हैं, पर एट द सेम टाइम ये जो रिसोर्सेज नहीं होते हैं तो ये सबसे बड़ा पावरफुल हथियार है।
0: चाहे कोई संस्था हो या फिर कोई ऐसी व्यवस्था है या कह सकते हैं कोई स्टार्टअप हो, तो उसको चलाने के लिए टीम वर्क की बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो इसमें टीम वर्क की क्या नेतृत्व हो सकती है, इसमें किस प्रकार से एक टीम वर्क किसी भी संस्था को, किसी भी स्टार्टअप को, किसी भी कंपनी को, किसी भी एंटरप्रेन्योरशिप को आगे ले जाने के लिए भूमिका निभाती है?
1: टीम वर्क हर जगह जरूरी है। टीम वर्क आप देखते होंगे क्रिकेट के मैदान में भी, एक व्यक्ति के अच्छे खेलने से टीम नहीं जीत जाती है। देखिए, प्लेयर्स अगर अच्छा करते हैं तो टीम अच्छा करती है। इसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन में एक एम्प्लॉई से ऑर्गेनाइजेशन नहीं चल रही है। स्टार्टअप में सिर्फ एक जो इन्वेस्टर है या एक जो एंटरप्रेन्योर है जिसने फंड रेज किया है उसके करने से अच्छा नहीं चल रहा है। टीम वर्क एक नेसेसिटी है। परिवार को भी अच्छा चलाने के लिए सारे परिवार के सदस्यों का सामूहिक प्रयास होता है, समाज को चलाने के लिए भी सामूहिक प्रयास होता है, देश को चलाने के लिए भी सामूहिक प्रयास होता है। उसी तरह से एक बिजनेस को चलाने के लिए टीम वर्क बहुत जरूरी है।
0: हेमेंद्र डांगी जी, उसे समय प्रबंधन यानी कि टाइम मैनेजमेंट और दूसरी तरफ होता है कि रिसोर्सेस मैनेजमेंट, इन दोनों में क्या संबंध हो सकता है?
1: टाइम भी अपने आप में एक रिसोर्स है। तो रिसोर्सेज में जब हम बात करते हैं तो जनरली मेन मटेरियल, मशीन, मनी और आज की डेट में मैं कहूंगा इन्फॉर्मेशन। तो हम हिस्टोरिकली ये बोलते थे कि एम्स होते हैं, मेन मटेरियल, मशीन, मनी, पर आज की डेट में अब इसको मुझे लगता है इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसी में से एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है टाइम, क्योंकि सबके पास समय तो वही है, 24 घंटे आपके पास भी है, 24 घंटे मेरे पास भी। व्हाट मेक्स यू सक्सेसफुल एंड व्हाट मेक नॉट मी सक्सेसफुल इज द टाइम मैनेजमेंट। तो उस टाइम को जो बेहतर मैनेज कर लेता है वो इतिहास रच लेता है, और जो नहीं कर पाता है वो एक साधारण बन के रह जाता है।
0: एक देखा जाता है कि जो सार्वजनिक संस्थान है, पब्लिक सेक्टर्स है और प्राइवेट सेक्टर्स है, उन दोनों में बहुत फर्क हो जाता है, ऐसा क्यों, और उसमें प्रबंधन की क्या भूमिका होती है?
1: प्रबंधन की भूमिका दोनों में सेम है। ओनली थिंग इज जो मुझे लगता है कि एक सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी होती है। उस सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी को प्राइवेट में कहीं ना कहीं ज्यादा क्लियरली मॉनिटर किया जाता है एज कम्पेयर टू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में। एक समय पे इतना नहीं मैनेज किया जा सकता है, पर अब परिस्थितियां वहां पे भी चेंज हो रही है, गवर्नेंस में इफिशियंसी आ रही है, पर एक कल्चरल शिफ्ट होने में टाइम लगेगा। पर अब जो देख रहे हैं हम, अब वो फर्क नहीं रह गया है।
0: तो इसके क्या कारण हो सकते हैं?
1: उसका कारण यही है सर कि जो ये परिवर्तन आ रहा है, ये परिवर्तन इसीलिए आ रहा है कि अब जो है स्टेक होल्डर ज्यादा अवेयर हो गए हैं।

0: कंज्यूमर ज्यादा अवेयर हो गए हैं, लोगों में अवेयरनेस आ गई है। अब ओवरऑल जो सोशल मीडिया की वजह से अवेयरनेस बहुत ज्यादा हो गई है, तो इसलिए
1: जी
0: अब पब्लिक सेक्टर भी बहुत ही अकाउंटेबल होते जा रहे हैं और होना भी चाहिए, ये एक इफिशियंसी का पैरामीटर।
1: हमारे देश की युवा शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है और सक्षम भी है, तो इसे प्रबंधन कौशल कैसे उनसे विकसित करवाया जा सकता है या फिर कर सकती है?
0: हमारी जो शक्ति है वो यही है कि हम डेमोग्राफिक डिविडेंड है हमारे पास। हमारी शायद एकमात्र ऐसी व्यवस्था है जिसमें जो है यूथ का जो बोलबाला है वो बहुत अच्छा है, और इस यूथ को ठीक से चैनलाइज किया जाए तो ये एक कीर्तिमान रह सकते हैं, और मैनेजमेंट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा।
1: प्रबंधन केवल एक सामाजिक प्रक्रिया ही नहीं, बल्कि प्रशासनिक प्रक्रिया ही नहीं, बल्कि किसी भी संगठन की सफलता का आधार होता है, और प्रभावी प्रबंधन संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग करना ये सुनिश्चित करता है, कार्य कुशलता को बढ़ाता है और संगठन को उसके लक्ष्यों तक पहुंचाने में भी महत्वपूर्ण।

0: Spotlight.
1: This is Akashvani. In the program Spotlight, now we bring you a discussion on key union cabinet decisions. The participants are Prafulla Ketkar, senior journalist, and Lalima Aneja Tang, anchor.
2: The union cabinet today passed a resolution marking June the 10th, 2026 as a historic milestone in the journey of Indian democracy. As our Prime Minister, Narendra Modi becomes the longest serving elected Prime Minister of the country, surpassing the previous record held by Jawaharlal Nehru. Union Minister Ashwini Vaishnav said that today's day is historic as Prime Minister Narendra Modi becomes the longest serving elected PM in India's history.
3: आज 10 जून 2026 का दिन भारतीय लोकतंत्र की यात्रा में एक ऐतिहासिक और प्रेरणादायी पड़ाव के रूप में अंकित हुआ है। आज श्री नरेंद्र मोदी जी निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में सर्वाधिक अवधि तक निरंतर देश की सेवा करने वाले प्रधानमंत्री बन गए हैं। उन्होंने निर्वाचित पीएम के तौर पर 4,399 डेज की निरंतर सेवा का कीर्तिमान स्थापित किया है, जो स्वतंत्र भारत के इतिहास

وإنه لفي زبر الأولين أولم يكن لهم

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग के

0: 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक में देश भर में उद्यमिता और कौशल विकास को बढ़ावा देने तथा रोजगार के स्थायी अवसर सृजित करने के उपायों पर विचार विमर्श किया जाएगा। चर्चा में शासन, डिजिटल सार्वजनिक ढांचे और साझेदारी सहित प्रमुख मुद्दों के समुचित कार्यान्वयन की रूपरेखा तैयार करने पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इस वर्ष की बैठक का विषय है 2047 तक विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास। बैठक में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल और उपराज्यपाल भाग ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि किसानों का कल्याण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है और सरकार उनके जीवन को सुगम बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि किसान देश की खाद्य सुरक्षा, पोषण और समृद्धि की रीढ़ है। प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और फसल बीमा योजना जैसी पहलें न केवल किसानों की आय की रक्षा कर रही हैं बल्कि कृषि को और भी सशक्त बना रही हैं। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और बुल्गारिया के संबंध दीर्घकालिक और स्थिर हैं। बुल्गारिया के विदेश मंत्री वेलिस्लावा पेट्रोवा चामोवा से मुलाकात के दौरान श्री जयशंकर ने कहा कि दोनों देश मिलकर भविष्य में संबंधों को बेहतर करने पर कार्य करेंगे।
1: हमारी बातचीत के तीन पहलू थे। पहला, भारत और बुल्गारिया के बीच आपसी सहयोग। दूसरा, भारत और यूरोपीय संघ के बीच साझेदारी। और तीसरा, वैश्विक स्थिरता और विकास के लिए ताकतवर देश किस तरह मिलकर काम कर सकते हैं।
0: डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि आर्थिक सुरक्षा और आतंकवाद के बढ़ते खतरे पर भारत का रुख स्पष्ट है। सरकार ने 29 केंद्रीय श्रम कानूनों को तर्कसंगत और सरल बनाकर 4 व्यापक श्रम संहिताओं को समेकित किया है। इसका उद्देश्य अनुपालन को सरल बनाना, श्रमिकों की सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करना तथा व्यापार में सुगमता को बढ़ावा देना है। श्रम और रोजगार राज्य मंत्री शोभा करांदलाजे ने कल स्विट्जरलैंड के जेनेवा में अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के पूर्ण सत्र को संबोधित करते हुए ये बात कही। भारतीय वाणिज्य मंडल ICC ने पश्चिम बंगाल में अपनी सदस्य कंपनियों के माध्यम से 1,00,000 करोड़ रुपए के निवेश को बढ़ावा देने की योजना बनाई है। इस प्रस्ताव पर नई दिल्ली में ICC के अध्यक्ष ब्रजभूषण अग्रवाल के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल और केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह के बीच बैठक में चर्चा की गई। ICC ने कहा कि पश्चिम बंगाल में सकारात्मक स्थिति बनी हुई है जिससे आर्थिक वृद्धि को गति मिलेगी और निवेश को लेकर राज्य की पहचान मजबूत होगी। तृणमूल कांग्रेस के सांसद प्रकाश चेक बराइक ने राज्यसभा के सदस्य पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना त्यागपत्र राज्यसभा अध्यक्ष CP राधाकृष्णन को भेज दिया है। इससे पहले तृणमूल कांग्रेस के नेता और राज्यसभा सदस्य सुखेंदु शेखर राय और सुष्मिता देव ने राज्यसभा और पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। सरकार ने एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क माफ कर दिया है। वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना के माध्यम से 22, 25, 27 और 30% एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को केंद्रीय उत्पाद शुल्क से पूरी तरह से छूट देने की घोषणा की है। मंत्रालय ने कहा कि इन चारों ईंधन श्रेणियों पर उत्पाद शुल्क शून्य रहेगा। इसका उद्देश्य भारत के एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को मजबूत करना है। अमेरिका ने ईरान पर हाल ही में सैन्य हमले किए हैं। जवाबी कार्रवाई में ईरान ने होर्मुज जल डमरू मध्य बंद करने की घोषणा की है और क्षेत्र में अमरीकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। अमेरिका की केंद्रीय कमान ने कहा कि अमेरिका ने आत्मरक्षा में लगातार दूसरे दिन हमले किए। इनमें ईरान की वायु रक्षा प्रणालियों, रडार और संचार ढांचों को निशाना बनाया गया। हमारे संवाददाता ने बताया कि ईरान के मीडिया ने बंदर अब्बास, केशमद्वीप, मीनाब और सिरिक सहित कई स्थानों पर विस्फोट की सूचना दी है। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरलम, माहे, उड़ीसा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कुछ क्षेत्रों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बिहार, तटीय आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गांगे, पश्चिम बंगाल, कोंकण और गोवा, तमिलनाडु तथा पूर्वोत्तर भारत के कई हिस्सों में आज भी बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

Garden. आप सुन रहे हैं एफएम गोल्ड चैनल एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, कार्यक्रम है घर आंगन। आप हमें सुन सकते हैं इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्ज़ पर भी और डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर भी। और हम आपको शुरू में ही कार्यक्रम के शुरू में ही आपको बता देते हैं अपना ईमेल आईडी, ताकि आप हमें ईमेल भेज पाएं, हमें बता पाएं कि कार्यक्रम कैसा लग रहा है। fmgoldga@gmail.com, जी हाँ, fmgoldga@gmail.com। और आज के इस कार्यक्रम में मैं हूँ आपकी रेडियो सखी राधा पाठक, आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मन की दुनिया जितनी सीधी है उतनी ही जटिल भी है। कई बार किसी बात के चलते मन की सेहत की जड़ें ज्यादा ही हिल जाती हैं, हम बहुत तनाव ले लेते हैं। तो भावों की बिगड़ते संतुलन को साधने के लिए घर हो या बाहर, हमें एक व्यवस्थित नियम अपनाना ही होगा। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है, और स्वस्थ रहना है तो खुश रहना बहुत ज़रूरी है, और खुश रहने के लिए ज़रूरी है कुछ समय निकालिए अपने लिए, अपनों के लिए।

लता मंगेशकर के आवाज में ये गीत धरती कहे पुकार के फिल्म से था और दिल्ली के मौसम को देखते हुए आज के ये गीत बिल्कुल सटीक है क्योंकि थोड़े थोड़े बादल हर जगह हैं और थोड़ी थोड़ी आंधी भी चल रही है और हम स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं। अब इतनी गर्मी चल रही थी, गर्मी हो सर्दी हो या बरसात हो, अपनी सेहत का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। हर साल 31 मई को विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड नो टोबैको डे यानी कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाता है और अभी चल रहा है इसका पखवाड़ा। जी हाँ, 31 मई से लेकर 14 जून तक ये पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य लोगों को तंबाकू और निकोटिन उत्पादों से होने वाले नुकसान के प्रति जागरूक करना है। आज के समय में पारंपरिक तंबाकू उत्पादों के साथ साथ ई सिगरेट और एंड्स ENDS, जी हाँ आज मैं बताऊंगी एंड्स के बारे में, ENDS यानी इलेक्ट्रॉनिक निकोटिन डिलीवरी सिस्टम, इसका उपयोग भी तेजी से बढ़ रहा है खासकर युवाओं में। कई लोग इसे सुरक्षित मानते हैं जबकि यह स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा है। आज इसलिए बताना जरूरी है कि हमारे घर में जो महिलाएं रहती हैं उन्हें तो पता भी नहीं होगा कि ये ई सिगरेट कैसी दिखती है। ये कुछ कुछ पेन ड्राइव जैसी दिखती है, किसी को लगेगा कि मार्कर पेन है और कभी ये भी लग सकता है कि ये एक इत्र की शीशी है या बच्चे ने अगर आपके ये इस्तेमाल करा है आप सोचेंगे कोई परफ्यूम है छोटा सा। बहुत खूबसूरत पैकिंग में आता है और इसमें ना तो बदबू होती है ना ही धुआं होता है कि पता भी नहीं चलेगा कि घर में कोई ई सिगरेट का इस्तेमाल कर रहा है। ई सिगरेट बैटरी से चलने वाले इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो निकोटिन और अन्य रसायनों को भाप के रूप में शरीर में पहुंचाते हैं, इसलिए इन्हें वेप पेन, ई हुक्का के नाम से भी जाना जाता है। अलग अलग फ्लेवर मिलते हैं, मतलब इतने फ्लेवर हैं अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें मिंट और मेंथॉल जैसे ठंडे और ताज़े एहसास भी हैं। फलों की बात करें तो आम, सेब, बेरी, तरबूज, स्ट्रॉबेरी, सब तरह के इसमें फ्लेवर्स आते हैं। डिज़र्ट्स के फ्लेवर हैं, हर्बल फ्लेवर भी हैं जो लौंग के, काली मिर्च के हैं। ये भी कह सकते हैं बच्चों की हर्बल है ये, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर सेहत के लिए कोई चीज़ नुकसान है तो वो हर्बल कैसे हो सकती है। ये सब आपको बेवकूफ़ बनाने के तरीके हैं, इसलिए सब लोग ध्यान दें कि ई सिगरेट एंड्स शरीर के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। ई सिगरेट में मौजूद निकोटिन बहुत ज़्यादा नशे की लत पैदा करता है और इस पर एक बार इसकी आदत लग जाए तो इसे छोड़ना बहुत कठिन हो जाता है। इस बारे में और भी बात करेंगे, पहले सुन लेते हैं ये गीत।

ये रात फिर ना आएगी। इस फिल्म में अभी आपने आशा भोसले और मिन्नू पुरुषोत्तम को सुना। अब हम बात कर रहे थे एंड्स की। एंड्स यानी इलेक्ट्रॉनिक निकोटिन डिलीवरी सिस्टम, जिसके बारे में ज़्यादा लोग जानते भी नहीं हैं, लेकिन आज की युवा पीढ़ी इसके बारे में अच्छे से जानती है कि वेप्स क्या होते हैं। बहुत सारे नुकसान हैं इसके। एक तो लत लगना सबसे बड़ा नुकसान है कि इसकी लत लग जाती है और आदत लगने पर इसे छोड़ना बहुत मुश्किल है। फेफड़ों को नुकसान है ही, क्योंकि सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, खांसी और गंभीर फेफड़ों की बीमारी हो सकती है, हृदय रोग का खतरा हो सकता है, जो हमारी युवा पीढ़ी उसके दिमाग पर असर हो सकता है, क्योंकि ध्यान केंद्रित करने में परेशानी होती है, तनाव होता है, मानसिक स्वास्थ्य पर का प्रभाव पड़ता है। और सेकेंड हैंड वेप का भी बहुत खतरा है, क्योंकि जो ई सिगरेट है अगर कोई पी रहा है और आपको, तो क्योंकि धुआं दिखेगा नहीं आपको और बदबू भी नहीं आएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा, लेकिन उसका सेकेंड हैंड स्मोकिंग जो पैसिव स्मोकिंग है वो साथ वाला बंदा तो ले ही रहा है ना, जो साथ बैठे हैं, तो इसलिए इसको भी नकारना ज़रूरी है। इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है ताकि आप लोगों को मना कर पाएं और इसके लिए जागरूक रह पाएं। ये दिखने में सामान्य सिगरेट या पेन जैसी होती है, मतलब लगेगा जैसे पेन है या पेन ड्राइव है, या बहुत सुंदर सुंदर फ्लेवर्स भी आ रहे हैं अगर आप देखेंगे तो, इतनी सुंदर शीशी और इतने सुंदर पैकिंग में आता है कि लोगों को, मतलब युवा पीढ़ी को आकर्षित करने के लिए सब होता है। इलेक्ट्रॉनिक तरीके से धुआं भाप देने वाले पारंपरिक डिज़ाइनों के विकल्प के रूप में ये आता है और इसमें बहुत सारे खतरनाक रसायन होते हैं, जिससे सीधा असर होता है सेहत पर। अब इसके बारे में एक चीज़ और है कि एक एक्ट है 2019 में बनाया गया था, पैका एक्ट, प्रोहिबिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट एक्ट। इसके तहत ई सिगरेट और सभी प्रकार के एंड्स उत्पादों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है भारत में। भारत में इन्हें बनाना, बेचना, आयात निर्यात करना, विज्ञापन देना या अपने पास इसे रखना गैर कानूनी है। इसलिए इस बात का बहुत ध्यान रखा जाए कि भारत में ये गैर कानूनी है। अब स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव मैं आपको बता चुकी हूँ, एक बार फिर से बता देती हूँ कि भले ही इसे पारंपरिक सिगरेट के सुरक्षित विकल्प के रूप में प्रचारित किया गया था, लेकिन ICMR यानी चिकित्सा अनुसंधान की गाइडलाइंस के अनुसार ये बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। इसमें मौजूद निकोटिन दिमाग को नुकसान पहुँचाता है और युवाओं को बीमार कर सकता है। इसके केमिकल फेफड़ों की गंभीर बीमारियों का कारण बनते हैं और ये रक्तचाप और दिल की धड़कन को भी अनियंत्रित कर सकता है। इसलिए ई सिगरेट और इलेक्ट्रॉनिक निकोटिन डिलीवरी सिस्टम इन

से बहुत दूर रहना बहुत ज़रूरी है और सबको इस बारे में जागरूक रहना भी ज़रूरी है कि अपनी ज़िंदगी में हमेशा खुशियाँ बांटिए। ये चीज़ें इस्तेमाल करके बीमारियाँ ही बढ़ेंगी, जिसका आपको ध्यान रखना है।

कार्यक्रम चल रहा है घर आंगन FM 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर और आप सुन रहे हैं बहुत सारे काम की बातें। और अब बात करेंगे एक योजना की, भारत सरकार की दिव्यांग कल्याण योजना। जैसे स्वावलंबन कार्ड है, UDID है, भारत सरकार के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग यानी DEPWD द्वारा जारी किया जाने वाला एक राष्ट्रीय पहचान पत्र है जो पूरे देश में मान्य है। इसे कहते हैं स्वावलंबन कार्ड यानी UDID। इसका मुख्य उद्देश्य है देश के सभी दिव्यांगजनों का एक डिजिटल डाटाबेस तैयार करना और उन्हें कागजी दस्तावेजों के झंझट से मुक्ति दिलाना, ताकि किसी को परेशान ना होना पड़े, इधर उधर भागना ना पड़े। सिर्फ एक कार्ड बन जाएगा तो हर जगह उनका डाटा रहेगा। इसके मुख्य लाभ और विशेषताएं भी आपको बता देती हूँ। एक सिंगल डॉक्यूमेंट है। विभिन्न सरकारी लाभों का लाभ उठाने के लिए कई प्रमाण पत्र प्रतियां साथ रखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इस कार्ड में सभी आवश्यक जानकारियां डिजिटल रूप से दर्ज की जाएंगी। राष्ट्रव्यापी मान्यता है इसको। ये कार्ड भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में समान रूप से स्वीकार्य है। इसलिए एक कार्ड आपकी बहुत सारी चीजों की मुश्किलों को कम कर देगा। इसके माध्यम से योजनाओं के वितरण में पारदर्शिता आती है और लाभार्थियों को भौतिक और वित्तीय प्रगति को ट्रैक किया जा सकता है, बताया जा सकता है उन्हें, और उन्हें भी ट्रेस किया जा सकता है। सुगम प्रमाणीकरण भी है। सार्वजनिक स्थानों, परिवहन और अस्पतालों में दिव्यांगता के प्रकार और स्तर के त्वरित सत्यापन में मदद मिलती है। वेरिफिकेशन हो जाता है कि क्या चाहिए आपको। इस पर और भी बात करेंगे इस गीत के बाद।

चली चुप चुप चुप चुप चुप चुप चुप चुप चुप ओ दिल वाले मत वाले तेरे दिल के स्टेशन पे गाड़ी गई रुक रुक रुक गाड़ी चली चुप चुप चुप चुप चुप चुप नैनो की गाड़ी चली चुप चुप चुप चुप चुप ओ दिल वाले मत वाले तेरे दिल के स्टेशन पे गाड़ी गई रुक रुक रुक

मोम की गुड़िया, इस फिल्म में अभी आपने सुना आशा भोसले को। हम बात कर रहे थे स्वावलंबन कार्ड की। जी हाँ, यूडीआईडी कार्ड, इससे बहुत सारे लाभ हमारे दिव्यांगजनों को मिल जाते हैं, जिसमें किसी व्यक्ति के पास 40% या उससे अधिक दिव्यांगता का यूडीआईडी कार्ड है तो बहुत सारे उसे लाभ मिलते हैं। यात्रा में छूट मिलती है, स्वास्थ्य लाभ मिलते हैं, उपकरण भी मिलते हैं, शिक्षा में छात्रवृत्ति मिलती है, वित्तीय सहायता भी दी जाती है। और अगर सरकार ने दिव्यांगजनों की आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए दो बड़ी कल्याणकारी योजनाएं संचालित की हैं, बता दूं आपको। जी हाँ, एक है दिव्यांगजन कौशल योजना। इसका उद्देश्य दिव्यांगजनों को आईटी, एनिमेशन, गेमिंग और हॉस्पिटैलिटी जैसे उच्च विकास वाले क्षेत्रों में आधुनिक और उद्योग अनुकूल कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना है, ताकि उन्हें गरिमापूर्ण रोजगार जो है वो मिल सके। दिव्यांग सहारा योजना। इस योजना के तहत अत्याधुनिक सहायक उपकरणों के उत्पादन को बढ़ाने और उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI को एकीकृत करने के लिए भारी निवेश किया जा रहा है, जिसका संचालन किया जा रहा है। इसमें बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो शामिल हैं। तो आप स्वावलंबन आईडी कार्ड अगर बनवाना चाहते हैं तो बनवा लीजिए। अब कहते हैं ना, परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। वो लोग रहते हैं खामोश अक्सर जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। प्रांजल पाटिल, भारत की पहली दृष्टि बाधित महिला IAS अधिकारी। बचपन में बहुत संघर्ष किया। अब प्रेरणादायक कहानियां जो होती हैं ना, जो व्यक्तित्व होते हैं उनके बारे में जानना बहुत जरूरी है। महाराष्ट्र के उल्हासनगर की रहने वाली प्रांजल ने मात्र 6 वर्ष की उम्र में अपनी आंखों की रोशनी पूरी तरह गंवा दी थी। एक स्कूल के साथी ने गलती से उनकी आंख में पेंसिल मार दी थी, जिससे उनकी एक आंख खराब हो गई थी। बाद में उनकी दूसरी आंख की रोशनी भी चली गई, लेकिन इस दृष्टिहीनता के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने मुंबई के सेंट जेवियर्स कॉलेज में राजनीतिक विज्ञान में स्नातक की पढ़ाई की और दिल्ली के प्रतिष्ठित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से इंटरनेशनल रिलेशंस में MPhil और PhD की। प्रांजल ने बिना किसी कोचिंग के केवल सॉफ्टवेयर की मदद से किताबें सुनकर UPSC की तैयारी की। उन्हें पहले ही प्रयास में 773वीं रैंक हासिल हुई। उन्हें भारतीय रेलवे लेखा सेवा आवंटित की गई, लेकिन रेलवे विभाग ने उनकी 100% दृष्टिहीनता का हवाला देकर उन्हें नौकरी नहीं दी। उन्होंने 2017 में फिर से कड़ी मेहनत करके 77वीं रैंक हासिल की और देश की पहली दृष्टिबाधित महिला IAS अधिकारी बनी। इसलिए तो मैंने कहा कि वो लोग रहते हैं खामोश अक्सर जमाने में उनके हुनर बोलते हैं। जी हाँ, परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए इनके पर बोलते हैं। यहीं तो ये साबित होता है कि अगर मेहनत हो, लगन हो, आत्मविश्वास हो तो कुछ भी किया जा सकता है। प्रांजल पाटिल को केरल कैडर मिला। उन्हें तिरुवनंतपुरम में उप कलेक्टर के रूप में अपना कार्यभार संभालकर देश की सेवा शुरू की। हम सलाम करते हैं ऐसे व्यक्तित्व को।

अपने साथियों से, अपनी बहनों से, क्योंकि हमारा घर आंगन जो कार्यक्रम है वो खास महिलाओं के लिए है, बार बार कहते हैं कि योग बहुत जरूरी है। हम ये भी कहते हैं कि अपने लिए समय निकालिए, और समय तो निकालना ही पड़ेगा। अब मन और शरीर दोनों के स्वास्थ्य के लिए योग बहुत जरूरी है। अब योग दिवस भी आने वाला है, तो क्यों ना अब हर बार ये सोच कर कि कल करेंगे ये ना करते हुए योग शुरू किया जाए। और योग बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, एक बार आप शुरुआत करेंगे तो आपके शरीर और मन दोनों की इसकी आदत हो जाएगी। बहुत आसान से थोड़ी सी आसन मैं आज आपको बता रही हूँ, ताड़ासन। इसे कहते हैं माउंटेन पोज। सीधे खड़े हो जाएं, हाथों को ऊपर उठाएं, उंगलियों को आपस में फंसा कर ऊपर की तरफ स्ट्रेच करें, यानी स्ट्रेचिंग करनी है आपको अपने शरीर को। नीचे पैरों से खड़े होकर, सीधे खड़े होकर, हाथों को ऊपर करके, इससे क्या होता है शरीर का पोस्चर सुधरता है और लंबाई भी बढ़ती है, अगर बच्चे युवा कर रहे हैं तो। वृक्षासन यानी ट्री पोज। एक पैर पर सीधे खड़े हों, दूसरे पैर के तलवे को जांघ से टकाएं, हाथों को नमस्कार मुद्रा में ऊपर ले जाएं। इसका जो लाभ है वो बताऊं, शरीर पर बैलेंस बना रहता है और एकाग्रता भी आती है। सुखासन यानी इजी पोज जो होता है वो है जमीन पर पालथी मारकर बैठ जाएं, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें, आंखें बंद करके गहरी सांस लें, धीरे धीरे गहरी सांस लें और धीरे धीरे छोड़ें। मानसिक टेंशन दूर होती है, मन शांत रहता है। देखिए सांसों

पर आप जितना कंट्रोल कर पाएंगे योग के जरिए, आपकी बीमारियां भी दूर होंगी और आपका मन और तन दोनों स्वस्थ रहेगा। भुजंगासन, कोबरा पोज कहते हैं इसको। पेट के बल लेट जाएं, हथेलियों को छाती के पास रखकर शरीर के अगले हिस्से को ऊपर उठाएं। इससे पीठ और कमर का दर्द दूर होता है। मार्जरी आसन यानी कैट काउ पोज, घुटनों और हाथों के बल बिल्ली की तरह, जैसे बिल्ली चलती है या गायें चलती है, वैसे हो जाएं। सांस लेते हुए पीठ को नीचे करें, सांस छोड़ते हुए पीठ को ऊपर करें गोल। इससे रीढ़ की हड्डी लचीली बनती है। बालासन यानी चाइल्ड पोज, घुटनों के बल बैठ जाएं, वज्रासन जिसे कहते हैं। अब आगे की ओर झुकते हुए सिर को जमीन से छुएं और हाथों को आगे फैलाएं। इससे थकान और तनाव तुरंत दूर हो जाता है। देखिए, मैं आपको एक बहुत ज़रूरी बात ये बता दूं कि ज़बरदस्ती बिल्कुल ना करें। शरीर को जितना आराम से आप स्ट्रेच कर सकते हैं उतना ही करें। दर्द होने पर रुक जाएं, सांसों पर ध्यान दें। आसन करते समय सांस को रोकना नहीं है बल्कि

कीजिए, तभी तो ये बातचीत दोनों तरफ से होगी। हमारा ईमेल आईडी भी हमने आपको बताया था, fmgoldgia@gmail.com। कुछ ईमेल्स हमें मिले हैं, हम पढ़ देते हैं। गौरी शंकर जी की नांगलोई से मिली है, जिन्हें कार्यक्रम पसंद आ रहा है, उन्हें ई सिगरेट के बारे में भी बताना पसंद आया। संगीता पाल जी अहमदाबाद गुजरात से लिखती हैं। राजू अग्रवाल केशव जिला हसराहो हरियाणा से लिखते हैं। और भी बहुत सारी मेल आ रही हैं हमें। सुदर्शन मुखी साहब की मेल मिल गई है, तो आप भी मेल लिखिए। अब सुदर्शन मुखी साहब, अनीता मुखी, सिमरन मुखी शांतिनगर सोनीपत से लिखते हैं। और आप सब भी बताइए कि क्या चाहिए आपको कार्यक्रम में और कैसा लग रहा है हमारा ये महिलाओं का कार्यक्रम। अब हम बात करेंगे बेल की। जी हाँ, गर्मी के मौसम में बेल खाना फ़ायदेमंद है, ये तो सभी जानते हैं। बेल बहुत गुणकारी है और चमत्कारी फ़ायदे हैं इसके। पेट के रोगों के लिए तो रामबाण है। अब आयुर्वेद में बेल के पेड़, यानी बेल जैसे बेलपत्र होता है, उसके जो पत्ते होते हैं वो शिव जी पर चढ़ाए जाते हैं, तो सभी जानते हैं। और जो बेल का जो विटामिन सी एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाता है, इसलिए कहते हैं गुणकारी बेल।

चौराहा फिल्म में आप ये सुन रहे थे आशा भोसले की आवाज। बात चल रही थी बेल की। जी हाँ, गुणकारी और चमत्कारी बेल की। अब पाचन तंत्र में इसमें सुधार होता है, ये मैंने आपको बताया। क्रोनिक डायरिया और जो होता है ना, दस लग जाते हैं, वो भी ठीक करता है, कब्ज भी ठीक करता है, अगर इसे ठीक सिखाया जाए। इसके फल और पत्तों के अर्क में फंगस और बैक्टीरिया से लड़ने की गजब की क्षमता होती है। अगर किसी को लगता है ना कि उसे फंगस की बीमारी है, जैसे उंगलियां फट जाती हैं, कई बार पैरों की उंगलियों में फंगस हो जाती है, तो बेल का इस्तेमाल कीजिए। सूजन को कम करता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं, आंतरिक अंगों की सूजन और जोड़ों के दर्द में आराम देता है। अगर आपको पुरानी कॉन्स्टिपेशन है तो पके हुए बेल का गूदा खाएं और शाम को इसका शरबत पिएं। कच्चे बेल को आग में भूनकर या सुखाकर बनाएंगे। बेलगिरी का जो चूर्ण होता है उसे मट्ठे के साथ खाया जा सकता है, तो जो दस्त होते हैं ना वो रुक जाते हैं। डायबिटीज अगर आपको है तो बेल के 4-5 ताजे पत्तों को पीसकर सुबह खाली पेट इसका रस पिएं। अगर आपको गर्मी लग रही है या डिहाइड्रेशन हो गया है तो पके बेल के गूदों को, जो गूदा होता है ना, उसे पानी में मैश कर लीजिए। मैश करके उसे छान लीजिए, उसमें मिश्री

और भुना जीरा मिलाकर शरबत बनाइए, इसे कहते हैं बेल का ठंडा ठंडा शरबत, और वो पीजिए, पेट की गर्मी को शांत करता है। लेकिन एक चीज़ है कि गर्भवती या स्तनपान कराने वाली महिलाओं को बेल ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, ना ही उसका शरबत पीना चाहिए। और अगर आप थायराइड की दवाई ले रहे हैं तो भी डॉक्टर की सलाह के बाद ही आप बेल ले सकते हैं। इसलिए हर चीज़ को इस्तेमाल कीजिए, लेकिन मगर ध्यान से।

शोर फिल्म का ये गीत आप सुन रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज में। और अपने जीवन में छोटे छोटे बदलावों से आप अपनी जिंदगी को मजबूती दे सकते हैं। इसी संदेश के साथ कार्यक्रम घर आंगन से मुझे यानी राधा को दे इजाजत, सुनते रहिए ये गीत।

आंगन आपके अस्तित्व आपके व्यक्तित्व से जुड़ा आपका घर आंगन।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग के

0: ग्यारहवीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक में देश भर में उद्यमिता और कौशल विकास को बढ़ावा देने तथा रोजगार के स्थायी अवसर सृजित करने के उपायों पर विचार विमर्श किया जाएगा। चर्चा में शासन, डिजिटल, सार्वजनिक ढांचे और साझेदारी सहित प्रमुख मुद्दों के समुचित कार्यान्वयन की रूपरेखा तैयार करने पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इस वर्ष की बैठक का विषय है 2047 तक विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास। बैठक में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल और उपराज्यपाल भाग ले रहे हैं। किसानों का कल्याण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है और सरकार उनके जीवन को सुगम बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि किसान देश के खाद्य सुरक्षा, पोषण और समृद्धि के रीढ़ हैं। प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और फसल बीमा योजना जैसी पहलें न केवल किसानों की आय की रक्षा कर रही हैं बल्कि कृषि को और भी सशक्त बना रही हैं। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और बुल्गारिया के संबंध दीर्घकालिक और स्थिर हैं। बुल्गारिया के विदेश मंत्री वेलिस्लावा पेट्रोवा चामोवा से मुलाकात के दौरान श्री जयशंकर ने कहा कि दोनों देश मिलकर भविष्य में संबंधों को बेहतर करने पर कार्य करेंगे।
1: हमारी बातचीत के तीन पहलू थे। पहला, भारत और बुल्गारिया के बीच आपसी सहयोग। दूसरा, भारत और यूरोपीय संघ के बीच साझेदारी। और तीसरा, वैश्विक स्थिरता और विकास के लिए ताकतवर देश किस तरह मिलकर काम कर सकते हैं।
0: डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि आर्थिक सुरक्षा और आतंकवाद के बढ़ते खतरे पर भारत का स्पष्ट रुख है। सरकार ने 29 केंद्रीय श्रम कानूनों को तर्कसंगत और सरल बनाकर 4 व्यापक श्रम संहिताओं में समेकित किया है। इसका उद्देश्य अनुपालन को सरल बनाना, श्रमिकों की सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करना तथा व्यापार में सुगमता को बढ़ावा देना है। श्रम और रोजगार राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने कल स्विट्जरलैंड के जेनेवा में अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के पूर्ण सत्र को संबोधित करते हुए ये बात कही। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज जयपुर में आकाशवाणी परिसर में आयोजित कार्यक्रम में राजस्थान के रामगढ़ में 20 किलोवाट के FM ट्रांसमीटर का उद्घाटन वर्चुअली माध्यम से किया। इस अवसर पर श्री वैष्णव ने सामरिक अवसंरचना पर ध्यान केंद्रित करते हुए सीमावर्ती क्षेत्रों में संचार व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पर बल दिया। इस कार्यक्रम में जयपुर की सांसद मंजू शर्मा, प्रसार भारती के अध्यक्ष प्रसून जोशी और आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने आज गुजरात के वडोदरा में भारत में निर्मित पहले एयरबेस C-295 के प्रथम परीक्षण उड़ान की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि यह एरोस्पेस विनिर्माण देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाता है। उन्होंने इस उपलब्धि के लिए एयरबस, टाटा एडवांस सिस्टम, भारतीय वायुसेना और सभी अभियंताओं और कर्मचारियों को बधाई दी। तृणमूल कांग्रेस के सांसद प्रकाश चेक बराइक ने राज्यसभा के सदस्य पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना त्यागपत्र राज्यसभा अध्यक्ष CP राधाकृष्णन को भेज दिया है। इससे पहले तृणमूल कांग्रेस के नेता और राज्यसभा सदस्य सुखेंदु शेखर राय और सुष्मिता देव ने राज्यसभा पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। सरकार ने स्पष्ट किया है कि पाकिस्तान सीमा के पास भारतीय वायुसेना का विमान दुर्घटनाग्रस्त होने का दावा करने वाला वीडियो पूरी तरह से भ्रामक है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा है कि यह दावा फर्जी है और वीडियो को पाकिस्तानी दुष्प्रचार खातों द्वारा प्रसारित किया जा रहा है। घरेलू शेयर बाजारों में आज 0.4% की बढ़त दर्ज हुई। ताजा जानकारी मिलने तक सेंसेक्स 318 अंक बढ़कर 74,301 और निफ्टी 82 अंक बढ़कर 23,297 पर था। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट आज से रंगारंग कार्यक्रम के साथ शुरू हो रहा है। ये टूर्नामेंट 20 जुलाई तक अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में आयोजित किया जाएगा। उद्घाटन मैच में आज ग्रुप ए में मेजबान मेक्सिको का सामना दक्षिण अफ्रीका से होगा। भारतीय समयानुसार ये मैच रात 12:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi is chairing the 11th Governing Council meeting of Niti Aayog at Rashtrapati.

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: आज हम आपके लिए चुनकर लाए हैं एक ऐसी फिल्म जिसने 46वें ऑस्कर अकादमी पुरस्कार के लिए सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म के लिए चुना गया था इस फिल्म को। और

ये फिल्म जो कि नरेंद्रनाथ मित्रा की बंगाली कहानी रस पर आधारित है, राजश्री प्रोडक्शन में तारा चंद बड़जात्या द्वारा प्रोड्यूस और कला निर्देशक से निर्देशक बने सुधेंद्र रॉय द्वारा लिखी और डायरेक्ट की गई ये खूबसूरत सी फिल्म, जिसके संवाद लिखे थे पी एल संतोषी यानी कि राजकुमार संतोषी के पिता ने, और छायांकन था दिलीप रंजन का, दिलीप रंजन मुखोपाध्याय, जिनमें मुख्य भूमिका में नजर आए थे अमिताभ बच्चन, नूतन और पद्मा खन्ना। फिल्म के सभी गीत हिट थे और हिट हैं। तो पहले आप संदेश।

आपकी ढेर सारे संदेश हमें बता रहे हैं कि आपने हमेशा की तरह फिल्म पहचान ली कि आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 1973 की वो फिल्म जो सुपर डुपर हिट थी, सौदागर। जी हाँ, और ये फिल्म 131 मिनट की अवधि वाली फिल्म जो कि मोती की कहानी पर आधारित थी। मोती जो खजूर का रस निकालकर अपना जीवन यापन करता है। नरेंद्रनाथ मित्रा की बंगाली लघु कहानी रस पर आधारित ये फिल्म संदेश छोड़ती है कि किसी दूसरे को दुखी करके खुशी हासिल नहीं की जा सकती। फिल्म में मुख्य भूमिका में थे अमिताभ बच्चन, जिन्होंने अपने एंग्री यंग मैन की छवि से निकलकर खजूर के रस से बने गुड़ को बेचने वाले मोती की भूमिका निभाई थी। नूतन, जिन्होंने महजुबीन नामक एक गरीब विधवा और मोती की व्यापारिक साझेदारी की एक सशक्त भूमिका निभाई थी। वहीं पद्मा खन्ना, जिन्होंने अपनी खलनायिका वाली छवि से हटकर फूलबानो की भूमिका निभाई, जिनके अभिनय की सभी ने तारीफ की।

का संगीत तैयार किया था रविंद्र जैन ने, और गीत भी रविंद्र जैन ने ही लिखे थे, जिन्हें अपनी आवाज़ दी थी किशोर कुमार, आशा भोसले, लता मंगेशकर, मन्ना डे और मोहम्मद रफ़ी साहब ने। फिल्म का सबसे हिट सॉन्ग रहा सजना है मुझे सजना के लिए, जो आज भी लड़कियां, महिलाएं इन सब की जुआ पर रटा हुआ है। किशोरदा की आवाज़ में अभी आप जो गीत सुन रहे थे हर हसीन चीज़ का, और लता दी की आवाज़ में तेरा मेरा साथ रहे जैसे गीतों ने फिल्म सौदागर को यादगार बना दिया। फिल्म में पद्मा खन्ना ने खूब नाम कमाया। सजना है मुझे सजना के लिए गीत इन्हीं पर फिल्माया गया था, जिसमें वो बहुत खूबसूरत लगी थी। आपको याद होगा पद्मा खन्ना, जिन्होंने रामानंद सागर की रामायण में केकई का रोल प्ले किया था और दर्शकों की खूब वाहवाही भी लूटी थी, और इन्हीं पर ये हिट सॉन्ग भी पिक्चराइज किया था। तो चलिए सुनते हैं इसी गीत को आशा जी की आवाज़ में।

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: आप सुन रहे हैं प्रोग्राम एक ही फिल्म से। आज हम लेकर आए हैं 1973 की एक सुपरहिट फिल्म सौदागर। आपके साथ मैं हूं आपकी दोस्त एंड होस्ट अंजू पांडे। और आपको बता दूं कि आप हमारे इस चैनल पर, जी हां, आपके अपने इंद्रप्रस्थ चैनल पर हर रोज दोपहर 3 बजे से 3:30 बजे तक एक और नया प्रोग्राम सुन सकते हैं फिल्मी गीतों का। तो इस बार भी आप हमेशा की तरह अपने संदेशों के जरिए उस प्रोग्राम में भी जुड़ सकते हैं। तो आपके साथ 3:30 बजे तक एक बार फिर मैं आपके साथ रहूंगी। फिलहाल इसी फिल्म का एक और गीत आप तक पहुंचा रही हूं।

फिल्म सौदागर जो बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं कर पाई थी, लेकिन अमिताभ बच्चन और नूतन की जोड़ी ने दर्शकों को जरूर इम्प्रेस किया। अमिताभ बच्चन का मोती का किरदार आज भी हिट है। यह अमिताभ बच्चन के करियर की पहली फिल्म थी जिसे 46वें एकेडमी अवार्ड्स में भारत की ओर से ऑफिशियली एंट्री ली थी। फिल्म बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज कैटेगरी के लिए चुनी गई थी, लेकिन इसे ऑस्कर में नॉमिनेशन नहीं मिल पाया था। फिल्म की शूटिंग पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना के गांव में हुई थी।

आपको बता दें कि 1969 में ये फिल्म नूतन और संजीव कुमार के साथ बनाई जानी थी, लेकिन एक ऐसी घटना घटी जिसमें कुछ तकरार, कुछ अनबन और नूतन और संजीव कुमार का कुछ ऐसा झगड़ा हो गया जिसके बाद इन दोनों ने एक दूसरे के साथ फिल्में नहीं की। मगर 1972 में अमिताभ बच्चन को लेकर ये फिल्म बनाई गई। प्रेम, विश्वासघात, लालच, पितृसत्ता और लैंगिक पूर्वाग्रह जैसे विषयों को उजागर करती ये फिल्म सौदागर आज भी लोगों की पसंदीदा फिल्म की लिस्ट में शामिल है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको भी ये फिल्म हमेशा की तरह ज़रूर पसंद आई होगी। ढेर सारे संदेश भी आपके पहुँचे हैं, उन्हें बस मैं शामिल कर रही हूँ।

रोशन लाल देवनगन, कौशला हेमलता, डिंपल जी विलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए हैं हमारे साथ, पिंकी सोनकार, मुन्ना भाई शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से हमारे साथ हैं, राजेश वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सोटसिन गिल, दलजीत, राजदीप गुरनूल, गांव लोहगढ़ ठाकुरवाला से हमारे साथ हैं, और नीतीश कुमार, तनुजा, ईशांत, लखन, पहांदा पलारी छत्तीसगढ़ से जुड़ चुके हैं, अजीत भापसर जी वीरनगांव गुजरात से, प्रमीला भापसर और सनी जी के साथ जुड़े हुए हैं। हमेशा की तरह ढेर सारी जानकारी आपने हम तक पहुंचाई है। पछियाला पंजाब से सोमदत्त, केरब ज्योति रानी, गुरमीत हमारे साथ हैं, निसार अली

नौशाद जी के साथ घनौरी तेली वाला उत्तराखंड से जुड़े हुए हैं। सुदर्शन मुखी अनीता सिमरन जी शांतिनगर सोनीपत से साथ में हैं। फलिस्का पंजाब खेड़ा परिवार भूषण खेड़ा विष्णु विशाल जी हमारे साथ हैं। मेरठ से दिग्दर्शन और कविता गौड़ हैं। सुनील पाठक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं। ये संदेश समरील नवापारा से मुकेश गुप्ता श्रद्धा अदिति राधे गुप्ता का है। गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा जसवीर जस्सी जी हैं। देवशंकर तामुरिया जयदेव जी कबीर रेडियो श्रोता संघ डोंजी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से हैं। जलालाबाद बेस्ट से सुरेश गंगनेजा पूनम जी हैं। बागपत उत्तर प्रदेश से संजय डिंगिया नमन डिंगिया पार जी हैं। गुरमीन सिंह मीता साउथ एक्सटेंशन से शालीमार बाग दिल्ली से अशोक कुमार सहगल जुड़े हुए हैं। और सुरेश जाघव अनीता जी हमारे साथ नेहरू चौक पैठण से जुड़े हैं। ऊपरकोट मोहल्ला चौखंडी बुलंदशहर से मोहम्मद सैद अब्बासी निगत परवीन शरवास फरदीन सुहान अरजान अबान और परिवार के सभी सदस्य हमारे साथ हैं। जीवी राणा जी नेहरू विहार दिल्ली से हैं। संदीप मकर ज्योति मकर जी हमारे साथ पिंगा वाला चौक गौरख जालंधर से जुड़े हुए हैं। पोचियाल गला कला दुर्ग से संजय साहू सुजाता साहू जी हमारे साथ हैं। ये संदेश भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिपा कपिल पूजा परिहार का है। पहाड़गढ़ मुल्तानी ढाणा से अनिल मोहन उषा मोहन चिलू नायक मधु नायक जी हमारे साथ हैं। मुकेश भट्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अगला संदेश बबलेश पवार जी का आया है और उन्होंने भी ढेर सारी जानकारी हम तक पहुंचाई है। डैनी पवार और मनीष जी इनके साथ जुड़े हुए हैं। कुछ और संदेश भी हमारे पास पहुंचे हैं, हम उनको भी शामिल कर लेते हैं। हीरामणि वर्मा दत्रेंगी भाटापारा से हमारे साथ हैं और छत्तीसगढ़ चूड़ी लाइन मुंगेरी से मोहम्मद इसाक खतीजा बेगम और उनके परिवार के सदस्य हैं। स्वर्ण सिंह गिल दलजीत राजदीप लोहगढ़ ठाकुरवाला से हैं। रघुनाथपुरा जिला श्री गंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी हेमलता हिना हर्षित खुशी जी हमारे साथ हैं। नागरकोला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू जामुन देवी प्रेम पूजा दुष्यंत प्रांजल समीक्षा आराध्या जी हमारे साथ हैं। सुदर्शन मुखी जी का एक बार फिर संदेश आया है तो आप सभी का हम शुक्रिया अदा करते हैं हमारे सफर में हम सफर बनने के लिए। और आपसे इतना ही हमेशा की तरह कहेंगे कि अगर आपने अभी तक फिल्म सौदागर को मिस किया है नहीं देखा है तो वक्त निकालिए। बहुत खूबसूरत सी फिल्म है और भले ही उस वक्त ये फिल्म हिट नहीं रही लेकिन उसके बाद लोगों ने इसको बहुत पसंद किया। दो अब हम आपकी और मेरी मुलाकात 3 बजे होगी। जी हाँ, आज दोपहर 3 बजे खूबसूरत गीतों के साथ एक महफिल सजेगी जिसमें आप होंगे हम होंगे और हमारी खूबसूरत जो फिल्मी दुनिया है उसके गीत होंगे। तब तक अपनी दोस्त एंड होस्ट अंजू पांडे को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। 1:40 होने को ही कुछ ही देर में समाचार होंगे।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। खबरां दे नाल मैं सरबजीत कौर, पहले इस बुलेटिन दियां खास खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवी दिल्ली दे राष्ट्रपति भवन विखे नीति आयोग दी 11वीं गवर्निंग कौंसल मीटिंग दी प्रधानगी कर रहे ने। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने भारत बुल्गेरिया संबंधा नूं होर गतिशील ते अगाम तो बनाउण दा सद्दा दित्ता है। केंद्रीय सूचना ते प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि कश्मीर तो कच्छ तक देश दे सरहदी इलाकियां विच आकाशवाणी अते दूरदर्शन कवरेज नूं मजबूत करन लई विशेष प्रबंध विकसित कीते जा रहे ने। सरकार ने इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल दियां कुछ किस्मां ते एक्साइज ड्यूटी माफ कर दित्ती है ते 1 महीने तक चलण वाला फुटबाल मुकाबला 2026 फीफा विश्व कप आज रात मैक्सिको सिटी दे इतिहासक एस्टाडियो एस्टेका विखे शुरू हो रहा है। हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवी दिल्ली दे राष्ट्रपति भवन विखे नीति आयोग दी 11वीं गवर्निंग कौंसल मीटिंग दी प्रधानगी कर रहे ने। मीटिंग विच उद्यमता नूं उत्साहित करन, हुनर वधाउण अते देश भर विच निरंतर रहणयोग रोजगार दे मौके पैदा करन दे उपावां ते विचार वटांदरा कीता जा रहा है। विचार वटांदरे समूहक तौर ते इक लागू करन रोडमैप तैयार करन ते वी केंद्रित होणगे जो जवाबदेही अते मापणयोग प्रभाव नूं यकीनी बणाउंदे होए शासन डिजिटल जनतक बुनियादी ढांचा अते भाईवाली समेत मुख समर्थकां लाभ पहुंचाउण वाला होवे। मीटिंग विच देश भर दे मुख्यमंत्री ते उपराज्यपाल चानमुख थम्मा दे आले दुआले जुड़े समावेशी मनुखी विकास ढांचे ते चर्चा करन लई कत्तर होए ने। इन्हां च बुनियादी मनुखी पूंजी अते भविख लई तैयार हुनर, उत्पादक रोजगार, उद्यमशीलता अते विकेंद्रीकृत विकास, सेहत, पोषण ते तंदुरुस्ती अते सारयां लई समानता ते माण शामिल है। एक सोशल मीडिया पोस्ट विच श्री मोदी ने कहा कि सहकारी संघवाद की भावना राही संचालित केंद्र अते राज भारत की विकास यात्रा नूं तेज करन लई रल के काम कर रहे ने। उन्होंने अगे कहा कि केंद्र अते राजां दे समूहक यतन विकास विकसित भारत दे सांझे दृष्टिकोण नूं साकार करन विच इक महत्वपूर्ण भूमिका निभाउणगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अज कहा कि किसानां दी भलाई सरकार दियां प्रमुख तरजीहां विचों एक है ते सरकार उन्हां दे जीवन नूं सुखाला बनाउण लई हर संभव यतन कर रही है। एक सोशल मीडिया पोस्ट विच प्रधानमंत्री ने कहा कि किसान देश दी खुराक सुरक्षा पोषण ते खुशहाली दी रीढ़ ने। प्रधानमंत्री ने इस गल ते भी जोर दिता कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि अते फसल बीमा योजना वर्गियां पहलकदमियां ना सिर्फ किसानां दी आमदन दी राखी कर रही ने सगों खेतीबाड़ी नूं भी मजबूत बना रही ने। किसान क्रैडिट कार्ड दी महत्ता ते जोर दिंदे होए उन्हां दस्सिया कि यह कार्ड किसानां पशु पालकां ते मछेरियां नूं खेती अते होर जरूरी जरूरतां लई बहुत घट व्याज दरां ते कर्जे तक आसान पहुंच प्रदान करदा है। उन्हां कहा कि सरकार दी बीज तो बाजार पहल फसलां लई उचित कीमतां नूं यकीनी बनाउण विच बेहद प्रभावशाली साबित हो रही है। उन्हां भी कहा कि सरकार ने देश दे किसानां नूं आधुनिक खेतीबाड़ी सहूलतां प्रदान करन ते लगातार जोर दित्ता है। श्री मोदी ने कहा कि खेतीबाड़ी सिर्फ उपजीविका दा साधन नहीं सगों समाज अते राष्ट्र दे पोषण दा मूल आधार है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि भारत ते बुल्गेरिया नाल संबंध लंबे समय तो चल रहे अते इकसार ने अते हुण दोवां देशां दा काम उन्हां नूं होर गतिशील अते गांह वधू संबंधां विच मुड़ नुहार देणा है। उन्हां ने गल बुल्गेरिया विच अपने बुल्गेरियाई हमरुतबा वेलिसलावा पेत्रोवा चामोवा नाल मुलाकात तो बाद कही। डॉ जयशंकर ने कहा कि उन्हां दी चर्चा दे 3 पहलू सन। पहला भारत ते बुल्गेरिया विचकार दवला सहयोग, दूजा भारत ते यूरोपियन यूनियन विचकार भाईवाली अते आखिर ए कि किवें मजबूत देश विश्व स्थिरता ते तरक्की लई रल के काम कर सकदे ने।
2: हमारी बातचीत के 3 पहलू थे। पहला, भारत और बुल्गेरिया के बीच आपसी सहयोग। दूसरा, भारत और यूरोपीय संघ के बीच साझेदारी। और तीसरा, वैश्विक स्थिरता और विकास के लिए ताकतवर देश किस तरह मिलकर काम कर सकते हैं।
1: डॉक्टर जयशंकर ने जोर देके कहा कि भारत दी आर्थिक सुरक्षा विघन ते हालिया अनुभवां अते दहशतगर्दी ते वध रहे खतरे बारे स्पष्ट स्थिति है। उन्हां अगे कहा कि भारत दा मनना है कि यह जंग दा युग नहीं है ते टकरावां दा इक्को इक हल गलबात अते कूटनीति विच है। केंद्रीय सूचना ते प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अज राजस्थान दे जैसलमेर जिले दे रामगढ़ विखे जयपुर दे आकाशवाणी कॉम्पलैक्स च कराए गए प्रोग्राम दौरान 20 किलोवाट एफएम ट्रांसमीटर दा वर्चुअल उद्घाटन कीता। इस वादे दे नाल राज विच एफएम

पहली परवाज मुकम्मल की। अमरीकी हमलों के बाद ईरान ने आबनाए हुरमुज बंद करने का ऐलान किया है। और आज रात मैक्सिको में शुरू होने वाले एक महीना तवील फुटबॉल की दुनिया के सबसे बड़े टूर्नामेंट फीफा आलमी कप के लिए दुनिया भर के फुटबॉल मद्दा तैयार हैं। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल मीटिंग की सदारत की। मीटिंग में कारोबार को फरोग देने, हुनरमंदी में इजाफा करने और रोजगार के मौके पैदा करने के इकदामात पर गौर खोज किया जाएगा। तबादला ख्याल के दौरान इज्तिमाई तौर पर अमलावरी का खाका तैयार करने पर भी तवज्जो मरकूज की जाएगी, ताकि जवाबदेही को यकीनी बनाते हुए हुक्मरानी, डिजिटल अवामी बुनियादी ढांचे और साझेदारी को फाल बनाया जा सके। सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि तआवुन पर मबनी वफाकी निज़ाम के जज्बे से रहनुमाई हासिल करते हुए मरकज़ और रियासतें भारत की तरक्की के सफर में तेज़ी लाने के लिए एक साथ मिलकर काम कर रही हैं। उन्होंने मजीद कहा कि मरकज़ और रियासतों की इज्तिमाई कोशिशें विकसित भारत के मुश्तरक विजन की तकमील में अहम किरदार अदा करेंगी। इस साल की मीटिंग का मौजू है विकसित भारत 2047 के लिए सबकी शमूलियत वाली इंसानी तरक्की, जिसमें उम्र, खित्ते, जिंस या समाजी व इक्तसादी पस मंज़र से क़त नज़र हर शहरी की फलाह व बहबूद और तरक्की पर जोर दिया गया है। गवर्निंग काउंसिल इस विज़न को पाए तकमील तक पहुँचाने की हिकमत अमली और इसे मुल्क भर के शहरियों के लिए एक ठोस नतीजे में बदलने पर गौर करेगी। रेलवे और इत्तिलात व नशरियात के मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव ने आज जयपुर के आकाशवाणी अहाते में मुनक़िद प्रोग्राम के दौरान राजस्थान के जैसलमेर ज़िले के रामगढ़ में नसब 20 किलोवाट FM ट्रांसमीटर का वर्चुअल तरीके से इफ्तिताह किया। तकरीब में जयपुर के रुकन पार्लियामेंट मनोज शर्मा, प्रसार भारती चेयरमैन प्रसून जोशी और आकाशवाणी के डायरेक्टर जनरल राजीव कुमार जैन के अलावा दीगर सीनियर अफसरान मौजूद थे। तकरीब से खिताब करते हुए मरकजी वजीर वैष्णव ने स्ट्रेटेजिक एतबार से अहम बुनियादी ढांचे पर तवज्जो मरकूज करते हुए सरहदी खित्तों में मवासिलात को मुस्तहकम करने के तहीं हुकूमत के अज़्म को उजागर किया। उन्होंने कहा कि सरहदी इलाकों का अहाता करने की बड़ी पहल आज राजस्थान में शुरू हुई है। जनाब वैष्णव ने कहा कि कश्मीर से शुरू करते हुए मुल्क की पूरी सरहदी पट्टी को जामे कवरेज फराहम करने का मंसूबा है। हुकूमत ने इथेनॉल की आमेजिश वाले बाज अकसाम के पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी ख़त्म कर दी है। एक नोटिफिकेशन में मरकजी वजारत ख़जाना ने ऐलान किया है कि 22%, 25%, 27% और 30% एथेनॉल की आमेजिश वाले पेट्रोल को मरकजी एक्साइज ड्यूटी से मुस्तस्ना कर दिया गया है। वजारत ने कहा है कि इस कदम का मकसद भारत के इथेनॉल की आमेजिश के प्रोग्राम को मुस्तहकम करना है, ताकि दरामद किए जाने वाले खाम तेल पर इन्हिसार कम हो, कार्बन के अखराज में कमी आए और मुल्क में तैयार करदा इथेनॉल की मांग में इजाफा किया जा सके। तृणमूल कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट प्रकाश चिक बराइक ने राज्यसभा के रुकन के तौर पर इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना इस्तीफा राज्यसभा के सदरनशीं CP राधाकृष्णन को भेज दिया है। इससे पहले तृणमूल कांग्रेस के रहनुमा और राज्यसभा के रुकन सुखेंदु शेखर रे और सुष्मिता देव ने राज्यसभा और पार्टी दोनों से इस्तीफा दे दिया था। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। शहरी आबादी के वजीर राम मोहन नायडू ने आज गुजरात में वडोदरा से भारत में तैयार की गई पहली एयरबस C295 की पहली आजमाइशी परवाज पर खुशी का इजहार किया। सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब नायडू ने कहा कि यह आसमान में उड़ने वाला महज एक हवाई जहाज नहीं है, बल्कि इससे हवाई जहाज़ों की तैयारी में मुल्क की बढ़ती हुई सलाहियतों का भी इजहार होता है। शहरी आबादी के वजीर ने इस कामयाबी पर एयरबस, टाटा एडवांस सिस्टम, भारतीय फिजाइया और सभी इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस और वर्करों को मुबारकबाद दी है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अदीब और कंसल्टेंसी फर्म काउंसिलेज इंडिया के बानी और मैनेजिंग पार्टनर का मजमून शेयर किया है। ये मजमून वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की मुद्दत कार का अहाता करता है और इस बात को उजागर करता है कि उन्होंने मुश्किल रास्ते को चुना और हुक्मरानी के तरीक़ेकार के ज़रिए बदलाव लाते हुए वक़ार और खिदमात की फराहमी को अवामी तहरीक बना दिया। ये मजमून इस बात को भी नुमाया करता है कि जनाब मोदी ज़्यादा बाअसर वज़ीर-ए-आज़म साबित हुए और वो बदलाव लाने वाले शख्स बने जिसकी भारत को सख्त ज़रूरत थी। भूटान के वज़ीर-ए-आज़म शेरिंग टोबगे ने आज कौमी रोज़नामे में एक मजमून लिखा, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को सबसे तवील मुद्दत तक मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर फ़राइज़ अंजाम देने पर मुबारकबाद दी गई।
اپنے مضمون میں بھوٹان کے

0: वज़ीर-ए-आज़म ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी को काबिल एतबार दोस्त, बड़ा भाई और रहबर करार दिया। जनाब टोबगे ने 26 मई 2014 को जनाब मोदी की हलफबरदारी की तकरीब के दौरान उनसे हुई मुलाकात को याद किया और वज़ीर-ए-आज़म के पहले गैर मुल्की दौरे के लिए भारत की जानिब से भूटान को चुने जाने की अहमियत पर रोशनी डाली। जनाब टोबगे ने जोर देकर कहा कि जनाब मोदी की क़यादत में गहरे होते दोतरफा ताल्लुकात के दौरान भारत भूटान का सबसे करीब तरीन दोस्त और सबसे ज़्यादा भरोसेमंद साथी बना रहेगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मारूफ फिल्म साज भारती राजा के इंतकाल पर आज अफसोस का इजहार किया। सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि भारती राजा सिनेमा की दुनिया की कद्दावर शख्सियत थे जिनके काम ने तमिल सिनेमा को बदल कर रख दिया। वज़ीर आज़म ने कहा कि फिल्म साज भारती राजा की जानिब से पेश की गई देही जिंदगी को खूब सराहा गया। वज़ीर आज़म ने भारती राजा के अफराद खानदान और मद्दाहों से ताज़ियत का इजहार किया है। हुकूमत ने उस जाली वीडियो की तर्दीद की है जिसमें भारतीय फिजाइया के तैयारे के पाकिस्तान सरहद के करीब तबाह होने का दावा किया गया था। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो PIB की हकायक की जांच करने वाली इकाई ने कहा कि यह दावा फर्जी है और इस वीडियो को पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा अकाउंट्स की जानिब से फैलाया जा रहा है। अमरीकी फौज ने कल ईरान में कई ठिकानों पर फिर से हमले किए। अमरीकी फौज ने कहा कि ईरान की लगातार जारहियत के तनाजुर में जवाबी कार्रवाई करते हुए ये हमले किए गए हैं। लड़ाई ख़त्म करने के लिए मुज़ाकरात बहाल करने की कोशिशों के बावजूद मगरबी एशिया में फिर से कशीदगी बढ़ गई है। इधर ईरान के पासदारान इनकलाब ने तेल टैंकरों और कमर्शियल बहरी जहाज़ों समेत हर तरह के जहाज़ों के लिए आबनाए हुरमुज के बंद होने का ऐलान किया है, जबकि अमरीका की मरकज़ी कमान ने कहा है कि कमर्शियल बहरी जहाज़ बदस्तूर आबनाए हुरमुज से गुजर रहे हैं। ईरान के पासदारान इनकलाब ने यह भी कहा है कि उन्होंने ईरान पर अमरीकी हमलों के बाद कल आबनाए हुरमुज में दो बहरी जहाज़ों को निशाना बनाया है। दुनिया का सबसे बड़ा फुटबॉल टूर्नामेंट फीफा वर्ल्ड कप 2026 आज रात मेक्सिको सिटी में तारीखी स्टेडियो अजटेका के मकाम पर शुरू हो रहा है और जो 19 जुलाई तक जारी रहेगा। टूर्नामेंट के मैच अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में खेले जाएंगे। तफसील हमारे नामा निगार से।
1: वर्ल्ड कप की तारीख में यह सबसे बड़ा टूर्नामेंट है। इसमें 48 टीमें हिस्सा ले रही हैं जबकि साबिका टूर्नामेंट्स में 32 टीमें थीं। इस टूर्नामेंट में चार चार टीमों के 12 ग्रुप होंगे। हर ग्रुप से चोटी की दो टीमें नॉकआउट मरहले में पहुंच जाएंगी। इस टूर्नामेंट में ग्रुप मरहले में 72 मैचों समेत मजमूई तौर पर 104 मैच खेले जाएंगे जो कि एक रिकॉर्ड है। वर्ल्ड का फाइनल 19 जुलाई को होगा। स्पोर्ट डेस्क से शगुन चोपड़ा की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं फैसल हबीब।
0: इस दौरान फीफा आलमी कप में पहला मैच ग्रुप ए में मेक्सिको और जनूबी अफ्रीका के दरमियान खेला जाएगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक रात 12:30 बजे शुरू होगा। और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल मीटिंग की सदारत की। वज़ीर आज़म ने कहा कि मरकज़ और रियासतों की इज्तिमाई कोशिशें विकसित भारत के नज़रिए को हकीकत में बदलने में अहम साबित होंगी। इत्तेलात व नशरियात के वज़ीर अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि हुकूमत भारत के सरहदी खित्तों में आकाशवाणी और दूरदर्शन के कवरेज को मजबूत करने के लिए कोशिशें कर रही है। जनाब वैष्णव ने राजस्थान के जैसलमेर ज़िले में 20 किलोवाट FM ट्रांसमीटर का इफ्तिताह किया। मरकज़ ने इथेनॉल की आमेजिश वाले पेट्रोल की कुछ अकसाम पर एक्साइज ड्यूटी ख़त्म कर दी है। TMC रुकने पार्लियामेंट प्रकाश चिक बराइक ने राज्यसभा के रुकन के ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। पहले मेड इन इंडिया एयरबस C295 तैयारे ने वडोदरा में अपनी पहली परवाज़ मुकम्मल की। और अमरीकी हमलों के बाद ईरान ने आबनाए हुरमुज बंद करने का ऐलान किया है। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
2: गुड आफ्टरनून, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वल्सा विलियम्स विद द मिड डे न्यूज। द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi stresses collective efforts of centre and states key to realising Vikasit Bharat vision. Chairs 11th Governing Council meeting of Niti Aayog in New Delhi. Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav says government making efforts to strengthen Akashvani and Doordarshan coverage across border regions. Inaugurates 20 kilowatt FM transmitter in Rajasthan's Jaisalmer. Centre waives excise duty on certain variants of ethanol blended petrol. Another TMC MP, Prakash Chigbaraik, resigns from Rajya Sabha. first made in India Airbus C295 aircraft.

0: Their air defense systems were activated and interceptions were carried out. Kuwait temporarily suspended air traffic as a precaution after reporting hostile air targets in its airspace, while Bahrain issued security alerts and reported interceptions of incoming drones. Reports.
1: Sports fans across the world are set for a month-long football spectacle as the 2026 FIFA World Cup kicks off tonight at the historic Estadio Azteca in Mexico City.
2: This edition of the World Cup will be the biggest in history, with an expansion from 32 to 48 teams. A record 104 matches will be played, with 72 in the group stage and 32 in the knockout rounds across host nations, United States, Canada and Mexico. The three host nations qualified automatically, while 45 teams earned their places through a demanding two-year qualification journey. The competition features 12 groups of four teams each. The top two teams from every group, along with the eight best third-place teams, will advance to the round of 32. This expands the knockout stage to 32 teams for the first time in tournament history. The grand final is scheduled for 19th of July, promising a thrilling conclusion to football's greatest celebration. This World Cup is also expected to be one of the most challenging in history, with teams facing demanding conditions across three countries, including long travel distances, varying climates, different altitudes, and shifting time zones. Over the decades, only eight nations have lifted the FIFA World Cup trophy: Brazil, Italy, Germany, Spain, Argentina, England, France and Uruguay, the inaugural champions. Among the most unfortunate sides in World Cup history remain the Netherlands, who have reached three finals but are yet to win the title despite producing generations of world-class talent. From history to high stakes, from legends to new challengers, the stage is set for football's ultimate battle. Shagun Chopra from Sports Desk.
1: And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi stresses collective efforts of centre and states key to realising Viksit Bharat vision, chairs 11th Governing Council meeting of Niti Aayog in New Delhi. Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav inaugurates 20 kilowatt FM transmitter in Rajasthan's Jaisalmer. Centre waives excise duty on certain variants of ethanol blended petrol. First Made in India Airbus C-295 aircraft completes maiden test flight from Vadodara. And with that, we end the midday news.
3: Namaskar. Akashwani se dopahar samachar ke saath main Lavleen Nigam. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, केंद्र और राज्य सरकारों के सामूहिक प्रयास विकसित भारत के दृष्टिकोण की भावना को साकार करने में महत्वपूर्ण। उन्होंने नई दिल्ली में नीति आयोग के 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, सरकार सीमावर्ती क्षेत्रों में आकाशवाणी और दूरदर्शन की पहुंच मजबूत करने के प्रयास कर रही है। राजस्थान के जैसलमेर में 20 किलोवाट के FM ट्रांसमीटर का उद्घाटन किया। सरकार ने कुछ एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क माफ किया। तृणमूल कांग्रेस के सांसद प्रकाश चिकबराइक ने राज्यसभा सदस्य पद से इस्तीफा दिया। भारत में निर्मित एयरबस C-295 विमान ने वडोदरा में पहली परीक्षण उड़ान सफलतापूर्वक संपन्न की। अमेरिका के हमलों के बाद ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य को बंद करने की घोषणा की। और फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट का आज रात मैक्सिको सिटी में शुभारंभ। समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भले ही दुनिया अनिश्चितता और अस्थिरता के दौर से गुजर रही हो, लेकिन भारत आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ विकास पथ पर अग्रसर है। नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री मोदी ने कहा कि जैसे जैसे भारत विकसित भारत के लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रहा है, ऐसे में केंद्र और राज्य सरकारों की सामूहिक जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। श्री मोदी ने कहा कि राज्यों के बीच सहयोग, संवाद और विचारों का आदान प्रदान होना चाहिए। उन्होंने कहा कि नीति आयोग इसमें सहयोग के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, ताकि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच विचारों का समुचित आदान प्रदान हो सके और विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में सामूहिक प्रयासों को बल मिले। बैठक में देश

0: में उद्यमिता और कौशल विकास को बढ़ावा देने तथा रोजगार के स्थायी अवसर सृजित करने के उपायों पर विचार विमर्श किया जा रहा है। इस वर्ष की बैठक का विषय है 2047 तक विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास। बैठक में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल और उपराज्यपाल भाग ले रहे हैं। किसानों का कल्याण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है और सरकार उनके जीवन को सुगम बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि किसान देश की खाद्य सुरक्षा, पोषण और समृद्धि की रीढ़ हैं। प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और फसल बीमा योजना जैसी पहले न केवल किसानों की आय की रक्षा कर रही हैं बल्कि कृषि को और भी सशक्त बना रही हैं। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज जयपुर में आकाशवाणी परिसर में आयोजित कार्यक्रम में राजस्थान के रामगढ़ में 20 किलोवाट के FM ट्रांसमीटर का उद्घाटन वर्चुअली माध्यम से किया। इस कार्यक्रम में जयपुर की सांसद मंजू शर्मा, प्रसार भारती के अध्यक्ष प्रसून जोशी और आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। श्री वैष्णव ने सामरिक अवसंरचना पर ध्यान केंद्रित करते हुए सीमावर्ती क्षेत्रों में संचार व्यवस्था को मजबूत करने के लिए आकाशवाणी और दूरदर्शन से सरकार की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला। उन्होंने समय के साथ परिवर्तन पर भी बल दिया।
1: मैं निवेदन करूंगा आकाशवाणी के सभी साथियों से और विशेषकर DG साहब से, राजीव जी से और हमारे प्रसार भारती के चेयरमैन श्री प्रसून जोशी जी से कि अब हम एक नए तरीके से सोचें आकाशवाणी के बारे में। हम आज के समय के हिसाब से आकाशवाणी को डिजिटल फर्स्ट और हाइपर लोकल, इन दो सूत्रों में बांधे। जो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म हमारे पास आज अवेलेबल है, अपना खुद का वेब्स OTT है, उस प्लेटफॉर्म को यूज करें। लोकल आर्ट, लोकल संस्कृति, लोकल खानपान को आगे लाने का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बनाए। अगले 1000 दिनों में एक मास्टर प्लान बना के आकाशवाणी और दूरदर्शन का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन करें। आपको पूरा फ्रीडम है, जो आप कहोगे वो पॉलिसी बनेगी। पॉलिसी बनाने वाले आप, इम्प्लीमेंट करने वाले आप।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि राजस्थान में सीमावर्ती क्षेत्रों में संचार और प्रसारण नेटवर्क को मजबूत करने के लिए ये पहल शुरू की गई है।
1: करीब अपने 450 स्टेशन है पूरे प्रदेश में, उसमें से 200 स्टेशनों का काम करीब करीब पूरा होने को आया है। तो ये काम जो कि जन जन को, जैसे श्रद्धेय अटल जी ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बना के गांव गांव तक सड़क पहुंचाई थी, वैसा ही आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी छोटे से छोटे स्टेशन पर भी अच्छा काम करने के लिए दिन रात लगे। बड़े स्टेशनों का काम तो अपनी जगह है, जयपुर में एक तरीके से लोग आते हुए स्टेशन को भी देखेंगे, जैसे हवा महल देखने जाते, वैसे ही ये भी एक टूरिज्म का अच्छा अट्रैक्शन बनेगा और जनता को बहुत बड़ी सुविधाएं होंगी।
0: सरकार ने कुछ एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क माफ कर दिया है। वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना के माध्यम से 22, 25, 27 और 30 प्रतिशत एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को केंद्रीय उत्पाद शुल्क से पूरी तरह छूट देने की घोषणा की है। मंत्रालय ने कहा कि अब इन चारों ईंधन श्रेणियों पर उत्पाद शुल्क शून्य रहेगा। इसका उद्देश्य भारत के एथेनॉल मिशन कार्यक्रम को मजबूत करना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे newzoneair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। भारत में निर्मित एयरबस C295 विमान ने गुजरात के वडोदरा से पहली परीक्षण उड़ान सफलतापूर्वक संपन्न की। नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने भारत में निर्मित पहले एयरबस C295 के प्रथम सफल परीक्षण उड़ान की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि यह एरोस्पेस विनिर्माण में देश की बढ़ती क्षमताओं को भी दर्शाता है। उन्होंने इस उपलब्धि के लिए एयरबस, टाटा एडवांस्ड सिस्टम, भारतीय वायुसेना और सभी इंजीनियरों, तकनीशियनों और कर्मचारियों को बधाई दी। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और बुल्गारिया के संबंध दीर्घकालिक और स्थिर हैं। बुल्गारिया के विदेश मंत्री वेलिस्लावा पेट्रोवा चामोवा से मुलाकात के दौरान श्री जयशंकर ने कहा कि दोनों देश मिलकर भविष्य में संबंधों को बेहतर करने पर कार्य करेंगे।
2: हमारी बातचीत के तीन पहलू थे। पहला, भारत और बुल्गारिया के बीच आपसी सहयोग। दूसरा, भारत और यूरोपीय संघ के बीच साझेदारी। और तीसरा, वैश्विक स्थिरता और विकास के लिए ताकतवर देश किस तरह मिलकर काम कर सकते हैं।
0: डॉक्टर जयशंकर ने बल देकर कहा कि आर्थिक सुरक्षा और आतंकवाद के बढ़ते खतरे पर भारत का स्पष्ट रुख है।
2: भारत का मानना है कि ये

0: और युद्ध का नहीं है और संघर्षों का एकमात्र समाधान बातचीत तथा कूटनीति है। जब बात आर्थिक जोखिमों की आती है तो इससे निपटने का तरीका मजबूत आपूर्ति श्रृंखला और अधिक विविधता है और ये सुनिश्चित करना आवश्यक है कि समुद्री व्यापार में कोई रुकावट न आए। साथ ही आतंकवाद के मामले में दुनिया को शून्य सहिष्णुता की नीति पर स्पष्ट रुख अपनाना होगा।
1: ओमान की खाड़ी में पलाव ध्वज वाले वाणिज्यिक जहाज एमटी सिटेबोलो पर अमरीकी सेना के हमले में लापता हुए तीनों भारतीय नाविकों की मौत की पुष्टि हो गई है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि तीनों शव बरामद कर लिए गए हैं। उन्होंने इस घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। श्री सोनोवाल ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे बचाए गए चालक दल के सदस्यों को तुरंत स्वदेश वापस लाया जाए और मृतकों के पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए शीघ्र भारत भेजा जाए। अमेरिका ने ईरान पर नए सैन्य हमले किए हैं। जवाबी कार्रवाई में ईरान ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य बंद करने की घोषणा की है और क्षेत्र में अमरीकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। अमेरिका की केंद्रीय कमान ने कहा कि अमेरिका ने आत्मरक्षा में लगातार दूसरे दिन हमले किए। इनमें ईरान की वायु रक्षा प्रणालियों, रडार और संचार ढांचों को निशाना बनाया गया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ईरान के मीडिया ने बंदर अब्बास, केशम द्वीप, मीनाब और सिरिक सहित कई स्थानों पर विस्फोट की सूचना दी है।
2: मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन अब ईरान की बॉर्डर से बाहर भी फैल चुका है। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने क्लेम किया है कि उन्होंने बहरीन, कुवैत और जॉर्डन में यूएस मिलिट्री फैसिलिटीज पर मिसाइल और ड्रोन अटैक्स लॉन्च किए हैं। ये लेटेस्ट अमेरिकन स्ट्राइक्स के रेस्पॉन्स में किया गया रिटेलिएशन है। ईरानियन स्टेट मीडिया के मुताबिक जॉर्डन के मुवाफक साल्टी एयरबेस पर 12 बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर किए गए और तेहरान का कहना है कि इससे मिलिट्री फैसिलिटीज और एयरक्राफ्ट शेल्टर्स को नुकसान पहुंचा है। लेकिन जॉर्डन या यूनाइटेड स्टेट्स ने क्लेम्स की अभी तक कंफर्मेशन नहीं दी है। कुवैत ने टेम्पररी तौर पर एयर ट्रैफिक सस्पेंड कर दिया। बहरीन से आए रिपोर्ट के मुताबिक इंटरसेप्शन के बाद डॉन डेब्री रेसिडेंशियल एरियाज में गिर गया, जिसे माइनर डैमेज और छोड़ लगने की रिपोर्ट्स हैं। मल्टीपल कंट्रीज में मिलिट्री एक्टिविटी रिपोर्ट होने और की शिपिंग लाइन्स पर प्रेशर बढ़ने के साथ ये फियर्स और बढ़ रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट एक और ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल और डेंजरस फेज में एंटर कर सकता है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दुबई।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। तृणमूल कांग्रेस के सांसद प्रकाश चेक बराइक ने राज्यसभा के सदस्य पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना त्यागपत्र राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन को भेज दिया है। इससे पहले तृणमूल कांग्रेस के नेता और राज्यसभा सदस्य सुखेंदु शेखर राय और सुष्मिता देव ने राज्यसभा पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों और वित्तीय बुनियादी ढांचे पर बढ़ते खतरे को लेकर चेतावनी जारी की है। एक रिपोर्ट।
3: गृह मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र द्वारा जारी चेतावनी के अनुसार साइबर अपराधी वित्तीय और व्यक्तिगत धोखाधड़ी के लिए एआई द्वारा डीप फेक वीडियो का तेजी से दुरुपयोग कर रहे हैं। आमतौर पर साइबर अपराधी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जॉब पोर्टल, डेटिंग प्लेटफॉर्म या फोन कॉल के माध्यम से संपर्क करते हैं। सरकार ने फिनटेक कंपनियों सहित वित्तीय संस्थानों को डीप फेक का पता लगाने के तंत्र को मजबूत करने और ग्राहक ऑनबोर्डिंग प्रणालियों को बेहतर बनाने की सलाह दी है। नागरिकों को सलाह दी गई है कि वे अपने बायोमेट्रिक डेटा को सुरक्षित रखें, संदिग्ध लॉगिन प्रयासों के प्रति सतर्क रहें और वित्तीय गतिविधियों से संबंधित ईमेल या एसएमएस सूचनाओं की नियमित रूप से निगरानी करें। यह भी आग्रह किया गया है कि वे किसी भी संदिग्ध वित्तीय लेनदेन की सूचना राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल के माध्यम से तुरंत दें। समाचार कक्ष से जया भारती।
1: सरकार ने स्पष्ट किया है कि पाकिस्तान सीमा के पास भारतीय वायुसेना का विमान दुर्घटनाग्रस्त होने का दावा करने वाला वीडियो पूरी तरह से भ्रामक है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा है कि यह दावा फर्जी है और वीडियो को पाकिस्तानी दुष्प्रचार खातों द्वारा प्रसारित किया जा रहा है। जांच इकाई ने नागरिकों से आग्रह किया है कि वे सीमा पार से चलाए जा रहे दुष्प्रचार अभियानों से सावधान रहें। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट आज से मेक्सिको

नागरिकों से आग्रह किया है कि वे सीमा पार से चलाए जा रहे दुष्प्रचार अभियानों से सावधान रहें। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट आज से मेक्सिको सिटी में रंगारंग कार्यक्रम के साथ शुरू हो रहा है। ये टूर्नामेंट 19 जुलाई तक अमरीका, कनाडा और मेक्सिको में आयोजित किया जाएगा। उद्घाटन मैच में आज ग्रुप ए में

0: सिटी में रंगारंग कार्यक्रम के साथ शुरू हो रहा है। ये टूर्नामेंट 19 जुलाई तक अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में आयोजित किया जाएगा। उद्घाटन मैच में आज ग्रुप ए में मेजबान मेक्सिको का सामना दक्षिण अफ्रीका से होगा। भारतीय समयानुसार ये मैच रात 12:30 बजे से शुरू होगा।
1: फीफा विश्व कप का ये अब तक का सबसे बड़ा संस्करण है। इसमें पहली बार 48 टीम भाग ले रही हैं। पहले के संस्करणों में 32 टीम शामिल होती थी। मेजबान देश अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको को विश्व कप में सीधे प्रवेश मिला है। ये विश्व कप इतिहास के सबसे चुनौतीपूर्ण विश्व कप में से एक होने की भी संभावना है, जिसमें टीमों को तीन देशों में कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा, जिनमें लंबी यात्राएं, बदलती जलवायु और बदलते समय क्षेत्र शामिल हैं। विश्व कप के इतिहास में अब तक ब्राजील, इटली, जर्मनी, स्पेन, अर्जेंटीना, इंग्लैंड, फ्रांस और उरुग्वे ने फीफा ट्रॉफी जीती है। अन्य 45 टीमों ने 2 वर्ष लंबे क्वालिफाइंग अभियान के जरिए अपनी जगह बनाई है। टूर्नामेंट में 12 ग्रुप हैं। प्रत्येक ग्रुप में 4-4 टीमें शामिल हैं। हर ग्रुप की शीर्ष 2 टीम सीधे नॉकआउट चरण में प्रवेश करेगी। प्रतियोगिता में कुल 104 मुकाबले खेले जाएंगे। इसमें 72 ग्रुप स्टेज

0: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलो हर्ट्ज पर। श्रोताओं, लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम एक ही कलाकार।
1: सच कह रहा है दीवाना।
0: नमस्कार दोस्तों, आपका इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मनोज, और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे कलाकार की, ऐसे एक्टर की, जिसने अपनी मोहक मुस्कान और कमाल की एक्टिंग से उत्तर से लेकर दक्षिण तक हर दिल पर राज किया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हमारे अपने मैडी यानी आर माधवन साहब की। जमशेदपुर के एक साधारण परिवार से निकलकर नेशनल अवार्ड विनर बनने तक का ये सफ़र कैसा रहा, आज जानेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं उनकी उस फिल्म से जिसने उन्हें रातों रात एक लड़की का क्रश बना दिया और हजारों युवाओं के दिल में उन्हें मशहूर कर दिया।

सच कह रहा है दीवाना। जी हाँ, मैडी और रीना की वो लव स्टोरी आंखों के सामने आ जाती है जब हम ये गीत सुनते हैं। लेकिन श्रोताओं, क्या आप जानते हैं कि माधवन कभी एक्टर बनना ही नहीं चाहते थे? वो तो इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग कर चुके थे और इंडियन आर्मी ज्वाइन करना चाहते थे, मगर किस्मत उन्हें मुंबई ले आई और टीवी सीरियल जैसे बनेगी अपनी बात और सी हॉक से उन्होंने शुरुआत की। फिर मणिरत्नम की फिल्म अलाई पायुथे, जिसने साउथ में तहलका मचा दिया, और उसी का हिंदी रीमेक था रहना है तेरे दिल में। चलिए आपको सुनवाते हैं इस फिल्म का एक और बेहद ही खूबसूरत गाना और यादें ताज़ा करते हैं।

वेलकम बैक दोस्तों। और एक ही कलाकार कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे हैं आर माधवन साहब की। बेड़ी की खासियत ये है कि वो सिर्फ रोमांटिक किरदारों में नहीं बंधे। बात करें साल 2006 में आई उनकी फिल्म रंग दे बसंती की, उनका रोल सिर्फ 9 मिनट का था, फ्लाइट लेफ्टिनेंट अजय राठौर का। लेकिन उस 9 मिनट के रोल में उन्होंने जो किरदार निभाया वो बहुत ही ख़ास था और जिसने करोड़ों दर्शकों को भावुक कर दिया, या ये यूँ कहें कि रुला दिया। इसके बाद मणि रत्नम साहब की फिल्म आई गुरु, जिसमें उन्होंने अभिषेक बच्चन के सामने एक ईमानदार पत्रकार श्याम सक्सेना का किरदार निभाया। और रंग दे बसंती में जो उन्होंने किरदार निभाया, आज भी जब हम उस फिल्म को देखते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। चलिए आपको इसी फिल्म का एक गीत आपको सुनवाते हैं ताकि आप भी एंजॉय करें।

एक ही कलाकार हमारे श्रोता सुन रहे हैं आज ये कार्यक्रम, और आपका एक बार फिर स्वागत है। और अब बात उस फिल्म की जिसने भारतीय सिनेमा के कई रिकॉर्ड तोड़ दिए, साल 2009 की फिल्म। ये फिल्म थी थ्री इडियट्स। माधवन साहब ने निभाया फरहान कुरैशी का दमदार किरदार, जो इंजीनियरिंग तो कर रहा है पर उसकी असली दिली ख्वाहिश वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बनने की है। श्रोताओं, वो सीन आपको याद ही होगा जहाँ पर वो अपने अब्बा को समझाते हुए कहता है, अब्बा अगर मैं फोटोग्राफर बन गया तो क्या होगा, कम पैसे कमाऊँगा, छोटी गाड़ी होगी, लेकिन मैं खुश रहूँगा अब्बा। इस एक सीन ने देश के लाखों युवाओं को अपने सपने जीने की हिम्मत दी। तो चलिए

श्रोताओं, अभी तक हमने माधवन साहब को चुलबुले और सीरियस लोन में देखा है, लेकिन 2011 में आनंद एल राय लेकर आए तनु वेट्स मनु। लंदन रिटर्न सीधे साधे डॉक्टर यानी मनु के रोल में माधवन ने कमाल कर दिया। कंगना रनौत की तनु के नखरों के बीच मनु की सादगी ने सबका दिल जीता। ये फिल्म और इसका सीक्वल तनु वेट्स मनु रिटर्न ब्लॉकबस्टर रही। चले इसी देसी शादी के माहौल का मजा लेते हैं और सुनते हैं ये सुपरहिट गाना।

श्रोताओं, बहुत ही खूबसूरत गाना है और हम बात कर रहे हैं आर माधवन साहब की। माधवन साहब की तो उम्र बढ़ी लेकिन माधवन जी का हुनर निखरता गया। साल 2022 में उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जिसने सबको हैरान कर दिया। इसरो के महान वैज्ञानिक नंबी नारायणन के जीवन पर फिल्म बनानी और उस फिल्म का नाम था रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट। माधवन ने इस फिल्म को सिर्फ एक्ट ही नहीं किया बल्कि इसे लिखा और डायरेक्ट भी किया। इसके लिए उन्हें बेस्ट फीचर फिल्म का नेशनल अवार्ड भी मिला।

अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही कलाकार, और आज के हमारे कलाकार थे आर माधवन साहब। हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलो हर्ट्ज पर।

जी हाँ, आज हम आपको लिए चल रहे हैं 1950 और 1960 के उस सुनहरे दौर में, जहां संगीतकारों की जादुई धुनें, गीतकारों की कलम का कमाल और गायकों की मधुर आवाजें मिलकर अमर गीतों की रचना कर रही थीं। आजादी के बाद का भारत नई उम्मीदों के साथ आगे बढ़ रहा था और हिंदी सिनेमा भी नए रंगों में ढल रहा था। और इस दौर में संगीतकारों जैसे नौशाद, शंकर जयकिशन, एसडी बर्मन और मदन मोहन ने संगीत को नई ऊंचाई दी। सुनते हैं एक और खूबसूरत सा गीत लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज, फिल्म है मधुमती।

जी हाँ श्रोताओं, आपके ढेर सारे संदेश हम तक पहुंच रहे हैं जिसमें आप अपनी फरमाइश हम तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन हम आपको बता दें कि अभी इस प्रोग्राम में आपकी फरमाइश हम पूरी नहीं कर सकते। उसके लिए प्रोग्राम है सुबह आपकी फरमाइश, जो कि सुबह 10:10 पर आप सुनते हैं। इस प्रोग्राम में आप गोल्डन एरा जो था हमारी फिल्मी दुनिया का, 50 से 60 का जो दशक था, उसमें अगर आपकी यादगार कोई गाना है, कोई किस्सा है, कोई फिल्म ऐसी है जिसका कोई गीत आपको इतना ज़्यादा पसंद है कि आपने उस फिल्म को उस गीत के जरिए वजह से बार बार देखा, कुछ ऐसी याद है तो आप ज़रूर हमें शेयर करिए। हमारा मेल आईडी है ipradiodelhi@gmail.com। फिलहाल अब हम आपको जो एक गीत सुनवा रहे हैं वो फिल्म, एक ऐसी फिल्म है, आज भी वही चमक है उस फिल्म की जो 60 के दशक में थी। जी हाँ, 60 का दशक हिंदी सिनेमा के लिए नए प्रयोगों का समय था। कहानियां बदली, तकनीक बदली, लेकिन संगीत की आत्मा वही रही। सुनते हैं फिल्म वो कौन थी से लता जी की आवाज में ये सुपर डुपर हिट फिल्म गीत।

साठ का दशक वो दौर था जब रोशन, ओपी नैयर, कल्याण जी आनंद जी और आर डी बर्मन ने नई ताजगी भरी गीतों को हम तक पहुंचाया। कुछ ऐसे गीत थे जो अमर हो गए, जिनमें से अभी आप ये गीत सुन रहे थे। और अगला गीत हमने आपके लिए चुनकर लिया है फिल्म दिल अपना और प्रीत पराई से, आवाज लता मंगेशकर की। तो चलिए इस गीत को सुनिए और आपके जो संदेश हैं उनको भी हम शामिल करेंगे। कुछ खास याद है तो वो भी आप हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा।

50 और 60 के दशक में अधिकांश गीत एक ही माइक्रोफोन के सामने पूरी ऑर्केस्ट्रा और गायकों द्वारा एक साथ रिकॉर्ड किए जाते थे। गलती होने पर पूरा गीत फिर से रिकॉर्ड करना पड़ता था। शायद यही वजह है उन गीतों में आज भी एक अलग ही जीवंतता और आत्मीयता महसूस होती है।

अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम मैटिनी मेलोडीज। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। 3:30 हुए हैं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम उर्दू मजलिस।

0: कि हिंदुस्तान को अंग्रेजों से आजाद कराना। आप देखेंगे कि शायद उर्दू के 1822 में जब उर्दू सहाफत शुरू हुई, 1823 में पहली बार एक प्रेस ऑर्डिनेंस ब्रिटिशर्स लाते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी लाती है, ताकि अखबारात पे कंट्रोल किया जा सके, क्योंकि उनको उर्दू सहाफत की ताकत का अंदाज़ा लग रहा था। दिगर जबानें भी कहीं ना कहीं इसमें अपना रोल अदा कर रही थी। 1857 के गदर की अगर हम बात करें, जब 1857 में गदर होता है, तो आप सब वाकिफ़ होंगे दिल्ली उर्दू अखबार के एडिटर मौलवी मोहम्मद बाकर, जिन्हें हिंदुस्तान का पहला शहीद सहाफ़ी कहा जाता है। वो वाक़या काबिले ज़िक्र है, क्योंकि उससे हमें उर्दू सहाफ़त के मिजाज का पता चलता है। उस वाक़े में जैसे कि जब मौलवी मोहम्मद बाकर का उर्दू दिल्ली उर्दू अखबार, अंग्रेज़ों ने उस अखबार को जिस किसी के पास अगर वो मिल जाए उसको बागी समझते थे, उसे गिरफ्तार कर लिया जाता था। ऐसी सूरत में मौलवी मोहम्मद बाकर जब खुद गिरफ्तार हुए, दिल्ली गैजेटियर में जिसका जिक्र भी है कि उनको जब गिरफ्तार किया गया और उनसे कहा गया कि भाई अब से भी अगर आप चाहें आप लिख के दे दें कि अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ आप कुछ नहीं लिखेंगे, ब्रिटिशर्स के ख़िलाफ़ नहीं लिखेंगे, जो मिशन आपका है हिंदुस्तान की आज़ादी आप उससे वापस हो लेंगे, तो शायद आपकी सज़ा को माफ़ कर दें। लेकिन मौलवी मोहम्मद बाकर ने उस वक्त भी कहा था कि मैं एक सहाफ़ी हूँ, एक अगर आप एडिटोरियल में ख़ुद से ही सवाल करते हैं और ख़ुद ही जवाब देते हैं कि क्या उर्दू सहाफ़त का मकसद पब्लिक डिमांड, जिसे आज हम कहते हैं कि कारीन की जो डिमांड है उसके मुताबिक हम खबरें पेश करें, अखबार में कॉन्टेंट मवाद पेश करें, और ख़ुद ही लिखते हैं कि नहीं, ये मकसद नहीं है। हमारा मकसद ये भी होना चाहिए कि कारीन का जो टेस्ट है उसे और बेहतर बनाया जाए और बालातर ले जाया जाए। तो कहीं ना कहीं ये उर्दू सहाफ़त के उस मिजाज को हमें सबको देखने को मिलता है। तो ये मिजाज तो 1947 तक मुझे लगता है ये मिजाज बाकी रहा।
1: खुशी रवानी साहब, बहुत अच्छी फरियाद साहब ने पूरी रोशनी डाली कि किस तरह उर्दू सहाफ़त शुरू हुई और कितना अहम रोल रहा। एक बहुत ही अहम बात यह है कि उस वक्त उर्दू एक आम फहम ज़ुबान थी हिंदुस्तान की, और उसमें हिंदी उर्दू के बीच कोई डिफरेंस हम कहें कि कोई लाइन इस तरह से नहीं थी। तो उस वक्त आप ये बताइए कि कौन कौन से अखबार थे, रिसाले थे या मैगज़ीन थी, और कौन कौन मशहूर व मारूफ लोग थे जिन्होंने इस जंग आज़ादी को आगे बढ़ाने में उर्दू सहाफ़त में अहम रोल अदा किया।
2: देखिए, चूंकि बहुत सारी बातों पर रोशनी डाली है डॉक्टर साहब ने, तो जंग आज़ादी का जैसे एक बिगुल बजाया डॉक्टर हरिहर दत्ता साहब ने, और फिर वो एक मशाल निकाली, और वो मशाल आज तक मतलब वो रोशनी भी फैला रही है और लोगों को अवेयर भी कर रही है। वक्त के साथ उसमें बदलाव ज़रूर आए हैं, ये बात सच है कि वक्त के साथ बहुत सारे उतार चढ़ाव आए हैं, मगर वो मशाल जारी है। उसके साथ ये भी सच है कि जब मुल्क आज़ाद हो गया तो उर्दू ज़बान के साथ कुछ ऐसी चीज़ें हुई कि जो शायद उसको, जो मशाल की उसकी ताकत थी या जिस मिशन के साथ ये उर्दू सहाफत आगे बढ़ रही थी, उसमें थोड़ा ब्रेक लगा। और शायद बहुत बड़ी वजह ये थी क्योंकि मुल्क दो हिस्सों में बंट चुका था, और शायद बहुत बड़ी वजह ये थी क्योंकि जो मुल्क दूसरा बना था एक मज़हब के नाम पर, उसकी ज़बान भी, जो उसकी कौमी ज़बान या फिर जो उसकी नेशनल लैंग्वेज या सरकारी ज़बान जो बनी, वो उर्दू थी। उस वक्त शिद्दत के साथ जो एडिटर्स थे उन्होंने ये इस बात को महसूस किया कि जो उसका रोल आज़ादी से पहले था उस रोल में कुछ कमियाँ देखने को मिली, और कई बार मजबूती ज़रूर मिली, मगर वक्त के साथ हमने देखा कि आहिस्ता आहिस्ता जो उर्दू सहाफ़त है वो, अगर ये कहा जाए कि जवाल पजीर होगी, तो मुझे लगता है कि कोई बहुत ज़्यादा अतिशयोक्ति, अगर मैं हिंदी का लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ, नहीं होगी, क्योंकि ये बात सच है। और पिछले अगर हम 10-11 बरसों की बात करें तो बहुत सारी शिकायतें उर्दू तबके की, और जो उर्दू अखबार निकालने वाले हैं, जो मालिकान हैं या जो एडिटर्स हैं, उनके साथ बंदिशें भी हैं और बहुत सारी दुश्वारियां भी उनके सामने हैं। शायद यही वजह है कि जो एक मकाम था, ठीक है 1857 की क्रांति भी है, उससे पहले भी है, 1857 तक मुझे लगता है कि 1822 में पहला अखबार शुरू हुआ, ठीक है, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। अच्छा, आज़ादी के बाद भी अगर आप देखें हिंदुस्तान में, और ख़ास तौर से पिछले 25 वर्षों में, कहीं ना कहीं जहनों में इसको रखने की ज़रूरत है, इस पर गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है कि क्या वजह है कि जो बात 47 से पहले थी वो 47 के बाद क्यों नहीं रही। और आज ये आलम है कि सबसे पहली बात ये होती है कि एक्सेप्टेंसी क्या है समाज में, सिस्टम आपकी सहाफत को कैसे देख रहा है। तो मुझे लगता है कि मोटे तौर पर

0: लोगों की दिलचस्पी उसमें कम हो गई। आज़ादी के बाद से उर्दू सहाफ़त पर एक तरह से जवाल आया। तो क्या वजह हो सकती है इसकी कि क्यों उर्दू पढ़ने में और अपने बच्चों को उर्दू पढ़ाने में लोगों की दिलचस्पी कम हो गई? उसी वजह से ये रहा कि भाई हम खुद देखते हैं कि हमने खुद बचपन में उर्दू भी पढ़ी और नर्सरी स्कूल में भी हम लोग पढ़े, लेकिन हमारे बच्चों को उर्दू पढ़ाने के लिए घर अलग से उस्ताद नहीं है। तो ये क्या वजह इसकी हो सकती है?
1: घर को आग लगा दी घर के चिराग ने, यह एहसास से कमतरी और दुश्मनी, अगर हम नहीं चाहेंगे तो हमें कौन कहेगा। सर सैयद अहमद खां हमेशा कहते थे कि जो कौम खुद को बदलना नहीं चाहती उसे कोई बदल नहीं सकता। ऑफिशियल लैंग्वेज ठीक है पड़ोस ने अनाउंस की, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं था कि आप अपनी ज़बान को गिरवी रख दें, बेच दें, बोलना छोड़ दें, लिखना छोड़ दें, पढ़ना छोड़ दें या सुनना छोड़ दें। अगर हम इस बात को करें तो आज हमारे इस खूबसूरत मुल्क में बहुत सारी ज़ुबानें हैं। कहा जाता है कि कोस कोस पर पानी बदले दो कोस पर बानी। तो आप देखें, क्या हम कहेंगे कि बंगाली जो है वो बंगाली छोड़ दी उसने, या जो तमिल में बात करता है उसने तमिल छोड़ दी, या जो कन्नड़ है वो बात नहीं करता, या पंजाबी फ़ख्र से अपनी पंजाबियत का इजहार नहीं करता? यह एहसास से कमतरी हमारे अपने अंदर है जिससे हमें बाहर निकलने की सख्त ज़रूरत है। हम खुद देख लें, कॉन्वेंट के इस ज़माने में हमने अपने आप को इतना ज़्यादा बिजी कर दिया, मशरूफ़ कर दिया कि हमारे बच्चे कितनी अच्छी अंग्रेज़ी बोल लें उस पर बड़ा जोर है। कितना खूबसूरत तरीके से हमारा बच्चा स्पीच बोल रहे अंग्रेज़ी में, वो बहुत फ़ख्र से बोलते, लेकिन कितनी अच्छी वो उर्दू बोल ले, इसकी फिक्र हमारे अंदर से निकल गई। मैं यूँ कहूँ कि आज के इस माशरे में अगर हम मुहासबा करें तो हमारे अपने घरों में उर्दू अखबारात की रसाई नहीं है, हम ख़रीदते नहीं हैं, हम पढ़ते नहीं हैं। हम बात करते जंग आज़ादी की, जंग आज़ादी में एक से एक कारनामे थे, वो अखबारात नहीं थे, वो मुजाहिदे थे जिनके असरात आज है कि हम आज़ाद फ़ज़ा में, इस आज़ाद हिंदुस्तान में सांस ले रहे हैं। वो टूल्स थे, वो टूल्स थे उस बरतानवी सरकार के खिलाफ। वो प्रोफेशन नहीं था, वो पेशेंस थे, जज्बात थे जिनको उकेरा जाता था। अक्सर वहाँ पर एक वैकेंसीज निकलती थी जिसमें लिखा जाता था कि एक एडिटर चाहिए, उसकी तनख्वाह क्या होगी कि एक कटोरा पानी और काले पानी की सज़ा। और आप यकीन मानिए कि कितने लोग उसमें बाकायदा ज्वाइन करते थे, एडिटोरियल लिखते थे, और एडिटोरियल लिखते ही उनको काले पानी की सज़ाएँ हो जाती थी। वो जज्बा इस हिंद की मिट्टी ने दिया था। आप देखिए गोपीचंद नारंग, आप आज भी देखिए, आज के ज़माने में भी जितने भी मैं कहूँ कि बुलंद मर्तबा जो उर्दू के तहफ़ करने वाले लोग हैं उनमें हमारे दूसरे हजरात भी हैं, तो उनको ये एहसास कमतरी नहीं होता, हमें ही होता है। ज़रूरत ये है कि ठीक है, जैसे खुर्शीद रब्बानी साहब ने कहा और बड़ी अच्छी मिसालें दी, और ये गंगा जमुनी तहजीब हमारे देश की मिसाल है कि हम जब ईटीवी में थे, ईटीवी उर्दू शुरू करने वाले, तेलुगु चलाने वाले, काम करने वाले सारे उर्दू, हम आप। लेकिन ये शुरुआत हमारी तंजीमों ने क्यों नहीं की? आपके पास ज़राए हैं, आपके पास अशासे हैं, आपके पास माल भी है, आपके पास कुव्वत भी है, लेकिन वो सोच क्यों डेवलप नहीं होती? या तो हम उसको जानबूझ के नहीं करना चाहते, या सिर्फ हम बार बार रोना रोना चाहते हैं। बच्चे को दूध भी माँ तभी दूध पिलाती है जब तक वो रोता नहीं है। तो पहले हमें अपने अंदर से उस एहसास कमतरी को निकालना होगा, जैसे कहते हैं कि अभी एक शख्स निकला है, एक खुशबू सी आई है, लगता है शायद वो उर्दू बोलता है। तो वाकई उर्दू वो मीठी, वो सीरी ज़बान है जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक बोली जाती है। जब तहजीब और तमद्दुन का जिक्र होता है तो जाहिर सी बात है जब उर्दू वाला बोलता है तो कान खड़े होते हैं और धड़कनें तेज़ हो जाती है कि हाँ वाकई कोई बोल रहा है, चलो उसको सुना जाए। तो इस एहसास कमतरी के औरा से हमें बाहर निकलना होगा। सहाफत आज भी ज़िंदा है, लिखने वाले आप जैसे, हम जैसे, खुर्शीद रब्बानी जैसे, डॉक्टर फरियाज साहब जैसे और बहुत सारे हैं जो मौजूद हैं। तो हमें इस अंडर एस्टिमेट जो एरा है उससे निकल के बाहर आना है ताकि उर्दू को, उस उरूज को वापस जिंदा किया जा सके।
0: मारूफ रजा साहब ने बहुत ही अहम बातें बताई हैं, और उनका जो एक जोर है कि भाई उर्दू बोलने वाले, उर्दू से मोहब्बत करने वाले लोगों की दिलचस्पी खुद ही कम हो गई है। और तो उसमें मैंने देखा कि साहब जो बड़े इदारे चल रहे थे, जैसे एक बड़ा अखबार बॉम्बे से निकलता था, बाद में उसे उन्होंने बेच दिया। अब क्यों बेचा, क्या हुआ, वो भी बता रही हूँ।
1: यूसुफ मैं कता कलानी, यहाँ पर खुर्शीद साहब, फरियाद साहब, आपसे की तवज्जो चाहूँगा। यहाँ पर हमारे पास पंजाबी अकेडमी है, वो हमसे कम तादाद में है, वो तो रोना नहीं रोते। तमिल है, बाकी मराठी, सब जाए जितनी भी लैंग्वेजेस को देख लें, क्या कभी उनका रोना सुना हमने कभी?
0: जी बिल्कुल।
1: क्या उनकी तंजीमों में कमी आई, उनके अखबारात या जो चैनल्स हैं उनमें कमी आई, उनके स्टैंडर्ड में कमी आई? नहीं। तो हमारे यहाँ क्यों कमी आई?
0: नहीं, बहुत अहम बात उन्होंने उठाई। तो डॉक्टर साहब मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि उर्दू सहाफत के सामने खासकर आज़ादी के बाद क्या चैलेंजेस रहे? जैसे एक तो हमारी समझ में आता है कि जब हम छोटे थे हम देखते थे उर्दू अखबार निकलता था,

0: तो वहाँ पर वो हाथ से लिखा जाता था, कुछ टाइप मशीन शायद नहीं थी। लेकिन आज जो क्रांति हुई है इलेक्ट्रॉनिक आईटी में, उसमें फोनेटिक आ गया है, यूनिकोड आ गया है। यूनिकोड में तमाम भाषाएं हैं, उसमें उर्दू भी है। एक चीज़ मैं ये देख पा रहा हूँ कि कुछ साल में, पिछले कुछ साल में, वो हालांकि एक अलग डिबेट है कि सब उर्दू को पर्शियन लिपि में लिखा जाए कि देवनागरी में लिखा जाए, ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए। तो आप इस मुद्दे पे ज़रा रोशनी डालिए कि आज़ादी के बाद से उर्दू सहाफत को ज़िंदा रखने के लिए क्या क्या चैलेंजेस थे, और आज के दौर में वो चैलेंजेस बढ़े हैं या कम हुए हैं।
1: देखिए, जैसा कि अभी मारूफ साहब ने पहले ही बताया कि जंगे आज़ादी मुकम्मल हो गई, आज़ादी हासिल हो गई, उस वक्त तक वो मिशन था, प्रोफेशन नहीं था। हर हर किसी का बस एक ही मकसद था कि हमारा मुल्क आज़ाद हो, हिंदुस्तान आज़ाद हो और हम सब खुली फ़ज़ा में सांस ले सकें। ठीक है, 1947 में हमें वो अचीव हो गया, हमें हासिल हो गया। उसके बाद क्या? उसके बाद उर्दू सहाफ़त के सामने एक बड़ा मसला था कि अब हम आज़ाद तो हो गए, अब क्या करें? जाहिर से बात है, उसके बाद टेक्नोलॉजी भी बहुत बदली, नई नई चीज़ें आईं। उर्दू सहाफ़त का जो एक अलमिया है कि मैं इस बात को मानता हूँ कि हम उर्दू वाले शायद एहसास कमतरी के शिकार रहे। हमने जो वक्त के बदलते हालात थे उसको देर से समझा, हमने टेक्नोलॉजी को थोड़ा देर से अपनाया, हमने अपनाया लेकिन थोड़ा देर से, ताखीर की। शायद यही वजह है कि हम दूसरों से थोड़े पीछे रह गए। आज भी जैसे आप सब वाकिफ़ हैं कि आज तमाम उर्दू के सॉफ्टवेयर मौजूद हैं, लेकिन अभी भी मुझे लगता है जितने बेहतरीन सॉफ्टवेयर इंग्लिश में हैं, हिंदी में हैं, उर्दू में वो टेक्नोलॉजी उतनी ज़्यादा आम फहम नहीं है। एक ये वजह हो सकती है। दूसरा, उर्दू अखबारों के सामने एक जो बड़ा मसला था वो मसला ये था कि उर्दू सहाफ़त किसी वजह से वो रेवेन्यू हासिल नहीं कर पा रही थी। वो कमाई उर्दू सहाफ़त के सामने नहीं थी जो दिगर ज़बानों के सामने थी। और ये वही वक्त था जब अंग्रेज़ी फ़रोग पा रही थी हिंदुस्तान में, और कहीं ना कहीं सरकारी कामकाज में अंग्रेज़ी की थोड़ी फोकियत थी, पूरी दुनिया में अंग्रेज़ी फैल रही थी, तो हिंदुस्तान में भी उसका असर दिख रहा था। शायद यही वजह है कि उस वक्त तक उर्दू थोड़ा एक पसमानदा ज़बान समझी जा रही थी, और इसका असर हमारे अखबार या जो भी दूसरे बाद में जो टीवी चैनल्स वगैरह आए उसमें भी देखने को मिलता था कि जो मवाद है, जो कंटेंट है, वो उतना अपडेटेड नहीं था जितना अंग्रेज़ी चैनल्स में या अखबारात में था। और बाद में हिंदी ने भी बहुत अच्छी तरक्की की, और एक मुहिम मैं देखता हूँ आज़ादी के 20-25 बरस बाद हिंदी को लेकर जो जज्बा पैदा हुआ, और उसकी वजह ये रही कि और हमारे मुल्क में कहीं ना कहीं जो लिटरेसी रेट है वो भी बहुत तेज़ी से बढ़ी हमें आज़ादी हासिल होने के बाद। इसकी वजह से अखबारात तो बहुत बढ़े, तादाद में काफ़ी इजाफा हुआ, लेकिन उर्दू अखबार थोड़ा पीछे रह गए। आपने जैसे जिक्र किया अभी कि वो हाथ से जो उनकी हुआ करती थी, तब तक कंप्यूटर नहीं आया था, और जब कंप्यूटर भी आ गया तो कहीं ना कहीं सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम है, टेक्नोलॉजी की प्रॉब्लम है, शायद ये वजह रही। हमने इसको अपनाया थोड़ी देर से। दूसरी एक बात जो अहम दिखती है, मतलब मेरा अपना ये मानना है, मैं चूँकि यूनिवर्सिटी में भी मैं स्टूडेंट से कहता हूँ कि हम सब उर्दू से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, हम हिंदी से भी मोहब्बत करते हैं, लेकिन उसी वक्त हमें अंग्रेज़ी सीखना भी चाहिए। और मैं कहता हूँ कि मेरा ताल्लुक ख़ुद बनारस से है और पिछले 18-20 सालों से हैदराबाद भी हूँ, मैं खुद तेलुगु सीख रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि हम जितनी ज़्यादा ज़बानें सीखेंगे हम उतना ज़्यादा बेहतर कर पाएंगे सहाफ़त में। उर्दू वालों के साथ एक अलमिया ये रहा कि वो सिर्फ उर्दू तक महदूद रहना चाहते थे, शायद इसकी वजह से भी उर्दू महदूद होती चली जा रही है। अगर उर्दू वाले उर्दू के साथ साथ अंग्रेज़ी भी सीखें, दूसरी हिंदुस्तान की जो दिगर ज़बानें हैं, तमिल है, तेलुगू है, कन्नड़ है, मराठी है, वो भी सीखते हैं, बैरूनी मुल्क की ज़बान फ्रेंच, रशियन, इटालियन भी सीखते हैं, तो मुझे लगता है कि उनका मुस्तकबिल ज़्यादा ताबनाक होगा, ज़्यादा रोशन होगा, वो ज़्यादा बेहतर कर पाएंगे। अच्छा, उर्दू के साथ एक और अच्छी बात यह है कि उर्दू लश्करी ज़बान है, तमाम ज़बानों से मिल के बनी हुई है, दूसरी ज़बानों के असरात इसमें मुरतब होते हैं। तो जाहिर सी बात है कि हमें इस बात पे कराहियत नहीं होनी चाहिए कि बहुत सारी चीज़ें जो अंग्रेज़ी की हैं उसको हम कबूल करें, हिंदी के बहुत सारे जो जुमले हैं, अल्फाज हैं, जो वो है वो भी हम कबूल करें और उर्दू को हम आगे बढ़ाएं। आज के दौर में भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है उर्दू सहाफ़त में। आज देखिए, आज डिजिटल मीडिया पर उर्दू की अच्छी मौजूदगी है, लेकिन अभी भी कहीं जो मवाद है वो थोड़ा सा उतना अपडेटेड नहीं है जितना अपडेटेड अंग्रेज़ी के कॉन्टेंट मिले। और आज हमें लगता है कि हम बड़े फ़ख्र के साथ ये बात कहते हैं कि हिंदी सहाफ़त भी बहुत अच्छा कर रही है, मतलब अंग्रेज़ी से बहुत कमतर नहीं रहेगी, अंग्रेज़ी के बराबर है और कहीं कहीं मुझे लगता है उनसे ज़्यादा अपडेटेड है। तो हमें लगता है उर्दू के साथ भी हमें कुछ इसी तरह का सलूक करना चाहिए। हम थोड़े रिसर्च बेस्ड काम नहीं हुए, चाहे वो टेक्नोलॉजी के एतबार से। उर्दू के जो सॉफ्टवेयर्स आए, जो इनका इस्तेमाल मीडिया में होता रहा, वो काफ़ी ताखीर से आए। अगर हम बात करें कि टाइपिंग की भी बात करें, ठीक है, आज

0: गूगल वर्ड्स पे भी आप टाइप कर सकते हैं, बहुत सारे रास्ते हैं। लेकिन आज हम बच्चों को अंग्रेज़ी पढ़ा रहे हैं, मैं कभी मना नहीं करता, बिल्कुल अंग्रेज़ी पढ़ाइए, हिंदी पढ़ाइए, लेकिन साथ साथ उर्दू भी उनको पढ़ाइए। मैं तो कहता हूँ कि हिंदुस्तान की हर शख्स को हिंदुस्तान का जो तीन ज़बानों का जो फार्मूला तो उसे अपनाना चाहिए कि अगर हम अंग्रेज़ी पढ़ा रहे हैं, हिंदी पढ़ा रहे हैं, तो एक साउथ की ज़बान भी पढ़ाएं, अगर हम उर्दू पढ़ रहे हैं, हिंदी पढ़ रहे हैं, तो एक ज़बान और सीखें। तो मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं हमें मदद करेगा उर्दू सहाफ़त को उसका जो मकसद है उसे हासिल करने में।
1: डॉक्टर फरिया साहब, आपने बहुत ही अहम बातें बताईं और कई जो चैलेंजेस थे उनको, एक मुझे लगता है क्योंकि मैं भी सहाफ़त में करीब करीब 30 साल हो गए हैं, मैंने जो बात नोट की है और बाकी हमारे साथी खुर्शीद रब्बानी साहब, मारूफ रजा साहब उस पर रोशनी डालेंगे, मुझे लगता है कंटेंट की जो आपने बात कही, उर्दू में अक्सर ये देखा गया है कि ओरिजिनल कंटेंट की कमी उर्दू सहाफ़त में शुरू से रही है। उन पर तो उर्दू में बड़ा ओरिजिनल कंटेंट मिलता है, लेकिन बाकी जो दूसरी चीज़ें हैं, मेन स्ट्रीम है, वहाँ ओरिजिनल कंटेंट नहीं आता, वो अंग्रेज़ी से शुरू होता है, अंग्रेज़ी से ट्रांसलेट होकर हिंदी में भी आता है, फिर वो उर्दू में भी आता है। आज भी बहुत सारे ऐसे राइटर्स हैं जो ओरिजिनली तो अंग्रेज़ी में लिखते हैं, बाद में उसका तर्जुमा वो। रब्बानी साहब, आप ने चूँकि अखबार में भी काम किया है, टीवी में भी काम किया है और डिजिटल में भी आपने काम किया है, तो इस मुद्दे पर आप किस तरह से सोचते हैं कि आखिर क्या वजह है कि उर्दू जर्नलिज्म में ओरिजिनल कंटेंट की कमी रही है, और डिजिटल के दौर में क्या उस कमी को दूर किया जा सकता है?
2: बिल्कुल, दो तीन चीज़ें हैं जिनके ऊपर गौर व फिक्र करना बहुत ज़रूरी है। जैसे शुरू में बात हुई कि मिशन से कब प्रोफेशन में बदल गई कोई एक चीज़, और शायद ये बड़ी वजह है कि फिर उसके साथ चूँकि हर एक चीज़ के लिए रेवेन्यू की ज़रूरत है, ये भी सच्चाई है, इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और ये भी सच्चाई है कि तहकीकी जो ख़बरें हैं वो उर्दू सहाफ़त में कम मिलती हैं। अक्सर जब हम उर्दूदा तबके के बीच बैठते हैं, ख़ासतौर से उर्दू सहाफ़ियों के बीच बैठते हैं, तो वहाँ पर इस बात का बड़ी शिद्दत के साथ और बड़ी ईमानदारी के साथ जिक्र होता है कि अगर आपके पास कोई प्रेस नोट आ गया तो उसमें उस प्रेस नोट को एज इट इज़ पब्लिश कर देंगे, अगर किसी की मौत की भी खबर आ गई तो ये तहकीक किए या एक फ़ोन घुमाए बगैर ही उसको छाप दिया जाएगा, भले ही कोई आपका टेस्ट ले रहा हो। तो ये एक बड़ा मसला है। ये भी सच्चाई है कि आप कम से कम, मैं 15 से 20 साल का ये एग्जाम्पल दे सकता हूँ कि आप अखबारात उर्दू के उठा करके देख लीजिए, फिर अंग्रेज़ी और हिंदी के अखबार उठा करके देख लीजिए कि कितनी उर्दू की खबरें, एक्सक्लूसिव खबरें, ओरिजिनल कंटेंट जो उर्दू का था वो अंग्रेज़ी या हिंदी ने लिया है। फिर ये देखिए कि अंग्रेज़ी का और हिंदी का कितना कंटेंट उर्दू वालों ने लिया है, तो इसी से तय हो जाएगा कि उर्दू सहाफ़ियों ने, उसमें मैं भी शामिल हूँ, मतलब अगर हम आईना देख रहे हैं और उसमें कुछ हमें हमारी कमियां नज़र आ रही हैं, तो मुझे लगता है कि ये एहसास कमतरी नहीं है, बल्कि अपनी कमियों को, खामियों को देख करके उसे दुरुस्त करने का एक बेहतर वक्त हो सकता है। मैं दो तीन एग्जाम्पल आपको दूंगा कि कैसे हम तकनीक अपनाने में उर्दू का तबका थोड़ा सा पीछे रहता है। देखिए, आप सब इस बात से वाकिफ़ हैं कि हमने छपाई की मशीन को अपनाने में कितना वक्त लगा दिया, बाकी चीज़ों को हो सकता है तकनीकी चीज़ें हों जो है वो आपके साथ तकनीक उतनी ज़्यादा मेल जोल ना खाती हो, तो उसमें भी हम पीछे रहे हैं। तो मैं दो तीन एग्जांपल आपको देता हूँ। देखिए, न्यूज़ 18 उर्दू 15 अगस्त 2001 में स्टार्ट हुआ, उसका यूट्यूब चैनल यानी डिजिटल पर वो कब आया, 2010 में, तकरीबन 10 साल बाद। ठीक, क्या वजह है? जी सलाम, 2010 में शुरू हुआ और 2017 में वो यूट्यूब पर आया, फेसबुक पर भी आया होगा, ट्विटर पे अभी है, मतलब पिछले 5-7 साल से एक्स जिसको बना दिया गया है। ठीक है, आलमी सहारा 2010 में आया और 2010 के बाद यूट्यूब पे 13 में आया, 3-4 साल के बाद आ गया। डीडी उर्दू 2006 में शुरू हुआ और 2013 में वो यूट्यूब पर आया। तो अब यहाँ पर इस बात को समझने की ज़रूरत है कि टेलीविज़न जो है वो सिर्फ अब टेलीविज़न नहीं रह गया, बल्कि उसके बहुत सारी शक्लो सूरत होगी, बहुत सारे रास्ते होंगे देखने के, उसमें FB भी है, उसमें X भी है, उसमें YouTube भी है, उसमें जो है इंस्टा भी है, उसमें दीगर और बहुत सारे ज़राए हैं, OTTs भी हैं। तो वहाँ वक्त के साथ बदलाव क्यों नहीं आया? तो फिर अगेन बात यही होगी, क्या सोचो फिक्र की कमी है, क्या विज़न की कमी है, या फिर वसाइल का इशू है? और वसाइल का इशू अगेन रेवेन्यू से कहीं ना कहीं है। तो बहुत सारे बड़े घराने हैं, मीडिया घराने, जिन्होंने उर्दू चैनल शुरू किए और उर्दू चैनल के साथ अच्छा सलूक किया, ये भी सच्चाई है, मगर फिर भी कुछ ना कुछ कमियां और खामियां रही हैं, तो उन्हें दुरुस्त करने की ज़रूरत है। और मुझे लगता है कि ये खुद उर्दू सहाफ़ियों की जिम्मेदारी है, उसमें हम सब लोग शामिल हैं कि हम कैसे कम से कम वसाइल में, कम से कम सुख सुविधाओं में हम बेहतर करने की कोशिश करें। सच्चाई है ये कि बहुत सारी इश्यूज़ हैं, बहुत सारी परेशानियां हैं, मगर उन परेशानियों से निकलने के रास्ते भी हमें कहीं ना कहीं तलाश करने होंगे और आगे बढ़ने के लिए भी जद्दोजहद हमें ही करनी होगी।
1: मारूफ रजा साहब, जो खुर्शीद रब्बानी साहब ने एक बुनियादी सवाल उठाया कि आखिर क्या वजह है कि हम कंटेंट के मामले में पिछड़े रहे हैं, मुकाबला नहीं कर पाते हैं अंग्रेज़ी का या हिंदी वालों का, इसके पीछे क्या वजह देते हैं?
3: देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि हम पढ़े लिखे समाज में रहते हैं और हमारा पेशा भी पढ़ने लिखने का है।

0: जब हम पढ़ने की आदत डाल लेंगे तो जाहिर सी बात है तस्दीक का तहकीक का मादा अपने आप आ जाएगा और चीज़ें आती हैं। इनोवेशन घर बैठे नहीं आते, आपको उस पर तदब्बुर करना पड़ता है, सोच लगानी पड़ती है, तब जाके आता है। और ऐसा भी नहीं है, बहुत सारी उर्दू जो साफियों की जो खबरें हैं वो पीक पे रही हैं, उन पर खबरें बनी हैं, सुर्खियाँ बनी हैं, तब्दीलियाँ हुई हैं, बड़े बड़े चेंजेस हुए हैं। दिक्कत ये कि हम दो चीज़ें ले रहे हैं, कॉन्टेंट और टेक्नोलॉजी। कॉन्टेंट पर पैसा खर्च नहीं होता, कॉन्टेंट आप भी बड़ा अच्छा लिख सकते हैं, जो एक रिक्शा चलाने वाला उर्दू दा है वो भी अच्छा लिख सकता है, वो आपकी कलम कितनी अच्छी है, सोच कितनी अच्छी है आप लिख सकते हैं। टेक्नोलॉजी की बात है, पहले बड़ी महंगी थी, अब इतनी आसान हो गई, आप मोबाइल लीजिए और कुछ भी कर लीजिए। खुर्शीद रब्बानी साहब ने इसका जिक्र किया, सोशल मीडिया, तो अब आपको जरूरत नहीं है कि आपको 50-100 करोड़ रुपए चाहिए, नहीं, आपके पास एक अच्छा मोबाइल है, अच्छा कंटेंट है, अच्छी शक्ल और सूरत है, आप कर दीजिए। अगर आप 30 सेकंड में भी अगर आपने कुछ अच्छा कर दिया, यू कैन डू ब्लंडर, और नहीं तो आप यू कैन डू वंडर। तो इसलिए लैंग्वेज, पहली बात तो मजहब के दायरे में कैद नहीं है, ये जुबान है, ये जुबान हिंदुस्तान की जुबान है। तो इसमें जिस तरीके से सरकारें आगे आ रही हैं, खास करके सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो प्रमोशन दिए हैं उर्दू को लेकर के लगातार, गुज़िश्ता 10 सालों की बात करूं तो वाकई वो काबिले तारीफ है। तो मुझे लगता है कि उर्दू वाकई अपने उरूज पर होगी और फिर दोबारा से आफ्ताब की तरह रोशन होगी।
1: मरूर रजा साहब, आपने बहुत ही अच्छी बात कही कि और इस उम्मीद के साथ अपनी बात खत्म की कि उर्दू एक बार फिर उरूज पर होगी और उर्दू जर्नलिज्म का यानी उर्दू सहाफत का फिर एक बार जलवा कायम होगा, और जो चैलेंजेस हैं उन चैलेंजेस से निपटने के लिए मुझे एक राहत इंदौरी साहब का एक शेर याद आ रहा है कि ना हम सफ़र से निकलेगा ना हम नशी से निकलेगा, हमारे पाँव का कांटा हम ही से निकलेगा।
0: बिल्कुल।
1: तो इसी के साथ हम इस बातचीत को यहाँ ख़त्म करते हैं और सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। मारूफ साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, खुर्शीद रब्बानी साहब आपका भी शुक्रिया, और डॉक्टर फरिया साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।
2: सामीन, अभी आप मुबाहिसा सुन रहे थे, मौजू था उर्दू सहाफत में बदलता चेहरा, रिवायत से डिजिटल तक, निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे जनाब यूसुफ अंसारी। तो सामीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम अंदाज़े नज़र। इसी के साथ आज का उर्दू मजलिस प्रोग्राम अब यहीं ख़त्म होता है। अपनी मेज़बान नसरीन बेगम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।

0: 印度德里广播电台，从印度时间5:15到6:45，或是6:00到17:30，向亚洲播送普通话节目。召见广播频率为15280千赫，晚间广播频率为15410千赫。听众朋友们，你们正在收听全印度电台。应用程序和全印电视台免费的卫星盘上播放的全印度电台的世界广播。听众朋友们，现在我们播送 Vegas 弹的一个古典乐器。
1: ये आकाशवाणी का रागम चैनल है। प्रस्तुत है विकास बाबू और साथियों का शहनाई वादन। पहले पेश है राग मालकौंस में आलाप, विलंबित गत एक ताल में और द्रुत गत तीन ताल में निबद्ध है।
2: दिस इज द रागम चैनल ऑफ ऑल इंडिया रेडियो। वी नाउ प्रेजेंट अ शहनाई रिसाइटल बाय विकास बाबू एंड कंपनी। आलाप इज इन राग मालकौंस। द विलंबित गत इज सेट टू एक ताल एंड द्रुत गत इज सेट टू तीन ताल।

听众朋友们，现在我们播送舒蒂沙多里盖唱的一首圣歌。

0: 听众朋友们，今天我们的普通话节目播送到这里，谢谢。
1: खेल खिलाड़ी खेलों का आईना।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं अनु गुप्ता और मेरे साथ हैं
3: धर्मेंद्र मणि राजेश। मेरा भी नमस्कार।
2: जी हाँ, और आप सुन रहे हैं खेल खिलाड़ी, जहां हम लेकर आते हैं खेल जगत की हर छोटी बड़ी खबर बिल्कुल आसान और दिलचस्प अंदाज में। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि फुटबॉल की दुनिया में क्या हलचल है, क्रिकेट के मैदान पर कौन छाया हुआ है, बैडमिंटन कोर्ट से क्या खबर आ रही है और एथलेटिक्स ट्रैक पर किसने मारी बाजी, तो अगले आधे घंटे हमारे साथ ही रहिए, क्योंकि खेलों का पूरा अपडेट अब मिलेगा एक ही जगह। आज के कार्यक्रम में सबसे पहले बात होगी स्पोर्ट्स एंथुजियास्ट्स के दिलों की धड़कन बढ़ाने वाला फीफा विश्व कप 2026 और सुनेंगे उससे जुड़ा एक खास कर्टिन रेजर। इसके बाद करेंगे आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2026 की उल्टी गिनती और जानेंगे तैयारियों का हाल। रुख करेंगे तुर्की के अंताल्या का, जहां तीरंदाजी विश्व कप में भारतीय तीरंदाज अपना निशाना साध रहे हैं, और बात होगी ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन के प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबलों की, साथ ही क्रिकेट में भारत ए और अफगानिस्तान ए के बीच खेले गए मुकाबले की भी। सुनेंगे ओस्लो डायमंड लीग की खास झलकियां भी। और चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं खेल खिलाड़ी कार्यक्रम, और मैं लेकर चलना चाहूंगी फीफा वर्ल्ड कप के कर्टन रेजर की तरफ। तो आइए धर्मेंद्र, क्या है जानते हैं।

फुटबॉल मतलब एक ऐसा खेल जो पीढ़ियों और सदियों से पूरी दुनिया में अपनी बेमिसाल सादगी और बेपनाह जुनून के दम पर लोकप्रियता के शीर्ष पर बना हुआ है। महज 90 मिनट का ये खेल स्टेडियम में हर मूव के साथ गूंजती फुटबॉल के दीवानों की दहाड़ और अपनी टीम के प्रति गहरी वफादारी का नायाब नमूना रहा है। सच कहें तो इस खेल में युद्धों को रोकने और राष्ट्रों को एकजुट करने की ताकत भी है। फीफा वर्ल्ड कप राष्ट्रीय टीमों के लिए फुटबॉल का सबसे बड़ा टूर्नामेंट है। 1930 में शुरू हुए टूर्नामेंट का 23वां वर्ल्ड कप बस कुछ घंटे में शुरू होने वाला है। पिछले 96 सालों से यह टूर्नामेंट हर 4 साल में आयोजित किया जा रहा है, सिवाय 1942 और 1946 के, जब दूसरे विश्व युद्ध के कारण इसे रद्द कर दिया गया था। लेकिन इस बार का फीफा वर्ल्ड कप अपने इतिहास के सबसे बड़े और अभूतपूर्व सांस्कृतिक बदलाव के दौर से गुजरने वाला है। अमेरिका इस बार न केवल फुटबॉल महाकुंभ की मेजबानी कर रहा है, बल्कि वह इसे नए हॉलीवुड पैकेज में ढालकर दुनिया के सामने पेश करने जा रहा है। कॉर्पोरेट थीम वाले फैन फेस्टिवल से लेकर मशहूर हस्तियों के हाफ टाइम शो और हॉलीवुड शैली की ब्रांडिंग तक अमेरिका ने फुटबॉल को एक लार्जर देन लाइफ इवेंट बना दिया है। पहली बार मल्टी सिटी काउंटडाउन कॉन्सर्ट आयोजित किया जा रहा है। केवल एक ओपनिंग समारोह के बजाय अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में 3 अलग अलग समारोह होने जा रहे हैं। इसके अलावा कई जगहों पर मेगा कॉन्सर्ट भी होंगे जिनमें ग्लोबल स्टार्स परफॉर्म करेंगे। इन बदलावों ने वर्ल्ड कप जैसे पारंपरिक फुटबॉल टूर्नामेंट के अनुभव को पूरी तरह से एक ग्लोबल एंटरटेनमेंट इवेंट में बदल दिया है। वैसे फीफा विश्व कप 2026 की पहली विसिल भारतीय समय के अनुसार आज आधी रात को बजने वाली है। इसके साथ ही फुटबॉल प्रेमियों का 4 साल का लंबा इंतजार खत्म होने वाला है। अमेरिका के साथ मैक्सिको और कनाडा इसकी सह मेजबानी कर रहे हैं। मैक्सिको और दक्षिण अफ्रीका के बीच मुकाबले से विश्व कप का जुनून परवान चढ़ने वाला है और फिर 19 जुलाई तक सारे जहां

0: स्थान पर फुटबॉल फीवर तारी हो जाएगा। मैच से 90 मिनट पहले रंगारंग उद्घाटन समारोह होगा, उसी दौरान विश्व कप 2026 के औपचारिक शुरुआत की घोषणा होगी और फिर इतिहास के सबसे बड़े और भव्य संस्करण में अपनी बादशाहत साबित करने की जद्दोजहद शुरू हो जाएगी। हम आपको बता दें कि पहली बार विश्व कप में 48 टीमें हिस्सा ले रही हैं और पूरे टूर्नामेंट के दौरान 104 मैच खेले जाएंगे। इससे पहले 32 टीमों वाला प्रारूप लागू था, लेकिन फीफा ने वैश्विक भागीदारी बढ़ाने और अधिक देशों को मौका देने के मकसद से इसका विस्तार किया है। वैसे हम आपको ये भी बता दें कि फीफा पुरुष विश्व कप में ये पहली बार हो रहा है जब 3 देश साझा मेजबानी कर रहे हैं। कुल 16 शहर मैचों को होस्ट करेंगे, जिनमें वैंकूवर से लेकर मैक्सिको सिटी और मियामी तक शामिल हैं। अमेरिका सबसे ज्यादा मैच कराएगा, खासकर क्वार्टर फाइनल से आगे के सभी नॉकआउट मैच उसी के स्टेडियमों में होंगे। मैक्सिको सिटी का प्रसिद्ध एस्टेका स्टेडियम 3 अलग अलग विश्व कप में मैच होस्ट करने वाला पहला स्टेडियम बनेगा। यहाँ 1970 और 1986 में भी मैच हुए थे। 2026 में टूर्नामेंट का उद्घाटन मैच भी यहीं खेला जाने वाला है। इस स्टेडियम में पेले की ब्राजील ने 1970 और मैराडोना की अर्जेंटीना ने 1986 में विश्व कप फाइनल जीते थे। पेले की याद में स्टेडियम के बाहर हाल ही में उनकी बड़ी प्रतिमा भी लगाई गई है। खास बात यह है कि पहली बार विश्व कप में 48 टीमें हिस्सा लेने जा रही हैं और 39 दिनों तक चलने वाले टूर्नामेंट के दौरान 104 मैच खेले जाएंगे। इससे पहले 32 टीमों वाला प्रारूप लागू था। 48 टीमों को 12 समूहों में बांटा गया, जिनमें प्रत्येक समूह से 4-4 टीमें शामिल हैं। हर समूह से शीर्ष 2 टीमें सीधे नॉकआउट चरण में पहुंचेंगी। इसके अलावा एक और खास बात यह है कि सभी समूहों में तीसरे स्थान पर रहने वाली टीमों में से टॉप 8 टीमों को भी अगले दौर का टिकट मिलेगा। इस बदलाव के साथ नॉकआउट चरण में पहली बार राउंड ऑफ 32 खेला जाएगा, जिसके बाद प्री क्वार्टर फाइनल, क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबले आयोजित होंगे। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में क्या खास है, ये बता रहे हैं फीफा के प्रेसिडेंट जियानी इन्फेंटिनो।
1: We are kicking off the 23rd FIFA World Cup. So it's a moment of joy, it's a moment of celebration, it's a moment of happiness. And I am very, very happy to see this ball rolling in a few hours' time. And this trophy being awarded in a few weeks. The most iconic trophy in the world, the most incredible cup. A trophy and a ball that makes people dream all over the world. The 23rd World Cup in the history of FIFA is a World Cup which is breaking records. And for this we are very happy, and for this, before we kick off, I want to say thank you. I want to say thank you to the media for relating, for transporting, for bringing to the homes of people the emotion of the game, you know, from all over the world, what it means to be part of a World Cup, what it means for people to participate, to live a World Cup back home, and you bring it to them, so I thank you for that.

0: हम हर बार फीफा की बात तो कर रहे हैं, लेकिन साथ ही ये बताना भी जरूरी है कि फीफा का अर्थ है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। ये संस्था दुनिया भर में फुटबॉल को संचालित करती है और हर 4 साल में फीफा विश्व कप का आयोजन करती है। इसकी स्थापना 1904 में हुई थी। फीफा का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में है। अब कुछ फेवरेट टीमों और खिलाड़ियों की भी बात कर लेते हैं। अर्जेंटीना मौजूदा फीफा वर्ल्ड चैंपियन है। लियोनेल मेसी की कप्तानी में अर्जेंटीना ने 2022 का वर्ल्ड कप का खिताब जीता था। उसने कतर में खेले गए फाइनल में फ्रांस को हराकर विश्व चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया था। पिछला फाइनल मैच 3-3 पर खत्म हुआ और उसके बाद अर्जेंटीना ने पेनल्टी शूट आउट में कमाल किया और 4-2 से मैच को अपने नाम किया था।
1: Incredible scenes here.

0: in 2022, the world champions are Argentina.
1: इस बार भी ये टीम सबसे मजबूत दावेदारों में शुमार है। उसके अलावा फ्रांस, ब्राजील, स्पेन और इंग्लैंड पर भी नजरें होंगी। इन सभी पांच टीमों के पास वर्ल्ड क्लास स्क्वाड है और वे टूर्नामेंट में पसंदीदा टीमों के तौर पर उतर रही हैं। जहां तक खिलाड़ियों की बात है, संभवतः अपना अंतिम विश्व कप खेल रहे अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी, पुर्तगाली दिग्गज क्रिस्टियानो रोनाल्डो और फ्रांस के किलियन एम्बापे सबसे बड़े आकर्षण होंगे। ब्राजील के नेमार जूनियर, इंग्लैंड के जूड बेलिंगहम, स्पेन के लामिन यमल, नॉर्वे के अर्लिंग हॉलैंड और ब्राजील के विनिसियस जूनियर के प्रदर्शन पर भी फुटबॉल दुनिया की निगाह रहेगी। वैसे तो टूर्नामेंट में इस बार फिर सीधे तौर पर भारतीय टीम की सहभागिता नहीं होगी, लेकिन भारतीय मूल के चार खिलाड़ी अलग अलग टीमों के लिए फुटबॉल की अपनी स्किल का प्रदर्शन करते नजर आएंगे। सरप्रीत सिंह न्यूजीलैंड के लिए मिडफील्ड में कमाल की ड्रिबलिंग के जरिए अपना जलवा दिखाते नजर आएंगे। उधर पड़ोसी देश ऑस्ट्रेलिया में निशान वेलुपिल्लई फॉरवर्ड और विंगर के तौर पर अपनी छाप छोड़ेंगे। कतर के लिए 19 साल के वंडर किड तहसीन मोहम्मद जावेद का जादू देखने को मिलेगा। वो अपनी टीम के लिए विंगर और स्ट्राइकर की भूमिका निभाते हैं। उधर डीआर कांगो के लिए सैमुअल मोतोसामी मिडफील्ड में अपने पैरों का जलवा दिखाएंगे। जब इन चारों खिलाड़ियों का पैर फुटबॉल के साथ कदम ताल करेगा तो निश्चित ही हर भारतीय का दिल भी धड़केगा। फीफा वर्ल्ड कप 2026 की संभावनाओं के बारे में, फेवरेट टीम के बारे में और फेवरेट खिलाड़ियों के बारे में क्या कहते हैं भारत के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी अनादि बरुआ?
2: कहना बड़ा मुश्किल है कि कौन सी टीम आएगी, लेकिन हाँ ये बता सकते हैं कि ये लास्ट 8 तक आ सकती है। अर्जेंटीना आ सकती है, बेल्जियम, जर्मनी भी अच्छी है इस बार, ब्राजील भी अच्छी है, स्पेन भी बहुत अच्छी टीम है। तो कम आंकड़ा बड़ा मुश्किल है, बोल नहीं सकती कौन ऊपर आएगा, लेकिन जब तक क्वार्टर फाइनल मैच नहीं होगा तब तक पता नहीं चल पाएगा। जो अच्छे प्लेयर होते हैं उनके ऊपर निगाह टिकी रहती है। अगर आप मेसी लो, रोनाल्डो लो या आप ब्राजीलियन प्लेयर लो, नेमार लो, उनके ऊपर मैन टू मैन मार्किंग करते तो उनको खेलने का मौका नहीं दिया जाता। लेकिन लास्ट वर्ल्ड कप में मेसी ने 6 गोल भी किए और 3 असिस्ट भी किए। इस बार अच्छा खेल के जाते हैं, छाप छोड़ के जाते हैं तो याद रहेगा, क्योंकि इसके पहले जब मेक्सिको में वर्ल्ड कप हुआ था तो मैराडोना ने, माइकल प्लेटिनी ने, इन्होंने छाप छोड़ के गए हैं। 86 मेक्सिको फुटबॉल वर्ल्ड कप हुआ था, तो ये अगर लास्ट वर्ल्ड कप भी खेलते तो अपना छाप छोड़ के जाएंगे।

कर लेते हैं अब तक के विजेताओं की। जहां तक चैंपियन टीमों की बात है, ब्राजील ने सबसे अधिक 5 बार फुटबॉल विश्व कप विजेता बनने का गौरव हासिल किया है। जर्मनी और इटली 4-4 विश्व खिताब जीतकर दूसरे नंबर पर हैं। अर्जेंटीना 3, फ्रांस 2, उरुग्वे 2 और इंग्लैंड स्पेन अब तक 1-1 बार चैंपियन बने हैं। कुछ देश इस बार अपना पहला वर्ल्ड कप भी खेल रहे हैं, जिनमें केप वर्डे, कुरुकाओ, जॉर्डन और उज्बेकिस्तान शामिल हैं।

तो चलिए आप भी अपने बूट कसकर वार्म अप कर लीजिए, क्योंकि शिद्दत के साथ अपनी फेवरेट टीम को चीयर जो करना है, अपने पसंदीदा खिलाड़ी के हर मुंह पर ताली जो बजानी है और हर गोल पर शोर से अपने घर और मोहल्ले को फुटबॉल के जोश से लबरेज जो करना है।

0: जी हाँ श्रोताओं, जहां इतने जबरदस्त जोश के साथ आज फुटबॉल का महाकुंभ शुरू हो रहा है, वहीं कल विमेंस क्रिकेट का भी महाकुंभ शुरू होने जा रहा है, जहां भारत अपने अभियान की शुरुआत 14 जून को अपने चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान के खिलाफ करेगा। आइए जानें अपने साथी धर्मेंद्र से कि क्या तैयारियां हैं क्रिकेट के मैदान में।
1: एक तरफ फुटबॉल

का रोमांच सिर चढ़कर बोलने के लिए तैयार है तो दूसरी तरफ फटाफट क्रिकेट की खुमारी भी छाने वाली है। फुटबॉल विश्व कप में दुनिया भर की सर्वश्रेष्ठ टीमें दम झोंकेंगी तो महिला T20 विश्व कप 2026 में भी विश्व की सर्वश्रेष्ठ टीमों की किस्मत दांव पर होगी। दुनिया की दिग्गज टीमों के बीच भारत का भी तगड़ा दावा होगा। पिछले साल 50 ओवरों का महिला ICC विश्व कप जीतने वाली भारतीय लड़कियां डबल की तैयारी में हैं, लेकिन मुकाम तक पहुंचना मुश्किल होगा। भारतीय महिला क्रिकेट टीम को ग्रुप ए में रखा गया है, जिसे ग्रुप ऑफ डेथ भी कहा जा रहा है। इस ग्रुप में भारत के अलावा ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नीदरलैंड की टीमें शामिल हैं। जाहिर है ग्रुप में इतनी मजबूत टीमों की मौजूदगी से किसी भी एक मैच का उल्टा परिणाम पूरे अभियान को पटरी से उतार सकता है। भारत अपना पहला मुकाबला 14 जून को पाकिस्तान के खिलाफ खेलेगा। इसके बाद उसका सामना नीदरलैंड, दक्षिण अफ्रीका, बांग्लादेश और डिफेंडिंग चैंपियन ऑस्ट्रेलिया से होगा। हालिया प्रदर्शन की बात करें तो विश्व कप की तैयारियों को लेकर इंग्लैंड

0: प्रीति बहन सीसपाल अकेला और इनका पूरा परिवार।
1: गांव मुरादगढ़ जिला करनाल हरियाणा से रमेश कुमार कम्बोज ने भी फरमाइश की है। इसके अलावा हैं नालेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नवारकर और सोपान ताइड़े।
0: और ये फरमाइश हमारे पास में आई है भाई गांव बड़दू चैना जिला भिवानी हरियाणा से भेजने वाले हैं महिपाल शौरान और इनका पूरा परिवार। बेहर वाला खुर्द सिरसा से फरमाइश भेज रहे हैं बलवंत जाखड़ और इनका पूरा परिवार। ये एसएमएस हमारे पास में आया है प्रीति बहन हनुमानगढ़ टाउन से भेजने वाले हैं सुल्तान सिंह ताड़ और इनका पूरा परिवार। और ये ढाना नारसन भिवानी से भी हमारे पास में एसएमएस आया है भेजने वाले हैं जगदीश चिंडालिया और इनका पूरा परिवार। गांव लेलोड़ा जिला बागपत से फरमाइश भेज रहे हैं जगमोहन सिंह प्रजापत और इनका पूरा परिवार। कस्बा बराड़ा जिला अंबाला हरियाणा से फरमाइश भेज रहे हैं रवि कुमार राहुल और इनका पूरा परिवार।
1: करावल नगर दिल्ली से रामनाथ प्रजापति और श्रीमती सुमन देवी ने इसी रागिनी की फरमाइश की है।
0: कबीर रेडियो श्रोता संघ डोंडी लोहारा बालो छत्तीसगढ़ से फरमाइश भेज रहे हैं देवशंकर तामुरिया और इनका पूरा परिवार। कनेरा मोहल्ला पटियाला से फरमाइश भेज रहे हैं मुकेश बत्ता और इनका पूरा परिवार।
1: जसपुर उत्तराखंड से भी फरमाइश आई है रियासत हुसैन सिद्दीकी और नाजमा बेगम सिद्दीकी और उनका परिवार।
0: ये फरमाइश हमारे पास में आई है रिंगनी छत्तीसगढ़ से भेजने वाले हैं दिनेश वर्मा और उनका पूरा परिवार। अनारकली बाजार जगराव पंजाब से फरमाइश भेज रहे हैं सुनील पाठक और इनका पूरा परिवार। गुलाम रोड हरगोविंद नगर नवा शहर पंजाब से फरमाइश भेज रहे हैं सुरेंद्र संधु और इनका पूरा परिवार।
1: बिलासपुर हिमाचल प्रदेश से सुरेश ग्रोवर बेबी ग्रोवर और परिवार, उन्होंने भी इसी रागिनी की फरमाइश की है।
0: और भाई इंद्रपाल शर्मा को ही सुनना चाहा है जलालपुरा जिला सहारनपुर उत्तर प्रदेश से भेजने वाले हैं श्रवण कुमार प्रजापति और उनका पूरा परिवार। सूरतगढ़ राजस्थान से फरमाइश भेज रहे हैं भूपेंद्र मिशन और इनका पूरा परिवार। ग्राम पंचायत बठेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से फरमाइश भेज रहे हैं बलकरण वर्मा और इनका पूरा परिवार। और ये फरमाइश हमारे पास में आई है गाँव माए चागरी टोनर गौतम बुद्ध नगर से भेजने वाले हैं कंची शर्मा सतपाल शर्मा मास्टर बनी सिंह देवेंद्र सिंह सर्वेश गिरी महाराज कुमारी तनु और शिव कुमार शर्मा और पवन शर्मा की। तो सुनवाते हैं सभी की फरमाइश पर इंद्रपाल शर्मा और उनके साथी की आवाज़ में ये रागनी।
1: और किस्सा रहेगा महाभारत से।

0: प्रीति बहन अभी हमारे भाइयों ने सुनी इंद्रपाल शर्मा और उनके साथी की आवाज़ में भाई ये रागनी, और किस्सा था महाभारत का और मौका भी भाई कर्ण कुंती संवाद। और अगले जो हमारे कलाकार हैं वो हैं ज्ञानेंद्र सरदारन, के लिए भी हमारे पास में एसएमएस आ गया। ये एसएमएस हमारे पास में आया है आदर्श नगर मेलोट पंजाब से भेजने वाले हैं राज शर्मा और इनका पूरा परिवार। मेहर अरोड़ा हमें फरमाइश भेज रहे हैं पदमपुरा जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से।
1: चौधरी वास हिसार से राजू अग्रवाल ने हमें संदेश भेजा है इसी फरमाइश के लिए।
0: और देखिए गांव रावत खेड़ा जिला हिसार हरियाणा से फरमाई भेज रहे हैं सियाराम भादु और इनका पूरा परिवार।
1: जी गांव हांडी खेड़ा से राधेश्याम शर्मा और इंदिरा शर्मा ने इस रागिनी की फरमाइश की है।
0: और ज्ञानेंद्र सरदाना को सुना चाहे गांव महाराजपुर का करो

0: करकोरा से भेजने वाले हैं भाई जितेंद्र सिंह सोलंकी और इनका पूरा परिवार। ये फरमाइश हमारे पास में, ये धनौरी तेली वाला उत्तराखंड से भेजने वाले हैं निसार सलमानी और इनका पूरा परिवार। रामगढ़ कैंट से फरमाइश भेज रहे हैं महेंद्र मोदी और इनका पूरा परिवार। पद्मा टॉकीज नेपानगर मध्य प्रदेश से फरमाइश भेज रहे हैं सुदर्शन शाह और इनका पूरा परिवार।
1: गांव कुम्हार हेड़ा सहारनपुर से सैयद मसरूर, शाइना हसन, अक्सा, नाजिया आफिया ने भी इसी कलाकार की रागिनी की फरमाइश की है।
0: कुमुदा छत्तीसगढ़ से फरमाइश भेज रहे हैं बलराम बया और इनका पूरा परिवार। गांव नलोई तहसील शिवानी मंडी जिला हिसार से फरमाइश भेज रहे हैं सज्जन कुमार जांगड़ा और इनका पूरा परिवार। तो सुनवाते हैं सभी की फरमाइश पर ज्ञानेंद्र सरधाना की आवाज में ये रागिनी।
1: किस्सा रहेगा हीर रांझे से।

0: तो अभी आपने सुनी ज्ञानेंद्र सरदाना की आवाज़ में ये रागनी और किस्सा था हीर रांझे से।
1: बिल्कुल, और घड़ी की सुई भी इशारा कर रही है प्रीति बहन अपने सभी बहन भाइयों से विदा लेने का।
0: इसी के साथ कार्यक्रम ग्राम संसार यहीं संपन्न होता है। सुनने वाले हमारे सभी भाई बहनों को
1: राम राम, राम, राम।
0: इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे तुषार पराशर और संयोजक शिवनंदन लाल।

0: ग्राम संसार, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। 7 बजने को है, थोड़ी देर में हिंदी में समाचार प्रसारित होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। भारत ने ओमान तट पर जहाज एमटी सेट्टेबेलो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। इसमें 3 भारतीयों की मौत हो गई थी। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी मीडिया ब्रीफिंग में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस संबंध में सरकार ने अमेरिका के प्रभारी राजदूत को तलब किया और कड़ा विरोध दर्ज कराया।
2: We attach high importance to the welfare and well-being.
3: हम अपनी नाविकों के कल्याण और सुरक्षा को बहुत महत्व देते हैं। क्षेत्र में जहाजों पर लगातार हो रहे हमले बेहद चिंताजनक हैं। ये हमले तुरंत बंद होने चाहिए। हम संवाद और कूटनीति का भी आह्वान करते हैं ताकि क्षेत्र में जल्द से जल्द शांति और स्थिरता बहाल हो सके।
2: Peace and stability in the region.
1: नाविक कल्याण कोष समिति को प्रत्येक मृतक नाविक के परिवार को 10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने का निर्देश दिया गया है। इस बीच पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि अधिकारियों को एमटी सेट्टेबेलो से 21 बचे भारतीयों की जल्द वापसी और मृत नाविकों के शवों को शीघ्र स्वदेश लाने के निर्देश दिए गए हैं। उधर आज उत्तरी ओमान के शिनास बंदरगाह के पास एक वाणिज्यिक टैंकर एमटी जलवीर में आग लग गई। इस जहाज पर करीब 20 भारतीय चालक दल के सदस्य सवार हैं। मस्कट स्थित भारतीय दूतावास स्थानीय अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है और स्थिति पर नजर बनाए हुए है। ओमान के अधिकारी राहत और आपातकालीन समन्वय के प्रयासों में जुटे हैं। टैंकर में आग लगने के कारणों की अभी पुष्टि नहीं हो सकी है। पिछले 72 घंटों में ओमान के जल क्षेत्र में भारतीय चालक दल वाले जहाजों से जुड़ी ये तीसरी घटना है। 8 जून को एमटी मारिवेक्स अमरीकी हमले में क्षतिग्रस्त हो गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र और राज्य सरकारों के सामूहिक प्रयास विकसित भारत के दृष्टिकोण की भावना को साकार करने में महत्वपूर्ण हैं। नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भले ही दुनिया अनिश्चितता और अस्थिरता के दौर से गुजर रही है, लेकिन भारत आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ विकास पथ पर अग्रसर है। श्री मोदी ने कहा कि सशक्त युवा ही विकसित भारत की यात्रा में प्रेरक शक्ति साबित होंगे। उन्होंने कहा कि महिला नेतृत्व आधारित विकास विकसित भारत की परिकल्पना का आधार है। गृहमंत्री अमित शाह भी इस बैठक में शामिल हुए। श्री शाह ने कहा कि नीति आयोग देश को बुनियादी रूप से मजबूत करने वाली प्रमुख संस्था है। गृहमंत्री ने कहा कि भारत न केवल प्रतिस्पर्धा कर रहा है बल्कि हर बड़ी अर्थव्यवस्था से आगे निकलने का प्रयास कर रहा है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि भारत ने वर्ष 2025-26 में अनाज उत्पादन का नया रिकॉर्ड बनाया है। इस दौरान चावल और गेहूं का उत्पादन अब तक के सबसे उच्च स्तर पर पहुंच गया है। श्री जोशी ने कहा कि ये उपलब्धि देश की खाद्य सुरक्षा को और सुदृढ़ करेगी, किसानों को सशक्त बनाएगी तथा आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को आगे बढ़ाएगी। सरकार ने कुछ एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क माफ कर दिया है। वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना के माध्यम से 22, 25, 27 और 30 % एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को केंद्रीय उत्पाद शुल्क से पूरी तरह छूट देने की घोषणा की है। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने आज गुजरात के वडोदरा से भारत में विनिर्मित पहले एयरबस C295 की पहली परीक्षण उड़ान की सराहना की। श्री नायडू ने कहा कि ये एयरोस्पेस विनिर्माण में देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाता है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज जयपुर आकाशवाणी में राजस्थान के रामगढ़ में 20 किलोवाट के FM ट्रांसमीटर का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। श्री वैष्णव ने सामरिक अवसंरचना पर ध्यान केंद्रित करते हुए आकाशवाणी और दूरदर्शन से सीमावर्ती क्षेत्रों में संचार व्यवस्था को मजबूत करने की सरकार की प्रतिबद्धता का उल्लेख किया। उन्होंने समय के साथ परिवर्तन पर भी बल दिया। तृणमूल कांग्रेस के सांसद प्रकाश चिक बराइक ने राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। इससे पहले सुखेंदु शेखर राय और सुष्मिता देव ने भी राज्यसभा और पार्टी दोनों से इस्तीफा दे दिया था। पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने ईशा रानी बरुआ को और तन्वी ने मालविका बंसोड़ को हराया।

0: फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट आज से रंगारंग कार्यक्रम के साथ शुरू हो रहा है। उद्घाटन मैच में आज रात 12:30 बजे ग्रुप ए में मेजबान मैक्सिको का सामना दक्षिण अफ्रीका से होगा। भारतीय समय अनुसार ये मैच रात 12:30 बजे से खेला जाएगा। ये टूर्नामेंट 19 जुलाई तक अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में आयोजित किया जा रहा है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। आइए सुनते हैं कार्यक्रम कृषि जगत।

0: कार्यक्रम कृषि जगत सुनने वाले हमारे सभी किसान भाइयों और बहनों को राम
1: राम,
0: राम।
1: राम।
0: अतुल भाई कार्यक्रम लेकर हाजिर हैं और कार्यक्रम में जानकारी होगी, मनोरंजन भी होगा, जानकारी ज़्यादा होगी आज।
1: बिल्कुल, देखिए जानकारी ये है कि देखिए हमारे जीवन में और जीवन में क्या हमारे स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी है कि देखिए सब्जियों का और हमारे खान पान का, चाहे वो फल हो, सब्जी हो, अनाज हो, सभी का हमारे जीवन में बहुत बड़ा योगदान।
0: एक संतुलन बहुत जरूरी है, बैलेंस डाइट जिसको बोलते हैं, है ना, संतुलित।
1: बड़े बड़े तो कहते हैं कि जो समय के अनुसार सब्जियां चलती हैं, फल
0: मौसमी
1: चलते हैं,
0: मौसमी फल
1: ये बात
0: जी,
1: वो हमेशा हमें अपने जो है भोजन में इस्तेमाल करनी चाहिए।
0: क्योंकि ना प्रकृति वही देती है जिस वक्त आपको, जब जिसकी जरूरत हो, है ना। आम सर्दियों में नहीं होता, गर्मियों में होता है, और उसको गर्मियों में ही खाना है। तो कई बार क्या होता है, बेमौसमी चीज़ें जो हम खाने लग जाते हैं ना, तो फिर हमारा शरीर कहता है कि यह गलत है, तो रुक जाओ।
1: तो ऐसी एक जानकारी हम भी लेकर के आए हैं, वर्तमान समय में सब्जियों की देखभाल एवं सब्जी उत्पादन और आगे की उनकी तैयारी, और इसकी जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर गोगरा सिंह जाट, और इनसे बातचीत कर रहे हैं शिवनंदन लाल। तो प्रीति बहन, लेते हैं ये जानकारी।
2: किसान भाइयों नमस्कार। जिस तरीके से इस समय गर्मी पड़ रही है, तो गर्मी में जो हमारी सब्जियां होते हैं उनकी आवक कम हो जाती है, और कारण ये रहता है कि हमारे किसान भाई तो पूरी मेहनत से उगाते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं गर्मी का प्रभाव सब्जियों पर पड़ता है, और ये उत्पादन पे ज़्यादा प्रभाव न पड़े उसकी किस तरीके से देखभाल की जाए, कौन से उसमें कृषि क्रियाएं की जाएं और किस तरीके से उसकी तैयारी की जाए, इसके लिए आज हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर गोगराज सिंह जाट जी को। और आप हैं वरिष्ठ वैज्ञानिक शाकीय विज्ञान संभाग भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में। डॉक्टर साहब कार्यक्रम में स्वागत है।
3: जी धन्यवाद।
2: तो डॉक्टर साहब, इस समय जो मौसम है, ऐसे मौसम में हमारे किसान भाइयों की जो सब्जियां लगी हुई हैं, क्या उनको आप उपयुक्त सलाह देना चाहेंगे?
3: अभी आप देख रहे हैं कि तापमान निरंतर बढ़ रहा है और लू चल रही है, गर्मी अधिक पड़ रही है, तो इस मौसम में अभी जो किसानों के खेत में अगर सब्जियां हैं, तो उनमें प्रमुख सब्जियां हैं जो बेल वाली सब्जियां हैं, जिनमें करेला, तोरई, लौकी, कद्दू और भी अन्य जो बेलदार सब्जियां हैं वो खेतों में किसानों के लगी हुई है। कुछ ऐसी सब्जियां हैं जिनकी तुड़ाई हो चुकी है और वो समाप्त हो चुकी है। कुछ वो हैं जो मार्च और अप्रैल में जिनकी बुआई की गई थी, किसान जो अच्छी आमदनी लेने के लिए जो लेट लगाते हैं, वो सब्जियां अभी भी चल रही है, लेकिन अधिक तापमान की वजह से उनमें उत्पादन जरूर कम होता है। लेकिन उत्पादन जो कम होता है वो महंगे दाम पर बेचकर किसान उसका लाभ ले सकते हैं। लेकिन सबसे बात यह है कि अभी उत्पादन को अच्छे से बनाए रखने के लिए किसानों को क्या क्या करना चाहिए इन सब्जियों में, क्योंकि लू अधिक हो रही है, गर्मी अधिक हो रही है, तो बेलदार जो सब्जियां हैं इनमें जो नर पुष्प है उनकी संख्या बढ़ जाती है और मादा पुष्प की जो संख्या है वो कम हो जाती है, अधिक तापमान होने की वजह से, जब 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर जब तापमान जाता है। तो इसके लिए किसानों को सबसे जो प्रमुख है कि निरंतर सिंचाई करें, हर दूसरे दिन बेलदार सब्जियों में इस समय सिंचाई करते रहें। अगर ड्रिप में है तो 3 से 4 घंटे तक वो ड्रिप जो प्रणाली से सिंचाई कर रहे हैं वो लगा करते रहें। अगर नालियां हैं तो 2 दिन के अंतराल से नालियों को पूरा पानी से भरकर सिंचाई करते रहें, और इसके साथ साथ उनमें जो प्रत्येक तुड़ाई होती है उसके बाद में जो उर्वरक है, जैसे रासायनिक उर्वरकों में बात करें तो जैसे डीएपी की कुछ मात्रा पोटाश की मिलाकर नालियों में डालकर हल्की मिट्टी चढ़ा दें, उसके

बाद में फिर सिंचाई कर दें, तो लगभग ये कार्य करने से जो फल हैं उनकी लंबाई बढ़ जाएगी और उनका आकार भी अच्छा रहेगा और गुणवत्ता भी अच्छी रहेगी। इसके साथ साथ जो दूसरा कार्य है वो यह है कि जो फल मक्खी है, क्योंकि फल मक्खी छोटे फलों में अंडे देती है जिसे लार्वा उनके अंदर जाकर पूरे फल को खराब कर देते हैं, और ये मुख्यतः समस्या आती है जैसे खरबूजा है, करेला है, और इसके साथ साथ जो पंपकिन है जिसको हम कद्दू बोलते हैं। तो फल मक्खी के नियंत्रण के लिए एक तो जो

0: होता है। इसके साथ साथ अगर किसी किसान भाई ने अगर लेट ये फसलें लगाई है और अभी बंटवार की अवस्था में है और अभी एक या दो तुड़ाई की है, तो उनमें रेड पंपकिन जो बिटल है, कद्दू का जो लाल भ्रंग कीड़ा है, उसकी बीमारी भी कीट उसमें आता है। तो इसके नियंत्रण के लिए सुबह के समय अगर आप खेत में निरंतर विजिट करते हैं, तो वो सतरंगी रंग का एक छोटा सा कीड़ा होता है जिसको आप आसानी से हाथ से पकड़ के उसको नष्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इसके लिए आप जो रासायनिक दवाएं हैं वो भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन हम यही सलाह देते हैं कि कम से कम दवाएं हैं उनका कम से कम प्रयोग करना चाहिए, जो ये दोनों कीट है इनका आसानी से नियंत्रण किया जा सकता है। और इसके साथ साथ आगे भी किसान भाइयों को सलाह दूंगा कि जब इस मौसम में अगर कोई लगाना चाहता है तो वो मचान पे या ट्रेलिंग पर बेलदार सब्जियों की खेती करे, जिनसे उनका उत्पादन 20% तक आराम से बढ़ जाता है। क्योंकि इस मौसम में हम देखते हैं नालियों में जब बुआई करते हैं और नालियों से बाहर पौधे निकलते हैं तो वहां पर पानी नहीं पहुंचता है, तो जो फल होता है वो मृदा के सीधे संपर्क में आता है और उसका रंग थोड़ा लाइट ग्रीन हो जाता है और वो खराब भी होने लग जाता है, तो वो गलती ना करे किसान भाई।
1: और डॉक्टर साहब, जो हमारे किसान भाई सब्जियां तो हमेशा ज़रूरत पड़ती
0: जी
1: हैं और आगे की तैयारी कर रहे हैं,
0: जी
1: तो आगे इस समय क्या तैयारी कर सकते
0: जी
1: हैं?
0: तो इस समय जो भी किसान सब्जियां लगाना चाहते हैं तो उनके पास बहुत सारे विकल्प हैं, लेकिन थोड़ा यह है कि पानी की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए किसान के पास में। अगर पानी की व्यवस्था नहीं है तो वो किसान अभी थोड़ा और इंतजार करें बारिश का। तो इस समय जैसे ही पहली बारिश हो तो जो खाली खेत पड़े हैं उनमें ढेंचा लगा दें। ढेंचा लगभग 6 से 7 सप्ताह का जब हो जाता है तो उसको अच्छी प्रकार से मिट्टी में मिला देते हैं, जिससे कि उसमें प्रति हेक्टेयर लगभग 70 से 80 किलोग्राम नाइट्रोजन उस खेत में आ जाती है। तो ढेंचा लगाने के लिए पहले अच्छे से ठीक ठाक उसमें पलेवा कर दें और फिर ढेंचा का बीज बिखेर कर लगभग 15 से 20 किलो बीज प्रति हेक्टेयर के दर से फिर उसमें पाटा चलाकर समतल कर दें, और जब लगभग 1 से 1.25 महीने की फसल हो जाए ढेंचे की उसको मिला दें। उस समय क्या होगा, जैसे जुलाई का महीना आ जाएगा तो फिर उपयुक्त समय आ जाएगा बेलदार सब्जियों को लगाने का। लेकिन जिन किसानों के पास में अगर पानी की अच्छी उपलब्धता है तो वो लगभग 15 से 20 जून के आसपास या उसके बाद में बेलदार सब्जियों की दोबारा बुआई शुरू कर सकते हैं। और इनकी बुआई करने के लिए जो ऐसी किस्मों का चयन करें जो अच्छा उत्पादन दें और कीट व बीमारियां जिनमें कम लगे, जैसे अगर हम बात करें किस्मों की तो पूसा संस्थान में भी इनका बीज उपलब्ध है। जैसे लौकी में पूसा नवीन ले सकते हैं, पूसा संदेश ले सकते हैं, पूसा समृद्धि ले सकते हैं, पूसा संतुष्टि ले सकते हैं। अगर कद्दू की बात करें तो पूसा विश्वास ले सकते हैं, पूसा विकास ले सकते हैं। करेले की भी हमारे पास ऐसी किस्म है जो इस मौसम में अच्छी चलती है बारिश के मौसम में, जिनमें पूसा दो मौसमी और पूसा विशेष प्रमुख है। अगर तोरई की खेती करना तो पूसा स्नेहा, पूसा चिकनी ले सकते हैं। तो ये किस्में किसान अभी अगर लगाना चाहते हैं तो उनका चयन कर सकते हैं। लेकिन वैसे मैं कहूंगा जहां पर पानी की उपलब्धता कम है या व्यवस्था नहीं है, अभी किसान को इंतजार करना चाहिए बारिश का और 15-20 जुलाई के लगभग वो इन फसलों की बिजाई जारी रख सकते हैं और लगभग 15 से 20 अगस्त तक इनकी बिजाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो किसानों के पास में अभी लगाने का ऑप्शन है, जैसे बैंगन की फसल है, तो बैंगन की फसल की अभी नर्सरी किसान भाई डाल सकते हैं। तो नर्सरी डालने के लिए नर्सरी की जो भी तैयारियां हैं, अगर बैंगन का कितना बीज लगेगा प्रति हेक्टर के दर से, उस हिसाब से 300 से 400 ग्राम बीज प्रति हेक्टर के दर से बैंगन का सफिशियंट होता है, तो उसके हिसाब से किसान भाई नर्सरी डाल सकते हैं। नर्सरी का ऐसे स्थान पर चयन करना चाहिए जहां पर जमीन उठी हुई हो, क्योंकि हम देख रहे हैं आगे मानसून आने वाला है और लगभग 15 सेंटीमीटर के बेड बनाकर मिट्टी को अच्छी तरह भुरभुरी कर अभी उसमें लगभग फॉर्मेल्डिहाइड जो दवा होती है उसका 25 ml दवा को 1 लीटर पानी में घोलकर जो नर्सरी का एरिया है उसके ऊपर अच्छे से छिटक कर पूरा उसको मिलाकर मिक्स करके जमीन में उसके ऊपर ट्रांसपेरेंट जो पॉलीथीन है वो बिछा दें लगभग 10 से 12 दिन के लिए। उसके बाद में उसको हटाकर उस स्थान पर नर्सरी बनाएंगे तो जो फंगल बीमारी आती है, जो फफूंदनाशक बीमारी आती है, डैम्पिंग ऑफ है, इसकी संभावना बहुत कम हो जाती है, ऐसी बीमारियां नहीं आती है। और नर्सरी तैयार करने के लिए बीजों को अच्छी प्रकार से उपचारित करें, फफूंदनाशक दवा है चाहे उसमें थायरम हो, बाविस्टिन हो, केप्टान हो, केप्टाफ हो, 2 ग्राम दवा प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से। अगर आपको 500 ग्राम बीज अगर चाहिए 1 हेक्टेयर में तो लगभग उसमें 1 ग्राम दवा को मिलाकर अच्छे से सूखा उपचार कर फिर ही पौधशाला में बुआई करें। और पौधशाला में जब भी बीजों की आप बुआई करते हैं ये जरूर ध्यान रखें बीज की जो गहराई है वो 1.5 से 2 सेंटीमीटर से ज्यादा ना हो, और जैसे ही बुआई करें उसके बाद में उसके ऊपर अच्छी प्रकार से सड़ी हुई गोबर की खाद और मिट्टी दोनों मिलाकर उसके ऊपर एक परत बना दें और फैला दें और उसके ऊपर एक सूखी घास बिछा दें, फिर पानी लगाएं, जिससे क्या होगा बीजों का जो अंकुरण है एक समान होगा, अच्छा जमाव होगा और जब बीज निकलने लग जाए उस समय सूखी घास को वहां से हटा दें। तो इस प्रकार बैंगन की नर्सरी तैयार कर सकते हैं। इसी प्रकार से जो खरीफ जो प्याज लगेगा उसकी नर्सरी भी इसी प्रकार से तैयार कर सकते हैं। जिनके जो बेड होते हैं उनकी लंबाई आवश्यकता अनुसार कितनी भी रख सकते हैं किसान, और उनकी जो चौड़ाई है लगभग 60 से 80 सेंटीमीटर रखें ताकि खरपतवार निकालने में आसानी से रहें। और जो बीजों की बुआई है वो प्याज हो चाहे बैंगन हो नर्सरी में कतार से कतार की जो दूरी है वो लगभग 4 से 5 सेंटीमीटर रखें और कतारों में ही इनकी बुआई करें नर्सरी में, जिससे कि खरपतवार निकालने में आसानी रहती है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो चौलाई की जो फसल है,

0: वो भी जैसे ही बारिश हो उसमें भी चौलाई की बिजाई किसान भाई अभी कर सकते हैं। तो बहुत सारे किसानों के पास अभी भी ऑप्शन है, किसान भाई इन सब्जियों की खेती कर सकते हैं।
1: और डॉक्टर साहब, जो किसान भाई गोभी की तैयारी करते हैं,
0: जी
1: तो नर्सरी डालने का समय
0: जी
1: क्या है?
0: देखिए, जो किसान भाई अगेती गोभी लेना चाहते हैं, जिसको हम कहते हैं कि अगस्त के अंतिम सप्ताह में या सितंबर के प्रथम सप्ताह में जिसकी तुड़ाई हो जाती है,
1: जी
0: लगभग 85 से 90 दिन की हो जाती है, उसकी नर्सरी डालने का सही समय चल रहा है अभी। तो इनकी अगर नर्सरी डालना चाहते हैं तो जैसे प्याज और मैंने बताया बैंगन की, उसी तरीके से उठे हुए बेड बनाकर नर्सरी इनके तैयार कर सकते हैं। और ये किसान भाई जरूर ध्यान रखें कि जब भी किस्मों का चयन करें तो वही किस्में लें जो अगेती हो, जिनकी नर्सरी अभी डल रही हो और 1 से 1.25 महीने के बाद में उनकी रोपाई होगी, लगभग 40 से 45 दिन बाद में, और उसमें लगभग 85 से 90 दिन में वो फसल पक जाएगी। क्योंकि किसान भाई कभी कभी क्या करते हैं, बाजार से जब बीज लाते हैं तो उसका अभाव होता है, तो वो किस्में ले लेते हैं जो लेट सीजन में लगती है, जैसे नवंबर और दिसंबर में,
1: जी
0: तो उसमें फूल बहुत छोटे से आकार का बनता है और उसका बाजार मूल्य नहीं होता। तो ये अक्सर किसान भाई गलती कर देते हैं, क्योंकि जो गोभी होती है उसमें 4 प्रकार की किस्में होती है, अगेती, मध्य अगेती, मध्य पचेती और पचेती किस्में। जो गोभी की जो बुआई का समय शुरू होता है मई अंतिम और जून के शुरुआत से नर्सरी डलती है और ये लगभग 9 दिसंबर तक डलती है, तो अगेती किस्मों का ही चयन करें, जिसमें अरली कुंवारी है और पूसा सिंथेटिक है, इसके साथ साथ जो कार्तिक शंकर हाइब्रिड वो ले सकते हैं, और भी पूसा संस्थान की जो भी किस्में, जो अगेती किस्में उन्हीं का चयन करें। ये जरूर सुनिश्चित कर लें कि जो बीज हम लगा रहे हैं वो अगेती किस्मों का ही है।
1: तो इसमें जो नर्सरी डालते हैं तो उसमें कोई बीमारी भी आती है?
0: जी देखिए, नर्सरी अगर हम डालते हैं तो उसमें एक प्रमुख बीमारी आती है जिसको नर्सरी की मुख्य बीमारी कहते हैं, वो होती है डैम्पिंग ऑफ, जिसको हम वैज्ञानिक भाषा में बोलते हैं, और उसको हिंदी में आद्र गलन बोलते हैं, जिसको किसान बोलते हैं कि जैसे ही बीज निकलने लगता है पौधे गिर के मर जाते हैं। तो
1: जी
0: उसमें अगर सही समय पर उसका उपचार नहीं किया गया तो लगभग 24 से 48 घंटे में पूरी नर्सरी है वो खत्म हो जाती है। तो इसके लिए सबसे जो उपाय है, बीजों को उपचारित करके ही बोएं। तो मैंने पहले भी बताया था कि बीज उपचारित करने के लिए, जैसे अगर आपको 300 से 400 ग्राम गोभी का फूल या पत्ता गोभी का जो भी बीज लगाना है, उसको लगभग 1 ग्राम दवा ले लें, अच्छे से उसको मिक्स कर लें उसमें सूखा उपचार करके, और फिर नर्सरी में उसकी कतारों में बुआई करें। और जब भी आप पानी लगाएं उसमें भी आप अगर फफूंदनाशक दवा है, क्विप्टान, थायरम, बाविस्टीन, केपटाप, 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से, जो 10 लीटर का जार आता है उसमें लगभग 10 लीटर में 20 ग्राम दवा डाल के घोल बना के उससे सिंचाई करें, तो वो बीमारी बिल्कुल भी नहीं आएगी और आपका जो बीज है वो उपचारित होना चाहिए। तो अगर ये 2-3 चीजों का ध्यान रखेंगे तो वो बीमारी नहीं आएगी। अगर वो आ जाती है तो बहुत बड़ा नुकसान किसान को झेलना पड़ता है, उसका बीज भी खत्म हो जाता है, समय भी चला जाता है, फिर उसका कोई वैल्यू नहीं रहता, फिर उसके बाद में उसको जो मध्य पचेती किस्में होती है वो लगानी पड़ती है। तो इसका नियंत्रण करना बहुत जरूरी है। और मैंने पहले भी बताया था कि जो फॉर्मेल्डिहाइड है, 25 मिलीलीटर दवा को 1 लीटर पानी में मिलाकर उसका अच्छे से नर्सरी की जमीन पर स्प्रे करके 10 दिन तक जो ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन होती है उससे ढककर रखना चाहिए। तो उसी में सभी प्रकार के जो भी फंगस बैक्टीरिया होते हैं हार्मफुल क्रॉप के लिए, वो सारे खत्म हो जाते हैं। तो ये इसी 3-4 चीजों से इसका नियंत्रण आसानी से किया जा सकता है।
1: डॉक्टर साहब, कभी कभी देखा है कि नर्सरी में जो छोटे छोटे पौधे होते हैं तो उसमें एक कीड़ा लगता है जो
0: जी
1: उसको काट देता है,
0: जी जी
1: तो उसकी रोकथाम के लिए क्या
0: जी
1: करें?
0: देखिए, जो नर्सरी में आप बता रहे हैं एक छोटा सा कीड़ा लगता है, तो सबसे पहले तो यह है कि जब भी हम नर्सरी लगाएं तो एक ऐसे स्थान पर लगाएं जहां पर जैसे हम कोई नेट हाउस होता है उसके अंदर हम अगर करते हैं तो वो प्रोटेक्शन देता है आपको कीड़ों से छोटे, क्योंकि जून और जुलाई में जैसी बारिश शुरू होती है कीड़ों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती
1: जी
0: है, तो पत्तों को काटता है, धीरे धीरे जालीनुमा बना देता है, तो पूरी नर्सरी खराब हो जाती है उससे। तो नेट के अंदर बनाए और उसके ऊपर एक ग्रीन नेट भी लगा सकते हैं अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो, पौधों को शुरुआती अवस्था में थोड़ा हमें उनकी केयर करना होता है। इसके बाद में भी अगर पत्तों को कोई काट रहा है तो बहुत प्रकार के जैसे रासायनिक कीटनाशक बाजार में उपलब्ध होते हैं, उस अवस्था पर हम उनको डाल सकते हैं, जैसे बहुत सारे हैं, इंडोक्सिकार्ब है, उसको 1 ml दवा को 3 लीटर पानी में मिलाकर नर्सरी के जो छोटे पौधे होते हैं उनके ऊपर स्प्रे कर देते हैं, लेकिन उनकी कंसंट्रेशन हमें कम रखना चाहिए जब पौधे छोटे होते हैं, 1 ml को 3 लीटर पानी में मिलाकर डालते हैं, तो इस प्रकार के जो भी कीड़ आते हैं जो पौधों को खाते हैं, पत्तियों को जाली बना देते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं।
1: और कोई खास बात बताना चाहेंगे जो हमारे किसान भाई इस समय सब्जियों की खेती कर रहे हैं?
0: देखिए, मैं किसान भाइयों के लिए यही बताऊंगा कि सबसे पहले तो जब भी आप खेत की तैयारी करें आप पहले उसमें पलेवा करें। सूखे खेत में हैरो, कल्टीवेटर ये नहीं चलाना चाहिए, उसमें अच्छे से पलेवा करके उसको 2-3 बार जो मिट्टी पलटने वाला जो हल होता है उससे उसकी गहरी जुताई कर दें। जब आप पलेवा करते हैं उससे पहले जरूर आप उसमें अच्छी प्रकार से सड़ी हुई गोबर की खाद, चाहे वो कोई सी भी सब्जी फसल लगा रहे हैं, लगभग 20 से 25 टन, जिसमें हम कहते हैं कि 8 से 10 ट्रोली हम प्रति एकड़ के हिसाब से अगर डालते हैं सड़ी हुई गोबर की खाद में, कच्ची गोबर की खाद किसानों को कभी भी प्रयोग में नहीं करना चाहिए, चाहे कोई सी भी सब्जी लगा रहे वो डाल दें, उसमें अच्छी प्रकार से मिला दें। और आप पहले जो फसल लगाना चाह रहे हैं तो उसकी जो सबसे अच्छी से अच्छी जो किस्म बाजार में उपलब्ध है या

0: किसी संस्थान से आप लेना चाहते हैं तो उसका चयन करना चाहिए। आप किस मौसम में लगा रहे हैं, उसमें कौन सी बीमारी आती है, उस बीमारी के प्रति वो सहनशील है या नहीं है, तो वो कर ले सोने से। दूसरा ये देख लें कि बीज उपचारित है या नहीं है, आपके पास पानी का क्या सोर्स है, पानी की आप जांच करा सकते हैं। किसान भाई अभी मिट्टी की जांच करा सकते हैं, आजकल मिट्टी की जांच भी बहुत जगह फ्री हो रही है। आप जो मिट्टी प्रयोगशाला है राज्य की है, चाहे हमारे पूसा संस्थान में भी किसान भाई आकर अपने मिट्टी का सैंपल देकर मिट्टी और पानी उन दोनों की जांच भी करा सकते हैं। इसके साथ साथ मैंने पहले भी बताया था कि जो बेलदार सब्जियां हैं उनकी जो बुआई है वो हमेशा मचान सिस्टम पर करें या ट्रेलिंग में करें, जिससे कि उत्पादन निरंतर मिलता रहे और अच्छा उत्पादन मिले। और नर्सरी का जो एरिया है वो उठा हुआ होना चाहिए, पानी की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए जहां पर आप नर्सरी तैयार कर रहे हैं। इसके साथ साथ में सिंचाई की व्यवस्था भी आपके पास प्रॉपर होनी चाहिए। और जो खरपतवार है उनकी संख्या बहुत ज्यादा होती है सब्जियों में, तो इसके नियंत्रण के लिए भी जो पेंडामिथिली नाम की एक दवा आती है उसकी आधा लीटर दवा को लगभग 400 लीटर पानी में घोलकर आप रोपाई करते हैं या बिजाई के तुरंत बाद में उसमें स्प्रे कर दें तो शुरुआती तौर पर खरपतवार बहुत कम आते हैं। और जिस खेत में ज्यादा खरपतवार आते हैं जैसे मोथा, उस खेत में पत्तेदार सब्जियां ज्यादा लगानी चाहिए जिससे कि बिल्कुल छाया बनी रहे और मोथा पूरा जड़ से खत्म हो जाए। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो किसानों को ध्यान रखनी चाहिए।
1: डॉक्टर साहब, आपसे अंतिम सवाल पूछना चाहूंगा कि खेत बचाओ अभियान पे क्या बोलना चाहेंगे?
0: जी देखिए, ये बहुत अच्छा भारत सरकार का और कृषि मंत्रालय का अच्छा अभियान है और बहुत ही ICAR इस पे बल दे रहा है कि ये किसानों तक पहुंचकर बहुत इसमें टीमें बनाई गई है। ICAR के जो भी संस्थान है या राज्य सरकार के जो भी डिपार्टमेंट्स हैं एग्रीकल्चर के, उनके जो वैज्ञानिक है वो किसानों के खेतों तक जा रहे हैं, किसानों को जागरूक कर रहे हैं कि आप खेत बचाओ, मतलब खेत की जो उर्वरा शक्ति है उसको हमें बचाना है, क्योंकि किसान अंधाधुन उसमें रासायनिक खादें उनका प्रयोग लिमिट से ज्यादा कर रहे हैं। अगर वैज्ञानिक अनुशंसा उसमें अगर जितनी है उससे ज्यादा किसान कर रहा है तो उसकी उर्वरा शक्ति कम हो रही है, उसमें जो माइक्रोबियल जो एक्टिविटीज है मृदा में वो कम हो रही है, तो हमारा जो उत्पादन है वो बहुत ज्यादा नहीं बढ़ पा रहा है बल्कि उसी जगह पे उसी लेवल पर है। तो इससे क्या होगा, किसान की बचत भी होगी, जो अंधाधुन प्रयोग कर रहा किसान, चाहे वो रासायनिक खाद हो चाहे कीटनाशक हो, उसकी बचत भी कम होगी। इसमें किसानों की भी गलती नहीं है, इसमें जहां से किसान खरीद रहा है उनको भी नहीं पता है कि दवाई किस काम आती है, ये वीडिसाइड है, कहां स्प्रे करना है, कब करना है। तो हम किसानों को इसमें यही कर रहे हैं कि राइट अमाउंट, राइट प्लेस और राइट डोज ये आपको डालना है। तो कृषि मंत्रालय का यही है कि इसमें संतुलित प्रयोग करना है, जिसको हम कहते हैं इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट, यही उद्देश्य है खेत बचाओ अभियान ICAR का।
1: जी डॉक्टर गोपराज जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी और निश्चित तौर पर हमारे किसान भाई इस जानकारी का फायदा उठाएंगे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: तो अभी आपने ये बातचीत सुनी, विषय था वर्तमान समय में सब्जियों की देखभाल एवं सब्जी उत्पादन और आगे की तैयारी कैसे करें, इस पर जानकारी दे रहे थे डॉक्टर गोगराज सिंह जाट, जो इनसे बातचीत कर रहे थे शिवनंदन लाल।
3: बिल्कुल, तो बहुत ही अच्छी जानकारी अभी हमारे सभी किसान बहन भाइयों को मिली है प्रीति बहन। और देखिए, अब बात करते हैं खरीफ दलहन के बारे में, चाहे वो अरहर हो, मूंग हो या उड़द हो।
2: खरीफ मौसम में दलहनी फसलों जैसे कि आपने बताया कि अरहर, मूंग और उड़द, ये किसानों के लिए कम लागत में और अधिक लाभ देने वाली फसलें मानी जाती हैं।
3: बिल्कुल,
2: और ये फसलें मिट्टी की उर्वरकता को बढ़ाने में भी बहुत सहायक होती हैं। इसके अलावा प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत भी होती हैं। वैज्ञानिक तरीके से खेती करने पर उत्पादन और गुणवत्ता दोनों में ही वृद्धि होती है।
3: बिल्कुल, देखिए, और ये जो इनकी जो जलवायु और मिट्टी की अगर बात की जाए तो देखिए, अरहर को गर्म एवं मध्यम वर्षा वाले क्षेत्रों के लिए उपयुक्त माना जाता है। दोमट या बलुई दोमट मिट्टी सबसे बेहतर रहती है प्रीति बहन, और मूंग के लिए हल्की से मध्यम दोमट मिट्टी और अच्छी जल निकासी वाली भूमि उपयुक्त होती है। उड़द की बात करें तो सभी प्रकार की मिट्टी में उगाई जा सकती है ये दाल, लेकिन जल भराव से इसका भी बचाव बहुत जरूरी है।
2: और अगर बुवाई के समय की बात करें तो अरहर जो है जून के अंतिम सप्ताह में जुलाई से मध्य तक बोई जा सकती है। मूंग की बात करें तो जून जुलाई में मानसून की शुरुआत के साथ ही इसकी बुवाई हो सकती है। और उड़द की बात करें तो जून के अंत में जुलाई तक बुवाई का जो समय रहता है वो सबसे सही रहता है।
3: बिल्कुल, और बात करें देखिए उनकी किस्मों की, तो देखिए पूसा 992, पूसा 991, नरेंद्र अरहर 1 और ICPL 88039 हमारे किसान भाई लगा सकते हैं। मूंग सम्राट, पूसा विशाल, ऐसी बहुत सी किस्में हैं जिनको हमारे किसान भाई लगा सकते हैं।
2: और अगर हम बीज की मात्रा की बात करें और उपचार की बात करें तो अरहर की बात है 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, मूंग की बात करें तो 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और उड़द 18 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर,
3: यानी कि बीज की मात्रा हमारे किसान भाई ले सकते हैं
2: जी।
3: और देखिए, बुवाई से पहले बीज को जो है

0: फफूंदी नाशक दवा से जो है उपचारित कर लें। और देखिए कहते हैं ना कि जिससे पौधे को जो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण जो है बेहतर हो जाता है उससे।
1: और खेत की तैयारी और बुआई कैसे करनी है, मान लीजिए खेत की 2 से 3 जुताई करके मिट्टी जो है वो पहले भुरभुरी बनाएं, और उसके बाद अरहर का जो दूरी है ना पौधे की वो 60 से 75 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और मूंग और उड़द की बात करें तो 30 से 45 सेंटीमीटर के बीच की दूरी पौधे के बीच में होनी चाहिए, और पौधे से पौधे की दूरी लगभग 10 से 15 सेंटीमीटर होनी चाहिए।
0: बिल्कुल। और देखिए खाद और उर्वरक की बात करें प्रीति बहन, तो गोबर की सड़ी खाद हमारे जो किसान भाई हैं वो ले सकते हैं, देखिए 8 से 10 टन प्रति हेक्टेयर डाल सकते हैं अपनी फसल में, और नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटाश का संतुलित प्रयोग जो है हमारे किसान भाई कर सकते हैं। और दलहनी फसलें कम नाइट्रोजन मांगती हैं, इसलिए अधिक यूरिया का प्रयोग जो है हमारे किसान भाई ना ही करें।
1: सिंचाई और खरपतवार का नियंत्रण समय समय पर करते रहें, जैसे कि वर्षा आधारित फसलें हैं ये, और लंबे सूखे में हल्की सिंचाई करते रहें। बुआई के 20 से 25 दिन बाद निराई गुड़ाई बहुत ज़रूरी होती है, उसका ध्यान रखें। खेत में जल जमा जो होता है, जल भराव जो हो जाता है, उसे बिल्कुल ना होने दें।
0: बिल्कुल। और देखिए कोशिश ये करें, देखिए जब फसल है तो कीट भी लगने की संभावना ज़्यादा होती है प्रीति बहन, तो कोशिश ये करें कि जैसे अरहर है, अरहर की पत्तियों में फली छेदक कीट प्रमुख हो जाता है, इसका समय पर नियंत्रण बहुत ज़रूरी है। मूंग और उड़द की जो फसलें होती हैं उनमें पीला मोजेक रोग से जो है बचाव के लिए रोगरोधी किस्में लगाएं, और सफ़ेद मक्खी का जो है नियंत्रण हमारे किसान भाई जरूर करें।
1: अब अगर हम कटाई की बात कर लें तो जब 80 से 85% जो फलियाँ हैं वो पक जाएं, कटाई तभी करें, और वैज्ञानिक प्रबंधन से अच्छी पैदावार तो पाई ही जा सकती है, और इससे क्या है कि जो किसान की आय है ना वो उसमें भी वृद्धि हो सकती है।
0: बिल्कुल। तो ये तो रही जानकारी भाई खरीफ दलहन अरहर मूंग और उड़द की वैज्ञानिक खेती के बारे में। और देखिए अब बात करते हैं बहुत सी योजनाएं सरकार के द्वारा हमारे सभी किसान बहन भाइयों के लिए चलाई गई हैं, तो उन्हीं में से एक योजना है संरक्षित खेती योजना।
1: जी
0: देखिए जलवायु, देश में जलवायु परिवर्तन और तापमान में लगातार हो रहे उतार चढ़ाव के बीच प्रीति बहन किसानों में संरक्षित खेती का क्रेज तेजी से बढ़ रहा है। इसमें पॉली हाउस, ग्रीन हाउस और शेड नेट हाउस जैसे आधुनिक तकनीकों का मदद से किसान नियंत्रण वातावरण में उच्च मूल्य वाली फसलों की खेती कर बेहतर उत्पादन और अधिक मुनाफा हासिल जो है हमारे किसान भाई कर रहे हैं।
1: और अगर हम आधुनिक और अधिक मुनाफा देने वाली इस खेती तकनीक के बारे में बात ही कर रहे हैं, तो ये इसका जो मुख्य लक्ष्य है वो किसानों को जोड़ने के लिए राजस्थान सरकार भी लगातार प्रोत्साहन दे रही है। राज्य में विशेष योजना लागू करके किसानों को 70% तक की सब्सिडी भी दी जाती है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा किसान जो है आधुनिक खेती की तकनीकों को अपना कर अपनी आय बढ़ा सकें।
0: बिल्कुल। और देखिए संरक्षित खेती का मुख्य उद्देश्य यही है ताकि तापमान, आर्द्रता और सूर्य के प्रकाश जैसे कृषि जलवायु कारकों को नियंत्रित करके फसलों को अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराना।
1: जी।
0: और इस तकनीकी से जो किसान महंगी सब्जियां, फूलों और बागवानी फसलों की बेमौसमी खेती के हमारे जो किसान भाई वो कर सकते हैं।
1: बिल्कुल। और जैसे पॉली हाउस की बात आपने की, पॉली हाउस है, ग्रीन हाउस है, और इन्हीं ऐसी ही आधुनिक संरचनाओं में किसान टमाटर है, शिमला मिर्च, खीरा, गुलाब, स्ट्रॉबेरी जैसी बहुत ही उन्नत तकनीक वाली फसलें पूरे साल सफलतापूर्वक उगा सकते हैं, यानी कि ये जो फसलें बिना मौसम के भी बेहतर तरीके से उगेंगी।
0: बिल्कुल। तो संरक्षित खेती करके हमारे किसान भाई अच्छा मुनाफा जो है वो कमा सकते हैं। और घड़ी की सुई भी इशारा कर रही है प्रीति बहन अपने सभी किसान बहन भाइयों से विदा लेने का, तो कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी किसान बहन भाइयों को हमारी
1: राम राम, राम, राम।
0: इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे तुषार पारासर और संयोजक हैं शिवनंदन लाल।

कृषि जगत। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं गजल और कव्वाली का कार्यक्रम।

0: वारसी ब्रदर्स की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे ये कव्वाली। इसी के साथ गज़ल और कव्वाली का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। 7:45 होने को है, थोड़ी देर में सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में

0: लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में नीति आयोग की शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी हिस्सा लिया। दिल्ली सरकार 18 से 20 जून तक जन कल्याण शिविरों का आयोजन करेगी। उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने राजधानी में वर्षा जल संचयन की तैयारियों की समीक्षा की। शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कोचिंग संस्थानों के सुचारू संचालन के लिए उच्च स्तरीय समन्वय बैठक की। और संस्कृति मंत्रालय ने संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप अकादमी रत्न और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार तथा उस्ताद बिस्मिल्ला खान युवा पुरस्कारों की घोषणा की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भले ही दुनिया अनिश्चितता और अस्थिरता के दौर से गुजर रही हो, लेकिन भारत आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ विकास पथ पर अग्रसर है। नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री मोदी ने कहा कि जैसे जैसे भारत विकसित भारत के लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रहा है, ऐसे में केंद्र और राज्य सरकारों की सामूहिक जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। एक रिपोर्ट।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक में कहा कि राज्यों के बीच सहयोग, संवाद और विचारों का आदान प्रदान होना चाहिए। उन्होंने कहा कि नीति आयोग इसमें सहयोग के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। श्री मोदी ने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, कौशल विकास और युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना प्राथमिकता बनी रहनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि सशक्त युवा ही विकसित भारत की यात्रा में प्रेरक शक्ति होंगे। उन्होंने कहा कि भारत ने विकास और निर्यात के नए अवसरों के लिए कई देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते किए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि महिला नेतृत्व आधारित विकास विकसित भारत की परिकल्पना का आधार है। श्री मोदी ने कहा कि राज्यों को महिलाओं की शिक्षा, कौशल विकास, सुरक्षा और सशक्तिकरण को प्राथमिकता देनी चाहिए। बैठक में देश भर में उद्यमिता और कौशल विकास को बढ़ावा देने तथा रोजगार के स्थायी अवसर सृजित करने के उपायों पर विचार विमर्श किया गया। इस वर्ष की बैठक का विषय है 2047 तक विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास। प्रादेशिक समाचार के लिए विशाल शर्मा।
2: बैठक में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस मंच के तहत राज्य अपना अनुभव, कार्य पद्धतियां और सामूहिक विचार साझा कर विकसित भारत के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में दिल्ली सरकार इस महीने की 18 से 20 तारीख तक दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में 39 जन कल्याण शिविर आयोजित करेगी। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इन शिविरों के माध्यम से केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार की विभिन्न जनहितकारी योजनाओं और सेवाओं को नागरिकों तक सीधे पहुँचाने का प्रयास किया जाएगा।
4: इन शिविरों के आयोजन की तैयारियों के मद्देनजर आज दिल्ली सचिवालय में दिल्ली सरकार के मंत्री परवेश साहिब सिंह ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ एक बैठक की। इस अवसर पर परवेश साहिब सिंह ने कहा कि जन कल्याण शिविरों का उद्देश्य सरकार और जनता के बीच की दूरी को कम करना तथा यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी पात्र नागरिक को किसी योजना के लाभ से वंचित न रहना पड़े। उन्होंने कहा कि सरकार की कोशिश है कि हर योजना का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि यह शिविर केवल योजनाओं की जानकारी देने का माध्यम नहीं है, बल्कि जनता के साथ संवाद और समस्याओं के समाधान का भी एक महत्वपूर्ण मंच है। श्री सिंह ने सभी विभागों को समन्वय के साथ कार्य करने और नागरिकों को बेहतर से बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने दिल्ली वासियों से अपील करते हुए कहा कि वे अपने निकटतम जन कल्याण शिविर में पहुंचकर केंद्र और दिल्ली सरकार की विभिन्न योजनाओं और सेवाओं की जानकारी प्राप्त करें तथा उनका अधिकतम लाभ उठाएं। प्रादेशिक समाचार के लिए रिशु के साथ सौम्य शरण।
2: केंद्र सरकार ने एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल के कुछ प्रकारों पर उत्पाद शुल्क माफ कर दिया है। वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना के माध्यम से 22, 25, 27 और 30 प्रतिशत एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को केंद्रीय उत्पाद शुल्क से पूरी तरह छूट देने की घोषणा की है। मंत्रालय ने कहा है कि अब इन चारों ईंधन श्रेणियों पर उत्पाद शुल्क शून्य रहेगा। इसका उद्देश्य भारत के एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को मजबूत करना है, जिसका उद्देश्य आयातित कच्चे तेल पर निर्भरता कम करना, कार्बन उत्सर्जन में कटौती

0: करना और घरेलू स्तर पर उत्पादित एथेनॉल की मांग को बढ़ाना है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने आज एक बैठक में वर्षा जल संचयन की तैयारियों की समीक्षा की। इसमें दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली नगर निगम और नई दिल्ली नगर पालिका परिषद के अधिकारियों ने हिस्सा लिया।
1: उपराज्यपाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस बैठक में अधिकारियों को मॉनसून से पहले सभी वर्षा जल संचयन प्रणालियों को पूरी तरह कार्यशील बनाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके लिए समय सीमा भी निर्धारित की गई है। इसके अतिरिक्त बैठक में अधिकारियों को भूजल पुनर्भरण और जल संचयन के प्रयासों को और भी मजबूत करने के लिए पूरी दिल्ली में वर्षा जल संचयन करने वाले सभी ढांचों की कुल क्षमता का पूरी तरह से आकलन करने के भी निर्देश दिए। प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से करिश्मा राय।
0: श्री संधू ने आज दिल्ली में लू से निपटने के लिए किए जा रहे उपायों का भी निरीक्षण किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री संधू ने बताया कि उन्होंने कूलिंग सेंटर्स की तैयारियों का जायजा लिया। उपराज्यपाल ने भीड़भाड़ वाले इलाकों, विशेषकर अंतर्राज्यीय बस अड्डा तथा मेट्रो स्टेशनों पर तैनात मोबाइल रिलीफ वैन के पूरी क्षमता से काम करने और उनमें नागरिकों को जरूरी राहत और मदद देने के लिए सभी जरूरी सुविधाएं रखने के निर्देश दिए। दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कोचिंग संस्थानों के सुचारू संचालन के लिए आज एक उच्च स्तरीय समन्वय बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि ये बैठक दिल्ली में कोचिंग संस्थानों के प्रशासन और निगरानी व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक है। श्री सूद ने बताया कि नीति नियम की प्रक्रिया के लिए उच्च शिक्षा निदेशक को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। श्री सूद ने बताया कि राजधानी के सभी कोचिंग संस्थानों के लिए एक व्यापक नियामक ढांचा तैयार कर उसे शीघ्र ही लागू किया जाएगा। शिक्षा मंत्री ने बताया कि इसके लिए एक बहुविषयक समिति का गठन किया जाएगा जो कोचिंग संस्थानों की शुल्क संरचना, विद्यार्थी सुरक्षा और कल्याण तथा अग्नि सुरक्षा और आपदा प्रबंधन व्यवस्था जैसे विषयों पर दिशा निर्देश तैयार करेगी। उन्होंने कहा कि ये नियम दिल्ली के कोचिंग संस्थानों में सुरक्षित, पारदर्शिता, जवाबदेही तथा छात्र केंद्रित वातावरण सुनिश्चित करेगा और गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक सहयोग सेवाओं को बढ़ावा देगा। दिल्ली के परिवहन मंत्री पंकज कुमार सिंह ने आज विकासपुरी विधानसभा के अंतर्गत अपने कैंप कार्यालय में विभिन्न क्षेत्रों से आए लोगों से बातचीत की। श्री सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि कैंप में उन्होंने सभी लोगों की समस्याओं, सुझावों और जनहित से जुड़े विषयों को सुना। श्री सिंह ने नागरिक समस्याओं के प्रभावी समाधान के लिए अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिए। दिल्ली सरकार में मंत्री रविंद्र इंद्राज सिंह ने आज राजधानी के विभिन्न क्षेत्रों से आए लोगों के साथ अपने आवास पर संवाद किया। श्री सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि संवाद में जनहित से जुड़े विषयों पर चर्चा कर उन्होंने समस्याओं के निराकरण के लिए आवश्यक प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। उन्होंने कहा कि जन कल्याण, सुशासन और विकास के लिए सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने पर आज राजौरी गार्डन विधानसभा में स्वच्छता अभियान चलाया। श्री सिरसा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने 12 वर्षों में देश को आगे बढ़ाने के साथ साथ स्वच्छता को भी जन जन से जोड़ा है। दिल्ली नगर निगम के आयुक्त संजीव खिरवार ने आज रोहिणी क्षेत्र के विभिन्न वार्डों का निरीक्षण किया। उन्होंने क्षेत्र में स्वच्छता और धूल की रोकथाम के लिए निगम द्वारा किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की। श्री खिरवार ने कहा कि निगम दिल्ली को स्वच्छ और सुंदर बनाने की दिशा में हर संभव प्रयास कर रहा है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। संस्कृति मंत्रालय ने वर्ष 2024 और 2025 के लिए संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप, अकादमी रत्न और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कारों की घोषणा कर दी है। साथ ही उस्ताद बिस्मिल्ला खान युवा पुरस्कार की भी घोषणा की गई है।
2: समन्वय परिषद ने वर्ष 2024 और 25 के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कारों के लिए संगीत, नृत्य, रंगमंच, पारंपरिक, लोक, आदिवासी और कठपुतली कला सहित विभिन्न क्षेत्रों से 108 कलाकारों का चयन किया है। चयनित फेलोशिप और पुरस्कार विजेता पूरे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। अकादमी की समन्वय परिषद ने

0: वर्ष 2024-25 के लिए संगीत नाटक अकादमी और उस्ताद बिस्मिल्ला खां युवा पुरस्कार के लिए 106 युवा और कलाकारों का चयन किया है। ये पुरस्कार संगीत नाटक अकादमी के अध्यक्ष द्वारा एक विशेष समारोह में प्रदान किए जाएंगे। संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप और पुरस्कार राष्ट्रपति द्वारा एक विशेष अलंकरण समारोह में प्रदान किए जाएंगे। प्रादेशिक समाचार के लिए शक्ति सिंह।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक फैसले में कहा है कि गृहिणियों का कार्य केवल घरेलू कामकाज तक सीमित नहीं है, बल्कि वे परिवारों और भावी पीढ़ियों के निर्माण में अतुलनीय योगदान देती हैं। न्यायालय ने कहा कि घर का प्रबंधन करने वाली महिलाओं को केवल गृहिणी कहकर संबोधित नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि ये शब्द समाज में उनके योगदान को कम आंकता है। न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि देखभाल और घर के प्रबंधन सहित घरेलू काम का अत्यंत महत्वपूर्ण है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने आज भगोड़े वेंकट गर्ग को जॉर्जिया से भारत वापस लाने में सफलता हासिल की है। ये कार्रवाई विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय और हरियाणा पुलिस के सहयोग से की गई। सीबीआई के अनुसार वेंकट गर्ग एक कुख्यात गैंगस्टर है और हरियाणा पुलिस द्वारा दर्ज हत्या, रंगदारी, सुनियोजित अपराध तथा अवैध हथियारों के इस्तेमाल से जुड़े कई मामलों में वांछित था। जांच एजेंसी ने बताया कि आरोपी को जांच के दौरान गिरफ्तार किया गया था, लेकिन जमानत मिलने के बाद वह फरार हो गया और देश छोड़कर भाग गया। सीबीआई ने कहा कि हरियाणा पुलिस और राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो के अनुरोध पर इंटरपोल के माध्यम से आरोपी के खिलाफ रेड नोटिस जारी किया गया था। इसके बाद हरियाणा पुलिस की एक टीम जॉर्जिया गई, जहां आरोपी को औपचारिक रूप से पुलिस के हवाले कर दिया गया। भारत ने ओमान तट पर जहाज एमटी सेटेबोलो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। इसमें 3 भारतीयों की मौत हो गई थी। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस संबंध में सरकार ने अमेरिका के प्रभारी राजदूत को तलब किया और कड़ा विरोध दर्ज किया।
2: हम अपनी नाविकों के कल्याण और सुरक्षा को बहुत महत्व देते हैं। क्षेत्र में जहाजों पर लगातार हो रहे हमले बेहद चिंता जनक है। ये हमले तुरंत बंद होने चाहिए। हम संवाद और कूटनीति का भी आह्वान करते हैं ताकि क्षेत्र में जल्द से जल्द शांति और स्थिरता बहाल हो सके।
1: नाविक कल्याण कोष समिति को प्रत्येक मृतक नाविक के परिवार को 10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने का निर्देश दिया गया है। इस बीच पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि अधिकारियों को एमटी सेटेबोलो से 21 बचे भारतीयों की जल्द वापसी और मृत नाविकों के शवों को शीघ्र स्वदेश लाने के निर्देश दिए गए हैं। देश आज महान क्रांतिकारी और काकोरी कांड के नायक पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की जयंती मना रहा है। इस अवसर पर दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। श्रीमती गुप्ता ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि बिस्मिल का बलिदान और राष्ट्रभक्ति का संदेश हर पीढ़ी को सदैव राष्ट्र सेवा के लिए प्रेरित करेगा। दिल्ली सरकार के मंत्री परवेश साहिब सिंह और आशीष सूद ने भी राम प्रसाद बिस्मिल को नमन किया। दिल्ली में दोपहर में गर्मी का कहर जारी है। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 38.7 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने कल हल्के बादल छाए रहने तथा हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना व्यक्त की है। अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में नीति आयोग की शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी हिस्सा लिया। दिल्ली सरकार 18 से 20 जून तक जन कल्याण शिविरों का आयोजन करेगी। उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने राजधानी में वर्षा जल संचयन की तैयारियों की समीक्षा की। शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कोचिंग संस्थानों के सुचारू संचालन के लिए उच्च स्तरीय समन्वय बैठक की और संस्कृति मंत्रालय ने संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप, अकादमी रत्न और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार तथा उस्ताद बिस्मिल्ला खान युवा पुरस्कारों की घोषणा की। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810

0: किलो हर्ट्स पर। आइए अब सुनते हैं विशेष कार्यक्रम।
1: विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में भारत दुनिया का एक बड़ा पावर हाउस बन चुका है, जो अब सिर्फ विदेशी तकनीक का इस्तेमाल नहीं करता बल्कि खुद नई तकनीकें बना रहा है। अंतरिक्ष और रॉकेट तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप टेक, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, बायोटेक और क्लीन एनर्जी, रिसर्च और पेटेंट में तो भारत तीव्र गति से अग्रसर है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने विज्ञान और नवाचार को स्थानीय समस्याओं के समाधान से जोड़ने के लिए जय अनुसंधान का नारा दिया और अब ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत का 38वां स्थान है। आज के हमारे इस विशेष कार्यक्रम में सुनिए ये प्रेरक भेंट वार्ता। वर्तमान में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर में केमिकल इंजीनियरिंग के एक प्रतिष्ठित प्रोफेसर, भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग यानी DST के पूर्व सचिव, भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी INSA के पूर्व अध्यक्ष, पद्मश्री 2025 से सम्मानित प्रोफेसर आशुतोष शर्मा से भेंट कर रही हैं दीपशिखा गुप्ता।
2: नमस्कार श्रोताओं, प्रोफेसर शर्मा का परिचय आप सबको दे दूं। आप IIT कानपुर से BTech करने के उपरांत पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी से आपने MTech किया केमिकल इंजीनियरिंग में। इसके पश्चात बफेलो यूनिवर्सिटी से आपने PhD किया। साइंस के क्षेत्र में अपना उत्कृष्ट योगदान देते हुए आपने नैनो साइंसेज, कोलाइड्स आदि के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया। आपको शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, यूनेस्को पदक आदि के साथ साथ 2025 में भारत सरकार ने भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से भी सम्मानित किया। ये तो हुआ डॉक्टर आशुतोष शर्मा जी का परिचय, लेकिन आज उनके बारे में और जानेंगे, उनकी कहानी, उनकी जुबानी। तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है प्रोफेसर शर्मा आपका हमारे इस कार्यक्रम में।
3: बहुत बहुत धन्यवाद फॉर हैविंग मी हियर दीपशिखा जी।
2: प्रोफेसर शर्मा, सबसे पहले हम चाहेंगे कि आप अपनी जर्नी के बारे में हमारे श्रोताओं को कुछ बताएं, कैसे शुरू हुई आपकी ये जर्नी साइंस के क्षेत्र में।
3: तो साइंस में मेरा शुरू से इंटरेस्ट था, स्कूल डेज से साइंस में, मतलब साइंस की फिलॉसफी में बहुत इंटरेस्ट था मुझे उस वक्त से। मैं इनफैक्ट साइंस सब्जेक्ट मैंने लिए थे, 11th में मैं बोर्ड का टॉपर था। तो उस वक्त लोग कहते थे कि IAS बनना चाहिए वगैरह वगैरह, लेकिन मेरा इंटरेस्ट सिर्फ साइंस में था और मेरा इंटरेस्ट था रिसर्च और टीचिंग में। तो मैंने कहा कि मुझे टीचर बनना है। तो पहला मैं सोचता था कि फिलॉसफी करूंगा, तो लोगों ने कहा कि अगर फिलॉसफी करोगे तो टीचर बनोगे। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, इंजीनियरिंग करके बन जाएंगे टीचर, डजंट मैटर। ये नहीं है कि साइंस में कुछ बहुत एक्सेप्शनल चीज है, हम जो भी चीज जिसमें हमारी रुचि हो उस पे पूरा ध्यान देके थोड़ा उसमें अपना पूरी तरह से कर्तव्य की तरह उसको करेंगे तो निसंदेह हमें सफलता मिलेगी और हम खुश भी रहेंगे। तो साइंस में जैसा मैंने बताया लगाव था, क्योंकि मुझे नए शोध में इंटरेस्ट आता है और उस वक्त मुझे ये नहीं पता था कि और चीजों में भी बहुत ज्यादा शोध होता है, मतलब नई चीजें सीखने की, नई चीजें खोजने की जितनी संभावना है मुझे साइंस में दिखी उस वक्त मुझे उतनी नहीं दिख रही थी और चीजों में, तो इसलिए मैंने साइंस किया। और साइंस में भी मेरा ज्यादा इंटरेस्ट खाली एक चीज को समझने में नहीं है, मैं चाहता हूँ कि बहुत सारी चीजों को समझ सके साथ साथ में। तो जैसा कि मैंने BTech, MS और PhD केमिकल इंजीनियरिंग में किया, लेकिन उसके बाद मैंने बहुत तरह तरह की चीजें की। तो लोग सोचते थे कि मैं फिजिकल केमिस्ट हूँ, कुछ लोग सोचते थे मैं कि कंडेंस मैटर फिजिसिस्ट हूँ, कुछ लोग सोचते थे कि मैं मेटेरियल साइंटिस्ट हूँ। इनफैक्ट इन द टॉप साइंटिस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड कंट्री मैं मेटेरियल साइंस के अंतर्गत ही लिखा हुआ है मेरा नाम। तो जैसे कि पूरे देश के अंदर मैं 15वां साइंटिस्ट हूँ, 15वें नंबर पे हूँ मेटेरियल साइंस के अंदर। तो ये मैंने वहीं से देखा, मैंने उनको नहीं बोला कि मैं मेटेरियल साइंटिस्ट हूँ, पर उन्होंने मतलब कुछ भी समझ के अपना वो उसमें किया। ऐसे बायोमेडिकल साइंस में कार्य किया, नैनो टेक्नोलॉजी में कार्य किया, और मैंने कुछ सोशल साइंस और ह्यूमैनिटीज में भी रिसर्च किया। तो इस तरह से जहां भी आपको क्यूरियोसिटी हो, जहां भी आपको लगता हो कि ये नई चीज है, उसमें आपकी रुचि हो, तो आप उसमें कार्य कर सकते हैं। वैसे भी आजकल जो साइंस है वो बहुत इंटरडिसिप्लिनरी और मल्टी डिसिप्लिनरी हो गया है। पहले जो हुआ करता था कि भाई एक ही, जैसे आप केमिस्ट हैं, फिर कहते किस तरह के केमिस्ट हैं, ऑर्गेनिक हैं, इनऑर्गेनिक हैं, फिजिकल हैं, ग्रीन हैं, रेड हैं, क्या हैं, तो उसमें ही हम सिमट कर जाते थे। पर अब ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारा जो उद्देश्य है शिक्षा का और जो मतलब कार्य करने का, उसका उद्देश्य क्या है, उसका उद्देश्य है प्रॉब्लम को सॉल्व करना। उसका उद्देश्य नहीं है कि मैं कौन हूँ। तो अगर मान लो मैं फिजिकल केमिस्ट हूँ लेकिन मैं पानी साफ नहीं कर सकता, तो मेरा कोई उपयोग नहीं है। तो अगर हो सकता है कि कुछ चीजें मैं जानता हूँ कि पानी को कैसे साफ किया जाए, लेकिन मैं सब चीज नहीं जानता पानी को कैसे साफ किया जाए। तो कुछ इसमें आएगा फिजिक्स का, इसमें आएगा बायोलॉजी का, कुछ इंजीनियरिंग आएगी, कुछ इनफैक्ट सोशल साइंस आएगी। क्योंकि जस्ट बिकॉज मैंने एक सोल्यूशन खोज लिया पानी को साफ करने का, इसका मतलब ये नहीं कि वो कार्य में आएगा। उसकी इकोनॉमिक्स देखनी पड़ेगी,

की मैन्युफैक्चरिंग देनी पड़ेगी, उसका मार्केट देखना पड़ेगा, उसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट देखना पड़ेगा, उसकी एक्सेप्टेबिलिटी सोसाइटी में क्या है वो देखना पड़ेगा, उसका डिजाइन देखना पड़ेगा, उसकी एस्थेटिक्स देखनी पड़ेगी, उसकी सोशियोलॉजिकल साइकोलॉजिकल एंगल देखना पड़ेगा। तो ये सब जब तक नहीं होगा हम प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। खाली ये कहना कि बस मेरा इंटरेस्ट इसके अंदर ही है तो उससे मतलब की शिक्षा पूरी नहीं हो पाती। इसलिए मैं ये बता रहा हूँ कि मेरा क्या अनुभव रहा। मेरा अनुभव ये रहा कि चाहे आप उसको फिलोसॉफी कहें या हिस्ट्री कहें, मुझे उसमें इंटरेस्ट है, उसके सीखने के अंदर इंटरेस्ट है और मैं जो भी कार्य करता हूँ उसको भी प्रभावित करता है। अगर मैंने कहीं बाहर से सीखा तो वो जो चीज है जो उस क्षेत्र में अभी तक लोगों को पता नहीं है, बाहर वालों को पता है, उस क्षेत्र में पता नहीं है, तो मैं उसको नया कोई आइडिया बाहर से लेके आऊं तो उसमें उससे ज्यादा मतलब अच्छे शोध होता है, उससे अच्छा प्रॉब्लम सॉल्व होता है। तो मैंने हरदम यही किया है। तो मैं हरदम डाइवर्सिटी, विविधता जिसको कहते हैं, तो चाहे वो ज्ञान में हो विविधता, चाहे वो हमारी नॉलेज में हो, चाहे वो हमारे आसपास किसी ऑर्गेनाइजेशन में हो, चाहे वो विविधता जेंडर की हो, वेमेन मैन सभी को मिलके जो प्रॉब्लम डिफाइन और सॉल्व करनी पड़ेगी, चाहे वो एज की हो। तो ये है कि जैसे कमेटी के अंदर क्या ये क्यों है कि सिर्फ 50 साल के ऊपर लोग ही होते हैं कोई भी कमेटी के अंदर। मैं जब डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में था तो मैंने इसके लिए रूल बना दिए थे कि हर कमेटी के अंदर कम उम्र के भी हो, ज्यादा उम्र के भी हो, जेंडर भी हो उसके अंदर, जो वेमेन साइंटिस्ट है वो भी हो, मैन भी हो, और मतलब की जो दूसरे मतलब रीजन के हैं जिनकी डिफरेंट सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड है वो सभी हो। तो उसका ये कारण है कि हमारी बहुत सारी जो समस्याएं हैं वो एक तरह के लोग ही नहीं समझ सकते, उसके लिए डिफरेंट पर्सपेक्टिव चाहिए। तो डिफरेंट पर्सपेक्टिव कब आएंगे, जब हमें थोड़ा टॉलरेंस हो और लोगों के लिए, न केवल ये कहें अरे इसको क्या आता है, ये तो बहुत यंग है, इसको क्या पता है। वो कहते हैं इस तरह के जो हमारे पूर्वाग्रह होते हैं जिनको स्टीरियोटाइपिंग बोलते हैं, उसके कारण हम एफिशिएंटली काम नहीं कर पाते। तो मेरा लाइफ का लेसन शुरू से ही रहा कि विविधता, अब उसका कैसे डेवलप हुआ। मेरे पिताजी जो थे वो इरिगेशन में इंजीनियर थे, वो थोड़े ज्यादा ही ऑनेस्ट थे, तो उनका ट्रांसफर हर साल में हो जाता था। तो मैंने मतलब 11वीं क्लास करने तक करीब 8 स्कूल चेंज किए, तो कभी इधर पढ़े कभी उधर पढ़े, कभी हिंदी में पढ़े कभी इंग्लिश में पढ़े, कभी सेंट्रल बोर्ड में पढ़े कभी राजस्थान बोर्ड में पढ़े। हर साल नए दोस्त होते थे, कभी कोएड था कभी नहीं था, नए टीचर होते थे, उनकी पढ़ाने की शैली अलग अलग थी सबकी। तो लेकिन उससे मुझे कभी परेशानी नहीं हुई। कहने का मतलब यह है कि उससे विविधता का मतलब समझ में आया कि बजाय ये कहने के कि नहीं नहीं मुझे एक ही तरह की चीज पसंद है, एक ही तरह का खाना पसंद है, एक ही रेस्टोरेंट पसंद है। आजकल क्या मैं देख रहा हूँ कई जगह कि हमारे स्कूल के सारे फ्रेंड हैं, 5 फ्रेंड हैं, 12वीं क्लास तक साथ साथ रहे, फिर वो कॉलेज भी साथ साथ चले गए, और उसके बाद ठीक है अलग अलग जगह चले गए, लेकिन जो फॉर्मेटिव ईयर्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है विविधता को समझने के लिए। तो उसमें क्या होता है कि अब जो लोग हमारे जैसे नहीं है उनसे बात नहीं करेंगे तो हमें कोई नई चीज सीखने को नहीं मिल सकती। तो जो लोग 17 साल साथ साथ रहे उन्होंने एक दूसरे से सीखना बंद कर दिया, क्योंकि वो सब लोग एक दूसरे की तरह ही थे, उनकी एज भी बराबर थी। अच्छा, मैंने ये भी देखा जिनकी एज बहुत अलग हो हमसे, उनसे अच्छा संवाद स्थापित नहीं कर पाते। मैं 3 साल अपने नाना के साथ रहा तो वहां पर वो 60 साल के ऊपर लोग रहते थे सारे, और मैं था 6 साल का, तो मेरे को उनसे बहुत कंफर्ट था। तो मेरे को कभी ऐसा नहीं लगा ये तो बुढ़ा आदमी ऐसे कैसे बात करेंगे। अभी जो मेरे दोस्त हैं वो 5 साल से लेके 95 साल तक के हैं, ओके, उन्हीं से मुझे को सीखने को मिलता है। और खासकर पीपल 20s में है, 30s में, 40s में, माय यंगर फ्रेंड्स, उनसे मुझे साइंस भी सीखने को मिलती है। अब AI है, क्या हो रहा है दुनिया के अंदर, क्वांटम टेक्नोलॉजी हो रही है, कुछ भी है, तो मैं हरदम उतना जानता हूँ जितना हमारे यंगर लोग जानते हैं। और मैं उनसे भी कहता हूँ कि भाई देखो, आजकल लोग बहुत ये कहते हैं कि मैं जेन जी हूँ, मैं जेन अल्फा हूँ, मैं मिलीनियल हूँ, मैं बेबी बूमर हूँ, आप बेबी बूमर हैं, ऐसा लोग कहते हैं। ये मुझे कभी समझ में नहीं आया। तो मैं ये कहता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है, ये बना लिया है, मतलब उस जैसा कि ऐसे है कि लोग सोचते हैं कि ये बुढ़ा आदमी है। मैं कहा ऐसा है कि ओल्ड आदमी कोई नहीं होता इस दुनिया के अंदर। आई एम यंग एंड यू आर यंगर, और भी लोग हैं जो मुझसे, वो यंग है मैं यंगर हूँ और मेरे से यंगर है। तो विविधता को समझने का मतलब ये है कि हम उनका स्टीरियोटाइप नहीं बना लें। तो अगर ये हम समझ लेंगे ये आदमी बहुत यंग है, ये बुढ़ा है, ये औरत है, ये आदमी है, तो उनसे जो हम रिलेशनशिप बना सकते हैं वो नहीं बना पाएंगे। तो उसमें हमारा जो संवाद है वो इतना अच्छा नहीं हो पाएगा जितना हो सकता है। तो ये सबसे गहन जो चीज मैंने दुनिया में देखी है, समझी है, सोची है, वो सिर्फ यही है कि चाहे साइंस हो, किसी भी चीज में इंटरेस्ट हो, लेकिन हमें डाइवर्सिटी, विविधता जब हम समझेंगे, उसको एंजॉय करेंगे, उसके द्वारा एक्साइटमेंट होगा, उसके द्वारा प्रॉब्लम सॉल्व होगी, तो ये सबसे अहम बात है सोसाइटी में। हमारी जो कल्चरल रिचनेस है, भारत में हरदम ऐसा ही था कि हमारी कल्चरल रिचनेस डाइवर्सिटी से आई, जबकि बहुत सारे वेस्टर्न कंट्रीज थे वो मोनोलिथ बनना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि यही स्टैंडर्ड है, ऐसा ही रंग हो, ऐसा ही मतलब की परिपाटी हो, यही कल्चर हो, इसी भगवान को माने, इसी बुक में विश्वास करें। तो वो सभ्यता अलग है। हमारी जो सभ्यता थी वो
सभ्यता बहुत

0: स्टेबल है, क्योंकि डाइवर्सिटी के द्वारा स्टेबिलिटी आती है, और जो एक दूसरे की मतलब नकल की हुई सोसाइटी होती है उसमें स्टेबिलिटी नहीं होती कभी, चाहे वो कितनी भी डेवलप्ड हो, जब कोई नया चैलेंज आएगा वो कॉलेप्स हो जाएगी। डाइवर्सिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट।
1: बिल्कुल ठीक कहा प्रोफेसर शर्मा आपने कि डाइवर्सिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। और आगे बढ़ते हुए कार्यक्रम में हम चाहेंगे कि नैनो साइंस नैनो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आपने बड़ा ही उल्लेखनीय कार्य किया, तो सामान्य भाषा में हमारे उन

0: एक मीटर लें, नैनोमीटर, एक मीटर लें उसका एक बिलियन टाइम स्मॉलर, छोटा उससे एक बिलियन टाइम स्मॉलर जो चीज होगी उसको हम बोलेंगे नैनोमीटर। तो कई चीजें जो छोटे छोटे कण होते हैं, छोटी छोटी चीजें, इनको देखा नहीं जा सकता, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी द्वारा उसको देखते हैं, वो नैनो होती है। अगर उनके बिहेवियर और प्रॉपर्टी समझें उसको नैनो साइंस बोलते हैं, और उसका उपयोग करें किसी चीज के लिए, जैसे कि आजकल हम नैनो ट्रांजिस्टर बना रहे हैं, जो है चिप्स बनती हैं, इस सब के अंदर बहुत छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का उपयोग होता है, तो वो नैनो टेक्नोलॉजी द्वारा बनाए जाते हैं। तो किसी भी नैनो जो मीटर की चीजें हैं, नैनोमीटर हो, 10 नैनोमीटर हो, 100 नैनोमीटर हो, छोटी छोटी जो चीजें हैं उनको कैसे समझें कि वो क्या कार्य करती हैं, उनको कैसे उपयोग में लाएं, तो ये सब नैनो साइंस और नैनो टेक्नोलॉजी द्वारा संभव होता है। मेरी खुद की रिसर्च जो नैनो साइंस और टेक्नोलॉजी में थी उससे रिलेटेड है, नैनो फैब्रिकेशन, नैनो मैन्युफैक्चरिंग के द्वारा। आप कोई छोटी चीज बनानी है तो उसको कैसे बनाएंगे, वो तो आप देख भी नहीं सकते, आपको कोई मशीन ड्रिल लेके नहीं बना सकते, तो उसके लिए वो नैनो ड्रिल क्या चीज है, उसमें कोई भी आपको कोई छोटी चीज बनानी हो, उसको बनाने के दो तरह से बनाए जाते हैं, या तो उसके अंदर आप कोई मशीन टूल यूज करें, या चाहे लेजर वेजर यूज करें, कुछ रेडिएशन यूज करें उसके द्वारा बनाएं। एक दूसरा मेथड है बनाने का, उसको बोलते हैं सेल्फ असेंबली। जैसे कि आपने देखा कि नेचर के अंदर, हमारे नेचर के अंदर वृक्ष हो, कुछ भी चीज है, तो उसको कोई बना नहीं रहा, वो अपने आप बन रही है, और उसमें भी बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, सेल हैं, सेल के अंदर भी चीजें हैं और भी छोटी हैं नैनो स्केल की, उनको मतलब कोई मशीन के द्वारा नहीं बन रही, अपने आप बन रही हैं, उसको कहते हैं सेल्फ असेंबली। तो सेल्फ असेंबली जिसके अंदर नॉलेज भी हो, जैसे डीएनए है उसके अंदर नॉलेज है कि वो सेल्फ असेंबल कैसे होगा, तो हम इस तरह के नए मेथड बनाए। तो मैं सेल्फ असेंबली में कार्य करता था, तो ये चीज है कि हमने बहुत सारे कुछ चीज बनाई लेकिन वो सेल्फ असेंबल होके कोई दूसरी चीज बन गई जो हम बनाना चाहते हैं लेकिन बिना किसी मशीन को यूज किए। तो इस पे कार्य किया था, मेरे ज्यादातर कार्य इस पे है, और ये समझना कि जब चीजें बहुत छोटी होती हैं तो वो किस तरह का बर्ताव करती हैं, वो किस तरह का बिहेवियर उनका होता है, किस तरह की उनकी प्रॉपर्टी होती है, ये समझना, इसकी जो थ्योरीज होती हैं उस पे मैंने कार्य किया था। और फाइनली मैंने कार्य किया बायोसेंसर नैनो टेक्नोलॉजी बेस्ड बनाने के लिए। बायोसेंसर मतलब ऐसे कि बहुत अर्ली कैंसर डिटेक्शन, जब आपके पूरे बॉडी के अंदर 2-4 ही सेल हों कैंसर के, तो उनका पहले पता करना कि भाई इसकी संभावना है कैंसर होने की, इसके पहले कि वो बनना शुरू हो जाए, तो इसके लिए बहुत सेंसिटिव बायो सेंसर की जरूरत होती है। तो वो हमने बहुत तरह के बायो सेंसर बनाए नैनो टेक्नोलॉजी पे आधारित।
1: प्रोफेसर शर्मा, अभी बहुत अच्छी बातें आपने बताई अपने कार्य के बारे में, अपने क्षेत्र के बारे में जिस पर आपने रिसर्च किया, जिस पर आपने कार्य किया, लेकिन कार्यक्रम में अभी समय हो चला है एक गीत का, तो हम चाहेंगे कि अपनी पसंद का कोई एक गीत आज आप बताएं जो हम अपने श्रोताओं को सुनवाएंगे।
0: हाँ, एक मेरा गीत था, बहुत प्रिय था, जब मैं 4th कक्षा में था, तो वो था, एक मूवी थी अनोखी रात, मैंने देखी।

0: नदी के जल में।
1: इस खूबसूरत से गीत को सुनने के बाद एक बार फिर से लौट आए हैं अपने कार्यक्रम में, जहां आज हम बात कर रहे हैं प्रोफेसर आशुतोष शर्मा जी से, जिन्हें 2025 में भारत सरकार ने उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया। साइंस के एक क्षेत्र में इन्होंने उल्लेखनीय कार्य किया है। और आगे बढ़ते हुए प्रोफेसर शर्मा, हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आपने डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी बतौर सेक्रेटरी एक लंबे समय तक कार्य किया और कई सारी पॉलिसीज के भी आप मेकर रहे वहां पर, तो आपको क्या लगता है जो करंट पॉलिसीज हैं इस समय भारत में, वो विज्ञान के प्रसार और प्रचार में कहाँ तक सहायक हैं?
0: बेशक बहुत सहायक हैं। मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूँ। जैसे कि आजकल नई टेक्नोलॉजी आ रही है, तो हमारे देश को इसके लिए पूरी तरह प्रिपेयर रहना पड़ेगा, क्योंकि अब बहुत तेजी से बदल रहा है, समय बदल रहा है, देश बदल रहे हैं, टेक्नोलॉजी बदल रही है, समाज बदल रहा है। तो जैसे कि मैं शुरू करता हूँ, मैंने 2015 में डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ज्वाइन किया था, 2015 की जनवरी में। उसके बाद सुपर कंप्यूटिंग मिशन शुरू हुआ, जो करीब 4,000 करोड़ रुपए का था। तो उसके द्वारा हमने बहुत सारी सुपर कंप्यूटर की चीजें भारत में ही बनाना शुरू की, और उसका लक्ष्य है कि करीब 50 सुपर कंप्यूटर भारत के अंदर विकसित करके उनको एस्टेब्लिश करना। उनमें से 20 से ज्यादा हो भी चुके हैं और अभी कार्य चल रहा है। तो ये एक उदाहरण है कि कैसे टेक्नोलॉजी क्षेत्र में हम प्रिपेयर्ड रहे, कैसे फ्यूचर के लिए प्रिपेयर्ड रहे। दूसरा था मिशन, जो कि बहुत अहम था, करीब 6 साल पहले लॉन्च हुआ, मिशन ऑन साइबर फिजिकल सिस्टम्स, बेसिकली AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नाम दूसरा है उसका, क्योंकि साइबर फिजिकल का मतलब है कि साइबर लाइक AI और फिजिकल लाइक फिजिकल मशीन, उन दोनों के संगम से जो चीज बनती है, मतलब इंटेलिजेंट मशीन, उसके लिए मिशन शुरू किया, वो भी 4,000 करोड़ रुपए का। अब उसको 6 साल हो गए।

0: तो ये जो AI अभी शुरू हुई है, तो हमने शुरू से मतलब 8 साल पहले ही इसके बारे में सोचना शुरू कर दिया था कि ये हो जाएगी, तो कि हमें इसमें समय नहीं गंवाना पड़ा। पिछले 6 साल के अंदर उसके लिए बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर, ह्यूमन रिसोर्सेज वगैरह इस मिशन के द्वारा डेवलप हो गए। अब वो आगे बढ़ेंगे, मतलब AI तो बढ़ती रहेगी, चलती रहेगी, उसका कभी अंत नहीं होगा। तो हमने उसके लिए जो फाउंडेशन, जो नींव थी, उसकी शुरुआत कर दी। इसी तरह से तीसरा मिशन शुरू हो गया, वो है क्वांटम टेक्नोलॉजीज का। वो बहुत तेज से उभर के आ रही है, तो उसके लिए भी बहुत कार्य किया गया था पहले, और अब वो है करीब 6,000 करोड़ रुपए का। तो उसके द्वारा जैसे कि क्वांटम कंप्यूटिंग है, क्वांटम कम्युनिकेशन है, मतलब सिक्योर कम्युनिकेशन, और ये जो सारे अपने बैंकिंग वगैरह होती है उनको बहुत चैलेंज हो जाएगा अगर उनके कोड है जो टूटने लग गए फॉर एग्जांपल, तो सिक्योरिटी खत्म हो जाएगी। तो ये सब जो दिशाएं हैं, ये सारी जो टेक्नोलॉजी मिशन के द्वारा डेवलप की जा रही है, वो सब फ्यूचरिस्टिक है, तो जिससे कि देश प्रिपेयर्ड रहे उसके लिए। उसके साथ साथ ही अभी एक बहुत अच्छा कदम लिया गया है, वो है 1,00,000 करोड़ का एक फंड बनाया है, जिसको RDI फंड बोलते हैं, रिसर्च डेवलपमेंट इनोवेशन फंड। वो क्या होगा कि इंडस्ट्री जो है वहां पे रिसर्च हो उसको सपोर्ट करने के लिए बनाया गया है। तो अभी तक हम सोचते थे सिर्फ यूनिवर्सिटी IIT में रिसर्च होगी, लेकिन इंडस्ट्री में जो रिसर्च होती है वो बहुत उपयोगी होती है, तो उसको भी आगे बढ़ावा मिलना जरूरी है, क्योंकि इसके द्वारा नए प्रोडक्ट आएंगे, उसके द्वारा हम कॉम्पिटेटिव रहेंगे वर्ल्ड के अंदर। तो अब है जो 20,000 करोड़ रुपए पर साल 5 साल के लिए गवर्नमेंट ने ये फंड बनाया है, उसके द्वारा मुझे लगता है कि इससे बहुत परिवर्तन आएंगे। तो इस तरह बहुत सारे मतलब कार्य हो रहे हैं, काफी मंत्रालय हैं जो कि साइंस और टेक्नोलॉजी में कार्य करते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं, उनका बजट भी बढ़ता जा रहा है, हमारे साइंटिस्ट भी पहले से काफी ज्यादा एम्पावर्ड हो गए हैं और उनकी संख्या भी बढ़ गई है। मैं आपको बताता हूँ, जब मैंने यहाँ ज्वाइन किया IIT कानपुर में 1990 में असिस्टेंट प्रोफेसर के बतौर, तब हमारे डिपार्टमेंट में सिर्फ 6 PhD स्टूडेंट थे और फैकल्टी मेंबर 20 थे। फैकल्टी मेंबर 30 हो गए, लेकिन PhD स्टूडेंट 100 के ऊपर, मतलब कि रिसर्च का जो महत्व है वो बढ़ता गया। पहले रिसर्च का महत्व बहुत कम था, तो 90 के दशक के अंदर कुछ नहीं हो रहा था, न रिसर्च के लिए पैसा था, न कल्चर थी, कुछ भी नहीं था, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। उसके बाद ये बढ़ता गया, तो अब ये बढ़ता जा रहा है बहुत तेजी से, और बढ़ना जरूरी भी है, क्योंकि कोई भी देश, कोई भी समाज ऐसा नहीं है जिसने बिना साइंस और टेक्नोलॉजी के विकसित हुआ हो। तो ये हमको अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि बिना साइंस टेक्नोलॉजी के कुछ भी विकास संभव नहीं है, और है जो हम वापस कॉलोनियल टाइम हो जाएगा अगर मानव पीछे छूट गए तो।
1: जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। और प्रोफेसर शर्मा, लंबे समय तक IIT कानपुर में आपने अध्यापन कार्य भी किया, बहुत सारे बच्चों के आप रोल मॉडल भी रहे, केमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में कई सारे बच्चों को आपने गाइड किया, तो हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आपके आइडियल कौन थे जब आप पढ़ाई कर रहे थे?
0: देखिए, मेरा कोई एक आइडियल कभी नहीं रहा, क्योंकि मैं हीरो वर्शिप में कभी भी विश्वास नहीं किया, लेकिन हर आदमी गुरु है। तो कहने का मतलब ये है कि किसी से ज्यादा सीखा, किसी से कम सीखा, किसी से नहीं सीखा, लेकिन आपको ये नहीं सोचना चाहिए मुझे ऐसा बनना है, आपको अपना बनना है, द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ। ओके, एंड सो हर आदमी की कैपेबिलिटी अलग होती है, हर आदमी की एस्पिरेशन और इंस्पिरेशन अलग अलग होते हैं, तो आप किसी की नकल नहीं कर सकते। अच्छा क्या है, मैंने प्रॉब्लम ये मेजर देखी है, सब लोग कहते हैं गांधी जी की बड़ाई करते हैं, लेकिन कर कोई नहीं सकता, तो उससे क्या होता है कि हमारे अंदर एक तरह का स्प्लिट पर्सनैलिटी हो जाता है, क्योंकि मैं कहता तो हूं कि ये चीज बढ़िया है, इसका मुझे अनुकरण करना है, लेकिन कर नहीं सकता, प्रैक्टिकल नहीं है। तो क्या होता है कि थ्योरी एक हो जाती है और प्रैक्टिकलिटी और एक्सपीरियंस एक हो जाता है, तो कथनी और करनी में फर्क नहीं होना चाहिए, ये मेरा मानना है। हालांकि बचपन में मेरे कुछ हीरो थे, और मेरा सबसे बड़ा हीरो था रुद्र, महाभारत में है रुद्र। तो मेरे हीरो, जैसे लोग सोचते हैं कि भाई अर्जुन होगा, शिव होंगे, या कि कृष्ण होंगे, या कुछ उस तरह के ज्यादा होते हैं, राइट, लेकिन वो बहुत अलग तरह के करेक्टर थे रुद्र। उनका नाम शायद सुना हो, नहीं भी सुना हो, प्रोटो शिवा। तो जैसे कि शिव का नाम ऋग्वेद में नहीं आता, रुद्र का नाम आता है खाली। तो ऐसे है कि बट दोज आर मिथिकल हीरोज। तो रियल सी व्हाट हैपेंस इज दिस, इन रियल लाइफ आप किसी को हीरो बनाते हैं, उसको पेडेस्टल पे बिठा देते हैं, उसके बाद कहते हैं कि ये तो कितना बदमाश है, देखो ये तो हमारी ही लिव अप टू आवर आइडियल्स। तो पहले आपने उसको हीरो बनाया, फिर अपने आइडियल उस पर थोप दिए, फिर कहा कि ये आदमी हमारे हिसाब से खरा नहीं उतरता, और न आप उसका अनुसरण कर पाए, न वो आपका अनुसरण कर पाया। मेरा मानना यह है कि देखिए, आपको अच्छी चीजें, इफेक्टिव चीजें बहुत सारे सोर्सेस से सीखने को मिलती हैं, और वो सब इम्पोर्टेंट सोर्स हैं, वो सब हमारे हीरो हैं। तो अगर मान लो कि ये रिक्शा वाला है, मैंने देखा कई रिक्शे वालों को, तो एक बार मैंने देखा, मेरे को बचपन की बात है, बचपन नहीं, मैं बीटेक कर रहा था, मैं गया था सिटी, मैंने देखा एक रिक्शे वाला बहुत तेज धूप के अंदर, बहुत गर्मी के अंदर, ऐसे एक हैंडल पे सिर लगा के और पांव गद्दी पे रख के सो रहा था। मैं कहा देखो, दिस मैन इज सो सेटिस्फाइड विद हिज लाइफ। फिर मैंने ये इस पर जाया, रिसर्च किया कि हैप्पीनेस का क्या मतलब है लाइफ के अंदर। हम सब ये सोच रहे हैं कि हैप्पीनेस के लिए हम ये करेंगे तो हैप्पीनेस हो जाएगी, पर हम गलत सोच रहे हैं। तो अच्छा, अभी मैं बताऊं आपको, एक

0: कॉन्फ्रेंस में गया दिल्ली में, उन्होंने बुलाया, वो कॉन्फ्रेंस ही हैप्पीनेस पे थी। तो सब लोग अपने अपने विद्वान लोग विचार प्रकट कर रहे थे हैप्पीनेस के बारे में। तो कोई प्रोफेसर था, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट था, कुछ पेज थी, सेलिब्रिटी थे, कोई था, ये सब है ना। वो बहुत गंभीर बातें कर रहे थे हैप्पीनेस के बारे में। तो मेरा नंबर आया, तीसरा नंबर, तो मैंने कहा भैया ऐसा है कि पहले आप सब लोग खुश हो जाओ, फिर बात करना हैप्पीनेस की। आई सी वेरी सीरियस पीपल हेयर। मैंने कहा यहाँ पे कोई चीयरफुल तो दिख ही नहीं रहा मुझे, ये ऐसा अपनी लंबी चौड़ी बात कर रहे हैं कि हैप्पीनेस का क्या मतलब है। मैंने कहा पहले आप हैप्पीनेस सोचो। फिर मैंने कहा कि देखिए अभी मैंने उनको दो चार जोक सुनाए तो उन सबको पसंद आए। तो मैंने कहा देखिए अब मैं जा रहा हूँ अपनी हैप्पीनेस के लिए, आई हैव टू मीट माय फ्रेंड्स नाउ, आप अपनी कॉन्फ्रेंस करो और मैं अपने फ्रेंड्स के जाके बैठता हूँ। सी द प्रॉब्लम नाउ विद आवर नॉलेज इज वेरी बुकिश एंड देन इज रीइन्फोर्स्ड। सी अपनी बुक्स कहती है कि आप हीरो कौन होने चाहिए, तो वो बुक्स के अंदर लिखे हुए हैं कि ये है हीरो, वो है हीरो, बाकी लोग बढ़िया नहीं है। सो इससे किसी का आज तक पर्पस सॉल्व नहीं हुआ हीरो बनाने से। मैं तो मतलब कि जो बॉलीवुड के हीरो उनको नहीं जानता। अभी क्या हुआ कि मैं एक पार्टी में गया था, 10-11 लोग ही थे उसमें, एक्सक्लूसिव पार्टी थी। तो मैं एक आदमी मेरे बगल में खड़ा था, मैं उसे पूछा आप क्या करते हैं, तो बोला मैं सिंगर हूँ। अरे आई डिडंट रिकॉग्नाइज हिम, टर्न्ड आउट वो तो बॉलीवुड का बहुत बड़ा सिंगर है, उसको हर आदमी जानता है। अगर मैं आपको नाम बताऊंगा तो आप चौंक जाएंगे। तो वो बोला, तो मैं उसको पूछ रहा, मैं बोला कि कैसे सीख लिया आपने गाना। मैं उसे ऐसे ही गाता होगा मेरी तरह, और क्या है राइट। ऐसे न मैं क्रिकेटर्स को पहचानता हूँ, न मैं बॉलीवुड के लोगों को पहचानता हूँ, पुराने लोगों को पहचानता हूँ, जैसे हेमा मालिनी, नूतन वगैरह, ओके। लेकिन अब मेरे को इन हीरो हीरो में इंटरेस्ट नहीं है कुछ भी, ओके। आई वॉन्ट टू सी ए गुड मूवी, लेकिन मुझे हीरो वर्शिप में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो ऐसे बहुत फेमस क्रिकेटर है वो मेरे साथ खड़े थे, दूसरे एक बहुत फेमस सिंगर है वो मेरे साथ बैठी थी एक एयरपोर्ट पे, किसी को मैं पहचान नहीं पाया। दे वर ऑल्सो वेरी अम्यूज्ड, बोले ये सोचा एक आदमी मिला मुझे भारत में जो मुझे पहचानता नहीं है। ही वॉज वेरी इम्प्रेस, ये बॉलीवुड सिंगर। तो बोला उसने ना मेरे गले में हाथ डाला, बोला हमारी फोटो दोस्त से, बोला देखा प्रोफेसर है ना, उनको कुछ पता नहीं है, बढ़िया है। सो एनी वे वॉट आई एम ट्राइंग टू टेल मेरे सभी दोस्त जो सुन रहे हैं वहाँ पे, कि किसी को हीरो बनाना आपकी बहुत बड़ी गलती होगी। ये मैं बहुत सिंसियरली बोल रहा हूँ आपको, समझ के बोल रहा हूँ, मैं खाली ऐसे नहीं बोल रहा। तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप में अच्छे गुण नहीं होने चाहिए, इसका मतलब ये नहीं है कि आप में प्रतिभा नहीं होनी चाहिए, इसका मतलब ये नहीं है कि आप में इंस्पिरेशन नहीं आनी चाहिए। इंस्पिरेशन बहुत सारे सोर्सेज से आती है, और हम दिन में जितने लोगों से मिलते हैं वो सभी लोग हीरो हैं अपने अपने कार्य में, है ना। और उनसे हम कुछ समझ सकते हैं, उनसे हम कुछ सीख सकते हैं। अगर हमें पसंद आए, वो हमारे उपयुक्त हो, तो आप उसे ले लीजिए, और आप यू नो शुड बी थैंकफुल एंड ग्रेटफुल टू देम, दैट्स इट। बट यू शुड नेवर वर्शिप ए हीरो। जब आप हीरो को वर्शिप करते हैं तो आप उसको भी डिग्रेड करते हैं। अरे मैं आपको अभी फाइनल बात बताता हूँ। देखिए इतने सारे मैंने IAS देखे हैं, ये सब देखे हैं। अब क्या है, उनके पीछे लोग शुरू से भाग रहे हैं जब से वो 22 साल के हैं। तो आपने उनको डिग्रेड कर दिया। अब आप कहते हैं कि उनकी हीरो वर्शिप करके, चाहे आप मतलब दिल से करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन अपने उसके लिए कार्य करवाने के लिए या अपना जो भी करने के लिए ना, हर लोग जाके उनकी प्रशंसा करते हैं। तो उससे क्या होता है कि वो भी बहक जाते हैं, न केवल आप उन बहक रहे हैं बल्कि उनको ही बहका रहे हैं, और उसका कोई मतलब नहीं है। तो इससे कि यू नो लेट पीपल रिमेन ह्यूमन, लेट एवरीबॉडी रिमेन ह्यूमन, एंड न आप उनको हीरो बनाए न आप उनको विलन बनाए, है ना। आप समझें कि वो ह्यूमन है, और उनसे आप जो कुछ सीख सकते हैं, जो उनसे कार्य करवा सकते हैं, वो बेशक आप करवाइए।
1: बहुत अच्छी बात आपने बोली कि लेट पीपल रिमेन ह्यूमन और वी शुड बी द बेस्ट वर्जन ऑफ आवरसेल्फ। तो चलते चलते प्रोफेसर शर्मा, हम चाहेंगे कि विज्ञान के क्षेत्र में रुचि रखने वाले बहुत से लोग हैं जो इस समय हमें सुन रहे हैं, बहुत से छात्र हैं जो विज्ञान में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उन सभी के लिए कुछ एक संदेश हम चाहेंगे आज आप साझा करें।
0: देखिए जिज्ञासा जो है ना, क्यूरियोसिटी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है हर तरह के विज्ञान में। हर नॉलेज एक्चुअली विज्ञान है, तो हमने उसको अलग कर दिया। आजकल वो सोचते हैं कि एक विज्ञान है एक फिलोसॉफी है, ऐसे सोचते हैं लोग, वो गलत है बिल्कुल। हमारी सारी जो नॉलेज है वो विज्ञान है, और पहले उसको उसी तरह से लिया जाता था। हमारी संस्कृति में भी हर चीज को डिबेट करके रेशनली उसको डेटा के द्वारा, उसको एक्सपीरियंस के द्वारा ऐसे तोला जाता था, ऐसा स्टैटिक नॉलेज कोई नहीं थी। तो ये जो जिज्ञासा या क्यूरियोसिटी है टू लर्न मोर, वही सब कार्य करती है। पैशन, क्यूरियोसिटी कि भाई ये खाली मेरी जॉब नहीं है, ये खाली मेरी जॉब नहीं है, जॉब भी है, लेकिन उसके अलावा क्या मैं कि एक व्यक्ति के रूप में क्या मैं डेवलप हो सकता हूँ। तो मेरा दिमाग कैसे डेवलप होगा, मेरा दिमाग से उसे डेवलप होगा कि मेरे को नई नई चीजें सीखने को मिल रही है। नई चीज सीखने को तभी मिलेगी जब मुझको क्यूरियोसिटी होगी कि ये कैसे कार्य करता है, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मीनिंग है। एंड फाइनली द मीनिंग ऑफ लाइफ इज ऑल्सो साइंस, क्योंकि साइंस जो हम पढ़ते हैं वो कभी नहीं बताएगा कि इस लाइफ का मतलब क्या है। तो उसका मीनिंग ओनली वी ब्रिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैज नो मीनिंग, इज व्हाट यू नो मीनिंग दैट वी ब्रिंग टू लाइफ, ये दिस इज अ वेरी ह्यूमन थिंग। तो हाउ डू वी कल्टिवेट दैट, कि इसका क्या मतलब है, है ना, इसका क्या कॉन्टेक्स्ट है, इसका विजडम क्या है। तो ये सब करने के लिए हमें क्यूरियोसिटी की जरूरत है। और आपको अगर मैं ये कहना चाहूंगा कहूंगा कि एक चीज जो जिंदगी में इम्पोर्टेंट है

0: वो ये है पैशन, क्यूरियोसिटी, एक्साइटमेंट ऑफ लाइफ। बाकी चीजें बताई जाए, डाइवर्सिटी है वो उसके इंस्ट्रूमेंट्स हैं कि आपको अगर सीखना है, जिज्ञासा है, क्यूरियोसिटी है, तो आप अपने जैसे लोगों से नहीं सीख सकते, उसके दूसरे तरह के लोगों से सीख सकते हैं। तो ये सब किस लिए है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ डाइवर्सिटी, क्योंकि हमें नई चीजें सीखनी है।
1: बिल्कुल ठीक कहा प्रोफेसर शर्मा आपने, और आज आपसे मिलकर हमें लगता है न केवल विज्ञान बल्कि जीवन और जीवन के अर्थ को भी समझने में कहीं ना कहीं हम सभी को सहायता मिली है और मिलेगी। फिलहाल आज हमसे जुड़ने के लिए, इतनी अच्छी बातें हमारे सभी श्रोताओं के साथ साझा करने के लिए तहे दिल से धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद दीपशिखा जी। सभी श्रोताओं को मेरी शुभकामनाएं कि उनके कैरियर के लिए, उनकी लाइफ के लिए, के वर्क के लिए, बिजनेस के लिए, ऐसे उन सभी चीजों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।
1: धन्यवाद।
2: अभी आप भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT कानपुर में केमिकल इंजीनियरिंग के एक प्रतिष्ठित प्रोफेसर, भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग यानी DST के पूर्व सचिव, भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी INSA के पूर्व अध्यक्ष, पद्मश्री 2025 से सम्मानित प्रोफेसर आशुतोष शर्मा से दीपशिखा गुप्ता द्वारा की गई ये भेंट वार्ता सुन रहे थे। आकाशवाणी कानपुर के सौजन्य से प्राप्त इस विशेष कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे अजय कटियार और दिलीप झा।
3: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। आइए सुनते हैं गीत मालिका।

लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ों में अभी आप सुन रहे थे फिल्म सरस्वती चंद का ये गीत। आइए अगला गीत सुनते हैं फिल्म नया दौर से, जिसे गाया है आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी ने।

आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल पर आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत मालिका। आइए अब सुनते हैं फिल्म उपकार का ये गीत मुकेश की आवाज में।

0: इस गीत के साथ ही आज का गीत मालिका कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 810 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। 8:45 होने को है, थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार संध्या।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत की विकास गाथा विश्व को निरंतर प्रेरित कर रही है। श्री मोदी ने नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण और उत्पादन के लिए समझौता किया। भारत ने ओमान तट के पास तेल टैंकर पर अमरीकी हमले में 3 भारतीय नाविकों के मारे जाने की कड़ी निंदा की। अमरीका

0: के प्रभारी राजदूत को तलब कर कड़ा विरोध दर्ज कराया। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंची और फीफा विश्व कप आज रात रंगारंग उद्घाटन समारोह के साथ शुरू होगा। पहले मुकाबले में मेजबान मैक्सिको और दक्षिण अफ्रीका होंगे आमने सामने। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत की विकास गाथा विश्व को निरंतर प्रेरित कर रही है। उन्होंने आत्मनिर्भरता के प्रति राष्ट्र के संकल्प को और मजबूत करने पर बल दिया तथा विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में वैश्विक उत्कृष्ट पद्धतियां अपनाने और लागू करने के महत्व को रेखांकित किया। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में पहली बार 28 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल और प्रशासक शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना होगा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी ने बताया कि बैठक के दौरान मुख्यमंत्रियों की दूरदर्शी टिप्पणियों और उनके राज्यों में किए गए कार्यों से नीति आयोग को लाभ हुआ।
1: The topic for the Governing Council meeting.
2: गवर्निंग काउंसिल की बैठक का विषय विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास था। इसमें राज्यों ने अपने कामों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस समावेशी मानव विकास में जीवन के चारों चरण शामिल हैं: बचपन, युवा अवस्था, कामकाजी जीवन और बुढ़ापा।
1: To youth, to working life, to old age.
0: केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता किया है। ये समझौता नई दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा और नागालैंड के मुख्यमंत्री निफियू रियो की उपस्थिति में हुआ। गृहमंत्री ने कहा कि ये निर्णय राष्ट्र प्रथम और सहकारी संघवाद की भावना को दर्शाता है।
3: आज हम सब एक ऐतिहासिक क्षण के साक्षी हो रहे हैं। इससे ऑयल और नेचुरल गैस की एक्सप्लोरेशन की संभावनाएं बढ़ेगी, मिनरल की भी खनन की संभावना खड़ी होती है। दोनों राज्यों ने ये निर्णय किया 50-50% कर भारत के तेल के उत्खनन में बाधा न बने, क्योंकि ये राष्ट्रीय संपदा है और मुझे लगता है कि ये भाव बहुत महत्वपूर्ण है।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: दिशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत ने ओमान तट पर जहाज MT सिटबेलो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। इसमें 3 भारतीयों की मौत हो गई थी। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी मीडिया ब्रीफिंग में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस संबंध में सरकार ने अमेरिका के प्रभारी राजदूत को तलब किया और कड़ा विरोध दर्ज कराया।
3: We attach high importance to the welfare and well-being.
4: हम अपनी नाविकों के कल्याण और सुरक्षा को बहुत महत्व देते हैं। क्षेत्र में जहाजों पर लगातार हो रहे हमले बेहद चिंताजनक हैं। ये हमले तुरंत बंद होने चाहिए। हम संवाद और कूटनीति का भी आह्वान करते हैं ताकि क्षेत्र में जल्द से जल्द शांति और स्थिरता बहाल हो सके।
3: Peace and stability in the region.
2: नाविक कल्याण कोष समिति को प्रत्येक मृतक नाविक के परिवार को 10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने का निर्देश दिया गया है। इस बीच पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि अधिकारियों को MT सेटबेलो से 21 बचे भारतीयों की जल्द वापसी और मृत नाविकों के शवों को शीघ्र स्वदेश लाने के निर्देश दिए गए हैं। उधर आज उत्तरी ओमान के शिनास बंदरगाह के पास एक वाणिज्यिक टैंकर MT जलवीर में आग लग गई। इस जहाज पर करीब 20 भारतीय चालक दल के सदस्य सवार हैं। मस्कट स्थित भारतीय दूतावास स्थानीय अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है और स्थिति पर नजर बनाए हुए है। पिछले 72 घंटों में ओमान के जल क्षेत्र में भारतीय चालक दल वाले

0: जहाजों से जुड़ी तीसरी घटना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए रविवार को फ्रांस और स्लोवाकिया के 5 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने बताया कि प्रधानमंत्री की ये यात्रा अत्यंत उपयोगी और व्यापक होगी। श्री जॉर्ज ने बताया कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के निमंत्रण पर श्री मोदी 52वें G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे।
1: The visit will provide an opportunity.
2: यह दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले विश्व नेताओं के साथ भारत और ग्लोबल साउथ के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने का अवसर प्रदान करेगा। यह G7 शिखर सम्मेलन में भारत की 13वीं भागीदारी और प्रधानमंत्री मोदी की सम्मेलन में लगातार 7वीं भागीदारी होगी।
1: पार्टिसिपेशन एट द समिट।
0: श्री मोदी 14 जून से 16 जून तक स्लोवाकिया में रहेंगे। 1993 में स्लोवाकिया की स्वतंत्रता के बाद ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री का स्लोवाकिया का पहला दौरा होगा। भारत ने मालदीव सरकार को खसरे के टीके की 20,000 खुराक और लगभग 3 टन चिकित्सा सामग्री की खेप भेजी है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि यह सहायता मालदीव में खसरे के बढ़ते मामलों से निपटने और सरकार के राहत प्रयासों को मजबूत करने में सहायक होगी। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि भारत ने वर्ष 2025-26 में अनाज उत्पादन का नया रिकॉर्ड बनाया है। इस दौरान चावल और गेहूं का उत्पादन अब तक के सबसे उच्च स्तर पर पहुंच गया है। श्री जोशी ने कहा कि ये उपलब्धि देश की खाद्य सुरक्षा को और सुदृढ़ करेगी, किसानों को सशक्त बनाएगी और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को आगे बढ़ाएगी। वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि भारत का वस्त्र बाजार वर्ष 2014-15 में लगभग 8,50,000 करोड़ रुपए का था, जो वर्तमान में बढ़कर 16,00,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि कृषि के बाद वस्त्र उद्योग देश में सबसे अधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र है।
3: एक्सपोर्ट भी लगभग 2,33,536 करोड़ का 10 साल में हुआ और मोदी जी के कार्यकाल में 3,25,339 करोड़ का हुआ।
0: पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज बात सरकार द्वारा गरीबों के कल्याण के लिए उठाए गए कदमों के बारे में।
4: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने गरीबों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की। गरीबों के लिए पक्का घर उपलब्ध कराना मोदी सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए 4 करोड़ से अधिक घर आवंटित किए गए। वहीं खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत देश भर के 81 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। ओडिशा के कालाहांडी जिले के इंद्रमणि नायक ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि इस योजना से गरीब लोगों को बहुत लाभ मिल रहा है।
5: गरीब कल्याण योजना जो नरेंद्र मोदी ने जो किया है, वो हमारा फैमिली 5 है जो हमको 5-5 किलो दे रहे हैं, जो अभी पहले से बहुत दिक्कत था, अभी तो बहुत हम लोग अभी सुखी शांति से सब जी रहे हैं।
4: दुनिया की सबसे बड़ी सार्वजनिक स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत जरूरतमंद परिवारों को 5,00,000 रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जा रहा है। देश भर में अब तक लगभग 10,82,00,000 लोगों ने आयुष्मान भारत योजना के तहत कैशलेस इलाज का लाभ लिया है। जम्मू कश्मीर के बारामूला के रहने वाले फैयाज अहमद ने कहा कि यह योजना आपातकालीन परिस्थितियों में गरीब लोगों के इलाज में बहुत मददगार साबित हो रही है।
6: जब से आयुष्मान भारत का स्कीम मोदी जी ने इलाज करा है, कभी भी किसी को जरूरत पड़ती है तो उसको भरपूर और एक आला मयारी इलाज बेहतरीन अस्पताल में मिलता है और राइट टाइम पे मिलता है, कोई क्यू में रहना नहीं पड़ता। मोदी जी हिस्ट्री के बेहतरीन कस्टोडियंस में से एक है जो अपने आवाम का एक बेहतरीन कस्टोडियन है।
4: वहीं प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों पर लोगों को सस्ती दरों पर जेनरिक दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की, जिसके तहत अब तक 10,55,00,000 से अधिक महिलाओं को मुफ्त LPG कनेक्शन दिए गए। वहीं सड़क किनारे कारोबार करने वाले रेहड़ी पटरी विक्रेताओं को ऋण देने के लिए शुरू की गई PM स्वनिधि योजना के तहत अब तक 1,12,00,000 से अधिक लोगों को ऋण दिए जा चुके हैं। भारत ने सामाजिक सुरक्षा में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। वर्ष 2015 में 19% लोगों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिल रहा था, जो वर्ष 2025 में बढ़कर 64% से अधिक हो गया है। सरकार द्वारा किए गए प्रयासों से

0: लगभग 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभी।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: ये आकाशवाणी है। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट आज से रंगारंग कार्यक्रम के साथ शुरू हो रहा है। उद्घाटन मैच में आज रात 12:30 बजे से मेजबान मैक्सिको और दक्षिण अफ्रीका आमने सामने होंगे। ये टूर्नामेंट 19 जुलाई तक अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में आयोजित किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
4: फीफा विश्व कप का ये अब तक का सबसे बड़ा संस्करण है। इसमें पहली बार 48 टीम भाग ले रही हैं। मेजबान देश अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको को विश्व कप में सीधे प्रवेश मिला है। विश्व कप के इतिहास में अब तक ब्राजील, इटली, जर्मनी, स्पेन, अर्जेंटीना, इंग्लैंड, फ्रांस और उरुग्वे ने फीफा ट्रॉफी जीती है। टूर्नामेंट में 12 ग्रुप हैं। प्रत्येक ग्रुप में 4-4 टीमें शामिल हैं। हर ग्रुप की शीर्ष दो टीम सीधे नॉकआउट चरण में प्रवेश करेगी। प्रतियोगिता में कुल 104 मुकाबले खेले जाएंगे। इसमें 72 ग्रुप स्टेज और 32 नॉकआउट मुकाबले शामिल होंगे। फाइनल 19 जुलाई को खेला जाएगा। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
3: पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने ईशा रानी बरुआ को और तन्वी ने मालविका बंसोड़ को हराया। मौसम विभाग ने शनिवार तक देश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है और कल शाम तक तेज हवाओं और ओलावृष्टि की आशंका व्यक्त की है। पूर्वोत्तर भारत और हिमालय की तराई वाले पश्चिम बंगाल में 17 जून तक मूसलाधार बारिश का अनुमान है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में कल शाम तक बारिश होने का अनुमान है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत की विकास गाथा विश्व को निरंतर प्रेरित कर रही है। श्री मोदी ने नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण और उत्पादन के लिए समझौता किया। भारत ने ओमान तट के पास तेल टैंकर पर अमरीकी हमले में 3 भारतीय नाविकों के मारे जाने की निंदा की। अमरीका के प्रभारी राजदूत को तलब कर कड़ा विरोध दर्ज कराया। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंची और फीफा विश्व कप आज रात रंगारंग उद्घाटन समारोह के साथ शुरू होगा। पहले मुकाबले में मेजबान मैक्सिको और दक्षिण अफ्रीका होंगे आमने सामने। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शमीम अहमद। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की तरक्की की दास्तान दुनिया को तहरीक देती रहेगी, जबकि बड़ी मईशतों को गैर यकीनी सूरत हाल का सामना है। उन्होंने नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग की सदारत की। मरकज, आसाम और नागालैंड की हुकूमतों ने खाम तेल और कुदरती गैस की तलाश और पैदावार के सिलसिले में एक मुफाहमतनामे पर दस्तखत किए हैं। भारत ने उमान के साहिल के नज़दीक तेल के एक जहाज पर अमरीकी हमलों की सख्त मजम्मत की है, जिसमें 3 भारतीय मल्लाहों की जानें तलफ हो गईं। उसने अमरीका के चार्ज डी अफेयर्स को तलब करके एहतजाज दर्ज किया है। बैडमिंटन में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा ऑस्ट्रेलिया ओपन के ख्वातीन के सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। और आज रात फीफा आलमी कप 2026 शुरू हो रहा है। मैक्सिको के स्टेडियो एस्टिका में पहले मैच में मैक्सिको और जनूबी अफ्रीका आमने सामने होंगे। अब खबरें तफसील से।

चाहे मदीना आपके नाम, काबा हो या अर्ज़ मदीना, कौसर हो या अर्श मजीद, काबा हो या अर्ज़ मदीना, कौसर हो या अर्श मजीद, मालिक कुल का सब सरमाया चाहे मदीना आपके नाम, उसकी किताब नूर का आका आप ही तो दीवा चाहें, उसकी किताब नूर का आका आप ही तो दीवा चाहें, लफ्ज़ कुन का सारा किस्सा चाहे मदीना आपके नाम, लफ्ज़ कुन का सारा किस्सा चाहे मदीना आपके नाम।

فأس

وإنه لفي زبر الأولين أو

أفبعذابنا يستعجلون.

وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض

0: मेरे दिल में तो सिर्फ प्यार ही प्यार है, चारों तरफ दूर दूर तक। एक दिन वो सारा प्यार एक जगह सिमट कर इकट्ठा हो गया। मैंने पास जाकर गौर से जो देखा तो वो तुम थी।
1: ये तुम बिल्कुल सच कह रहे हो?
0: सच, सिर्फ सच, सच के सिवा कुछ नहीं।
1: तब ठीक है।

أرضنا بعدنا ما يعود.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत की विकास गाथा विश्व को निरंतर प्रेरित कर रही है। उन्होंने आत्मनिर्भरता के प्रति राष्ट्र के संकल्प को और मजबूत करने पर बल दिया और विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में वैश्विक उत्कृष्ट पद्धतियां अपनाने और लागू करने के महत्व को रेखांकित किया। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में पहली बार 28 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल और प्रशासक शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना होगा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी ने बताया कि बैठक के दौरान मुख्यमंत्रियों की दूरदर्शी टिप्पणियों और उनके राज्यों के किए गए कार्यों से नीति आयोग को लाभ हुआ।
1: The topic for the Governing Council meeting.
2: गवर्निंग काउंसिल की बैठक का विषय विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास था। इसमें राज्यों ने अपने कामों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस समावेशी मानव विकास में जीवन के चारों चरण शामिल हैं: बचपन, युवा अवस्था, कामकाजी जीवन और बुढ़ापा।
0: केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता किया। ये समझौता नई दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व सरमा और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो की उपस्थिति में हुआ। गृहमंत्री ने कहा कि ये निर्णय राष्ट्र प्रथम और सहकारी संघवाद की भावना को दर्शाता है।
3: आज हम सब एक ऐतिहासिक क्षण के साक्षी हो रहे हैं। इससे ऑयल और नेचुरल गैस की एक्सप्लोरेशन की संभावनाएं बढ़ेगी, मिनरल की भी खनन की संभावना खड़ी होती है। दोनों राज्यों ने ये निर्णय किया 50-50% कर भारत के तेल के उत्खनन में बाधा न बने, क्योंकि ये राष्ट्रीय संपदा है और मुझे लगता है कि ये भाव बहुत महत्वपूर्ण है।
0: भारत ने ओमान तट पर जहाज एमटी सेटेबेलो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। इसमें 3 भारतीयों की मौत हो गई थी। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी मीडिया ब्रीफिंग में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस संबंध में सरकार ने अमेरिका के प्रभारी राजदूत को तलब किया और कड़ा विरोध दर्ज कराया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कल नई दिल्ली में वैश्विक विकास शिखर सम्मेलन की आभासी बैठक में भाग लिया। वित्त मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट

0: ने बताया कि सम्मेलन में विकसित और उभरती अर्थव्यवस्थाओं के नेताओं ने कुशल वैश्विक ढांचे पर आधारित संतुलित विकास को बढ़ावा देने के उपायों पर चर्चा की। सम्मेलन की अध्यक्षता फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने की। भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए श्रीमती सीतारामन ने कहा कि आज परस्पर जुड़ी दुनिया में समृद्धि और चुनौतियां दोनों साझा हैं, लेकिन संघर्षों और अनिश्चितता के परिणाम विकासशील देशों और औद्योगिक एवं तकनीकी पिछड़ेपन का सामना कर रहे ग्लोबल साउथ देशों पर असमान रूप से पड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि इससे उबरने में समन्वित वैश्विक कार्रवाई की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि भारत अधिक लचीली, समावेशी और समृद्ध वैश्विक अर्थव्यवस्था स्थापित करने और साझा विकास के साझा समाधान आगे बढ़ाने के लिए सभी भागीदार देशों के साथ मिलकर काम करने को प्रतिबद्ध है। वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि भारत का वस्त्र बाजार वर्ष 2014-15 में लगभग 8,50,000 करोड़ रुपए का था, जो वर्तमान में बढ़कर 16,00,000 करोड़ रुपए से अधिक का हो गया है। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि कृषि के बाद वस्त्र उद्योग देश में सबसे अधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र है। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट के पहले मैच में मेजबान मैक्सिको और दक्षिण अफ्रीका के बीच मुकाबला हो रहा है। अंतिम समाचार मिलने तक मैक्सिको एक गोल की बढ़त बना चुका था। ये टूर्नामेंट 19 जुलाई तक अमरीका, कनाडा और मैक्सिको में आयोजित किया जा रहा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by R.S. Raghu. Prime Minister Narendra Modi has said when many major economies are facing uncertainty and economic challenges, India's growth story continues to inspire the world. Chairing the 11th Governing Council meeting of Niti Aayog at Rashtrapati Bhavan in New Delhi, he emphasized the need to further strengthen the nation's resolve towards self-reliance and highlighted the importance of adopting and implementing global best practices, particularly in the renewable energy sector. Mr. Modi said, as India progresses towards achieving the vision of Viksit Bharat, the collective responsibility of the centre and states becomes even greater. The Prime Minister urged states to focus on one district, one product initiatives and develop export-oriented strategies around it. He also identified defence manufacturing as an emerging sector where India is establishing a distinct identity and encouraged the states to formulate policies to leverage the opportunities arising from its growth. The theme of this year's meeting is Inclusive Human Development for Viksit Bharat at 2047. Briefing media after the conclusion of the Governing Council meeting, Niti Aayog Vice Chairperson Ashok Kumar Lahiri said the theme covers all aspects of life including education, health and employment. A tripartite memorandum of understanding MOU was signed between the centre and the governments of Assam and Nagaland for exploration and production of crude oil and natural gas along the Assam-Nagaland border. The MOU was signed in New Delhi in the presence of Union Home Minister Amit Shah, Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma and Nagaland Chief Minister Naiphiu Rio. Speaking on the occasion, Mr. Shah termed it a historic moment as this initiative will enhance the prospects of oil and natural gas exploration and opens up possibilities for mineral mining as well. President Draupadi Murmu will be on a two-day visit to Uttarakhand starting today. During the visit, the President will review the passing out parade of 158th regular course and 141st technical graduate course at the Indian Military Academy, Dehradun. Ministry of Agriculture and Farmers Welfare has said that the horticulture production in the country is expected to be about 3,778 lakh tons in 2025-26, showing an increase of 70.39 lakh ton over 2024-25. According to the second advance estimates of 2025-26 of area and production of various horticulture crops released by the ministry, horticulture cultivation area in the country is likely to reach 301.51 lakh hectare in 2025-26, showing an increase of 0.14 lakh hectare over 2024-25. According to the advance estimates, fruit production is also expected to be over 1,214 lakh tons due to increased production of banana, mango, papaya, apple and guava.

यहाँ से अजी हो हो। कोई कब तक कोई कब तक ऐसों के पास आए, जिनके दिल में औरों का हो ठिकाना।

0: समय के जाना जाना।
1: मोहम्मद रफी साहब की आवाज में ये प्यारा सा गीत आइए सुनते हैं फिल्म हमराही से।

इसी के साथ श्रोताओं, गीत सुनहरे कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं ये अंतिम गीत श्री 420 से लता मंगेशकर और मन्ना डे की मधुर आवाज में।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत की विकास गाथा विश्व को निरंतर प्रेरित कर रही है। उन्होंने आत्मनिर्भरता के प्रति राष्ट्र के संकल्प को और मजबूत करने पर बल दिया और विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में वैश्विक उत्कृष्ट पद्धतियां अपनाने और लागू करने के महत्व को रेखांकित किया। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में पहली बार 28 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल और प्रशासक शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना होगा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी ने बताया कि बैठक के दौरान मुख्यमंत्रियों की दूरदर्शी टिप्पणियों और उनके राज्यों में किए गए कार्यों से नीति आयोग को लाभ हुआ।
1: The topic for the Governing Council meeting.
2: गवर्निंग काउंसिल की बैठक का विषय विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास था। इसमें राज्यों ने अपने कामों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस समावेशी मानव विकास में जीवन के चारों चरण शामिल हैं: बचपन, युवा अवस्था, कामकाजी जीवन और बुढ़ापा।
0: केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता किया। ये समझौता नई दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो की उपस्थिति में हुआ। गृहमंत्री ने कहा कि ये निर्णय राष्ट्र प्रथम और सहकारी संघवाद की भावना को दर्शाता है।
3: आज हम सब एक ऐतिहासिक क्षण के साक्षी हो रहे हैं। इससे ऑयल और नेचुरल गैस की एक्सप्लोरेशन की संभावनाएं बढ़ेगी, मिनरल की भी खनन की संभावना खड़ी होती है। दोनों राज्यों ने ये निर्णय किया 50-50% कर भारत के तेल के उत्खनन में बाधा न बने, क्योंकि ये राष्ट्रीय संपदा है और मुझे लगता है कि ये भाव बहुत महत्वपूर्ण है।
0: भारत ने ओमान तट पर जहाज एमटी सेटेबेलो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। इसमें 3 भारतीयों की मौत हो गई थी। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी मीडिया ब्रीफिंग में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस संबंध में सरकार ने अमरीका के प्रभारी राजदूत को तलब किया और कड़ा विरोध दर्ज कराया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि दुनिया में चल रहे संघर्ष अब क्षेत्रीय सीमाओं से परे पहुंचकर व्यापक स्तर पर नुकसान पहुंचा रहे हैं। फिनलैंड में हर वर्ष आयोजित होने वाले प्रमुख विदेश नीति और सुरक्षा मंच कुलतारंता वार्ता में फिनलैंड की विदेश मंत्री एलिना मारिया बाल्टोनेन और संयुक्त अरब अमीरात की सहायक विदेश मंत्री लाना नुसेबेह के साथ उभरती शक्तियों और नई भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा पर चर्चा में उन्होंने ये बात कही। डॉ. जयशंकर ने संघर्षों के दुष्परिणाम कम करने और अनुकूल कूटनीतिक परिस्थितियां निर्मित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के निरंतर प्रयास की आवश्यकता पर भी बल दिया। उन्होंने दोहराया कि भारत के ऊर्जा

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत के विकास गाथा विश्व को निरंतर प्रेरित कर रही है। उन्होंने आत्मनिर्भरता के प्रति राष्ट्र के संकल्प को और मजबूत करने पर बल दिया और विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में वैश्विक उत्कृष्ट पद्धतियां अपनाने और लागू करने के महत्व को रेखांकित किया। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में पहली बार 28 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल और प्रशासक शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना होगा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी ने बताया कि बैठक के दौरान मुख्यमंत्रियों की दूरदर्शी टिप्पणियों और उनके राज्यों में किए गए कार्यों से नीति आयोग को लाभ हुआ।
1: The topic for the Governing Council meeting.
2: गवर्निंग काउंसिल की बैठक का विषय विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास था। इसमें राज्यों ने अपने कामों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस समावेशी मानव विकास में जीवन के चारों चरण शामिल हैं: बचपन, युवा अवस्था, कामकाजी जीवन और बुढ़ापा।
0: केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता किया। ये समझौता नई दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो की उपस्थिति में हुआ। गृहमंत्री ने कहा कि ये निर्णय राष्ट्र प्रथम और सहकारी संघवाद की भावना को दर्शाता है।
3: आज हम सब एक ऐतिहासिक क्षण के साक्षी हो रहे हैं। इससे ऑयल और नेचुरल गैस की एक्सप्लोरेशन की संभावनाएं बढ़ेगी, मिनरल की भी खनन की संभावना खड़ी होती है। दोनों राज्यों ने ये निर्णय किया 50-50% कर भारत के तेल के उत्खनन में बाधा न बने, क्योंकि ये राष्ट्रीय संपदा है और मुझे लगता है कि ये भाव बहुत महत्वपूर्ण है।
0: भारत ने ओमान तट पर जहाज एमटी सेटेबेलो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। इसमें 3 भारतीयों की मौत हो गई थी। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी मीडिया ब्रीफिंग में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस संबंध में सरकार ने अमरीका के प्रभारी राजदूत को तलब किया और कड़ा विरोध दर्ज कराया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 2 दिन के उत्तराखंड दौरे पर रहेंगी। इस दौरान राष्ट्रपति देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकादमी में 158वें नियमित पाठ्यक्रम और 141वें तकनीकी स्नातक पाठ्यक्रम की पासिंग आउट परेड का निरीक्षण करेंगी। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए के 4 उम्मीदवार कल आंध्र प्रदेश से राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं। निर्वाचित उम्मीदवार तेलुगुदेशम पार्टी टीडीपी के बश्यम रामकृष्ण, सना सतीश बाबू और चिंत कयाला विजय तथा जनसेना पार्टी के लिंगम नेनी रमेश हैं। नामांकन प्रक्रिया पूरी होने और किसी अन्य उम्मीदवार के चुनाव न लड़ने के कारण रिटर्निंग ऑफिसर आर वनिता रानी ने उनके चुनाव की घोषणा की। रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कल कहा कि जैव औषधीय उत्पाद आधुनिक स्वास्थ्य सेवा के भविष्य को आकार दे रहे हैं और इस क्षेत्र में भारत वैश्विक स्तर पर अग्रणी बनने की ओर अग्रसर है। नई दिल्ली में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल एसोचेम द्वारा आयोजित द्वितीय फार्मा शिखर सम्मेलन एवं पुरस्कार समारोह में श्रीमती अनुप्रिया पटेल ने कहा कि बायोफार्मा शक्ति पहल के तहत वर्ष 2047 तक जीवित जीवों से प्राप्त होने वाले सामग्री से बनाई जाने वाली 100 बायोलॉजिक्स आरंभ करने की योजना है, जो विकसित भारत और स्वस्थ भारत के दृष्टि योजना में योगदान देंगी। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट के पहले मैच में मेजबान मैक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हरा दिया है। मैक्सिको के खिलाड़ियों ने शुरुआत से ही खेल पर नियंत्रण बनाए रखा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: This is Akashvani, the news read by R.S. Raghu. Prime Minister Narendra Modi has said when many major economies are facing uncertainty and economic challenges, India's growth story continues to inspire the world. Chairing the 11th Governing Council meeting of Niti Aayog at Rashtrapati Bhavan in New Delhi, he emphasized the need to further strengthen the nation's resolve towards self-reliance and highlighted the importance of adopting and implementing global best practices, particularly in the renewable energy sector. Mr. Modi said, as India progresses towards achieving the vision of Viksit Bharat, the collective responsibility of the centre and states becomes even greater. The Prime Minister urged states to focus on one district, one product initiatives and develop export-oriented strategies around it. He also identified defence manufacturing as an emerging sector where India is establishing a distinct identity and encouraged the states to formulate policies to leverage the opportunities arising from its growth. The theme of this year's meeting is Inclusive Human Development for Viksit Bharat at 2047. Briefing media after the conclusion of the Governing Council meeting, Niti Aayog Vice Chairperson Ashok Kumar Lahiri said the theme covers all aspects of life, including health, education and employment. Union Finance Minister Nirmala Sitharaman has participated in the virtual meeting on Global Convergence for Growth Summit from New Delhi. Ministry of Finance in a social media post said that the summit was held to bring together leaders of advanced and emerging economies to discuss ways of supporting a balanced growth anchored in an efficient global framework. French President Emmanuel Macron presided over the summit. During her intervention at the summit representing India, Ms. Sitharaman said that in today's interconnected world, prosperity and challenges are shared, but the consequences of conflicts and uncertainty falls disproportionately on developing countries and the Global South. She noted that the situation demands coordinated global action. President Draupadi Murmu will be on a two-day visit to Uttarakhand starting today. During the visit, the President will review the passing out parade of 158th regular course and 141st technical graduate course at the Indian Military Academy, Dehradun. The Ministry of Panchayati Raj has said that four Panchayati Raj related initiatives have been selected for the National Awards for E-Governance 2026. The Ministry said that it highlights the growing role of Gram Panchayat in advancing digital governance and citizen-centric service delivery. It said the Panchayat Advancement Index has received the Gold Award under the category of Digital Transformation by Use of Data Analytics in Digital Platforms. It added that the index assesses the performance of Gram Panchayat across the country based on indicators linked to localized sustainable development goals. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal will be on a two-day visit to Switzerland starting today. During the visit, the minister will meet President of Switzerland Guy Parmelin and State Secretary for Economic Affairs of Switzerland Helene Budliger-Artieda. Mr. Goyal will also interact with leading representatives of the Swiss pharmaceutical industry. Ministry of Commerce and Industry said that the visit will strengthen the India-Switzerland economic partnership and facilitate discussions on implementation of the India-European Free Trade Association EFTA Trade and Economic Partnership Agreement. The FIFA World Cup 2026 kicked off in Mexico City after a grand opening ceremony. Co-host Mexico defeated South Africa by 2-0 in the inaugural match at the Azteca Stadium. Julian Quiñones scored Mexico's opening goal in the 9th minute to give the hosts a 1-0 lead. Later, Raul Jimenez scored in the 67th minute, making it 2-0 for Mexico. Group A clash marks beginning of the biggest World Cup of history, featuring 48 teams and 104 matches across Canada, Mexico and United States. Earlier, the grand opening ceremony was a celebration of global music and culture headlined by Shakira and Burna Boy, who performed Rai Rai, the official song of the tournament. In badminton, PV Sindhu and Tanvi Sharma advanced to the women's single quarterfinals of Australian Open in Sydney yesterday. Two-time Olympic medalist Sindhu defeated compatriot Isharani Barua 20-21-12 in the round of 16. She will next face Chen Su Yu. In another All-India pre-quarterfinal clash, Tanvi Sharma overpowered Malvika Bansod. And that is the end of this news bulletin.
0: आकाशवाणी दिल्ली का ये AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। रात्रि के 3:10 हुए हैं। लीजिए अब प्रस्तुत है गजल। आज के इस कार्यक्रम में आपको सबसे पहले सुनवा रहे हैं विनोद सहगल की आवाज में ये गजल, ओ बेवफा हसीना।
5: ओ बेवफा हसीना, मुश्किल कर दिए जीना।
0: ये सुनिए जगजीत सिंह की आवाज में ये गजल आपको देखकर।

0: अभी आप सुन रहे थे गजलें जी, आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज़ 24/7 चैनल है। रात्रि के 4 बजने वाले हैं। कुछ क्षणों में आप सुनेंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना।
1: प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम।

மனசின்னுள்ளே மகிமகள் வந்தால் மகேஸ்வரன் வரும்.

अब आप सुनेंगे भगवान कृष्ण को समर्पित एक रचना, स्वर चेरतला आर गोपालन नायर और के राधामणि के हैं।

0: इसके साथ ही आज का अर्चना कार्यक्रम अब समाप्त होता है।
1: आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। रात्रि के ठीक 4:20 हुए हैं। आइए सुनिए कर्नाटक संगीत का कार्यक्रम नाद ब्रह्मा। इसके अंतर्गत आज आपको सुनवाने जा रहे हैं गायन। कलाकार हैं TK रंगाचारी। आपने प्रस्तुत किया है रागम शंकर भरणम जो मिश्र चापो ताल में निबद्ध है। आपके साथ वायलिन पर संगत किया है M चंद्रशेखरन ने। तो लीजिए सुनिए TK रंगाचारी का गाया राग शंकर भरणम।

कर्नाटक संगीत के कार्यक्रम नाद ब्रह्म में अभी आप सुन रहे थे टी के रंगचारी का गाया रागम शंकर वर्णम, जो मिश्र चापुताल में निबद्ध था। आपके साथ वॉलन पर संगत किया एम चंद्रशेखरन ने।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 22वीं तिथि, तदनुसार 12 जून 2026। सुबह के 4:53 हुए हैं। हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

0: आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। आइए आपको आज प्रसारित होने वाले कुछ कार्यक्रमों की जानकारी दे दें। अब से कुछ ही देर में यानी 5:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम आओ योग करें। इसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे योग भ्रामरी प्राणायाम और भुजंगासन। पांच बजकर 20 मिनट पर देशभक्ति गीत आप सुन सकेंगे। 5:30 हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वर रंजनी प्रसारित किया जाएगा। इसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे गायन, कलाकार होंगी अम्रपाली। आपने प्रस्तुत आप सुन सकेंगे राग ललित। छह बजकर 10 मिनट पर भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना प्रसारित किया जाएगा और 6:40 पर सुनिएगा चिंतन। इसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे सुमित्रा नंदन पंत के विचार। रामचरितमानस से पाठ इस कार्यक्रम का समय रहेगा 6:45। आज आप सुनेंगे बालकांड का भाग 84। छह बजकर 55 मिनट पर सुनिएगा संस्कृत में समाचार और फिर हिंदी और अंग्रेजी में समाचार प्रसारित किए जाएंगे। 7:10 पर सुनिएगा संगीतिका। इसके अंतर्गत आज आपको आलोक कुमार झा के गाए भजन सुनाए जाएंगे। गीत ओ भरी गुड मॉर्निंग ये कार्यक्रम सुनिएगा 7:30। आठ बजकर 45 मिनट पर शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वरगंगा प्रसारित किया जाएगा। इसके अंतर्गत आज सुनिएगा गायन पंडित गोस्वामी गोकुल लोत्सव जी का और आपने प्रस्तुत किया है राग गुजरी तोड़ी। 9:15 पर गांधी चर्चा सुनवाई जाएगी। इसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे वार्ता, विषय रहेगा स्वदेशी और स्वावलंबन पर महात्मा गांधी के विचार। वार्ताकार होंगी मधु शर्मा। 9:30 पंजाबी कार्यक्रम मिट्टी दी महक प्रसारित की जाएगी, प्रस्तुत करेंगे जसपाल कौर। 10:10 पर सुनिएगा फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी पसंद। 11:10 पर सबरस प्रसारित किया जाएगा सुरमंजरी, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत पर आधारित कार्यक्रम के अंतर्गत आज आप सुनेंगे चंद्रन नाथ भट्टाचार्य का सितार वादन। आज होगा राग भीम पलासी। इतिहास प्रसारित होने वाले कुछ कार्यक्रमों की जानकारी। आकाशवाणी का ये दिल्ली केंद्र है। 5:00 वाले हैं, लीजिए अब सुनिए समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत का विकास विश्व को लगातार प्रेरित कर रहा है। उन्होंने आत्मनिर्भरता के प्रति राष्ट्र के संकल्प को और मजबूत करने पर बल दिया और विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में वैश्विक उत्कृष्ट पद्धतियां अपनाने और लागू करने के महत्व पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में पहली बार 28 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल और प्रशासक शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना होगा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी ने बताया कि बैठक के दौरान मुख्यमंत्रियों की दूरदर्शी टिप्पणियों और उनके राज्यों में किए गए कार्यों से नीति आयोग को लाभ मिला है।
2: The topic for the Governing Council meeting.
3: गवर्निंग काउंसिल की बैठक का विषय विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास था। इसमें राज्यों ने अपने कामों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस समावेशी मानव विकास में जीवन के चारों चरण शामिल हैं: बचपन, युवा अवस्था, कामकाजी जीवन और बुढ़ापा।
2: To youth, to working life, to old age.
1: केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता किया है। ये समझौता नई दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफियो रियू की उपस्थिति में हुआ। गृहमंत्री ने कहा कि ये निर्णय राष्ट्र प्रथम और सहकारी संघवाद की भावना को दर्शाता है। खाड़ी क्षेत्र में बदलती समुद्री सुरक्षा स्थिति के मद्देनजर भारतीय नाविकों की सुरक्षा के लिए सरकार उच्चतम स्तर पर सतर्कता बरत रही है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि नौवहन महानिदेशालय ने प्रभावित जल क्षेत्र से गुजरने वाले भारतीय और विदेशी ध्वज वाले जहाजों पर कार्यरत सभी भारतीय नाविकों को अत्यधिक सावधानी और सतर्कता बरतने की सलाह दी है। मंत्रालय ने जहाज संचालकों, प्रबंधकों और पोत परिवहन कंपनियों को भी मौजूदा समुद्री सुरक्षा नियमों का सख्ती से पालन करने, स्थिति की पूरी जानकारी रखने और सरकार तथा सक्षम अंतर्राष्ट्रीय अधिकारियों द्वारा जारी निर्देशों पर लगातार नजर रखने की सलाह दी है। भारत ने ओमान तट पर जहाज एमटी सट्टेबेलो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। इसमें 3 भारतीयों की मौत हो गई थी। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय मीडिया ब्रीफिंग में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस संबंध में सरकार ने अमेरिका के प्रभारी राजदूत को तलब किया और कड़ा विरोध दर्ज किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 2 दिन के उत्तराखंड दौरे पर रहेंगी। इस दौरान राष्ट्रपति देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकादमी में 158वें नियमित पाठ्यक्रम और 141वें तकनीकी स्नातक पाठ्यक्रम की पासिंग आउट परेड का निरीक्षण करेंगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 2 दिन के लिए स्विट्जरलैंड की यात्रा पर रहेंगे। श्री गोयल स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाय पार्मेलेन और आर्थिक मामलों की राज्य सचिव हेलेन बुडलीगर आर्टेडा से मुलाकात करेंगे। वे स्विस दवा उद्योग के प्रमुख प्रतिनिधियों से भी बातचीत करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि ये यात्रा दोनों देशों की आर्थिक साझेदारी को मजबूत करेगी। मणिपुर भाजपा अध्यक्ष ए शारदा देवी राज्य की एकमात्र राज्यसभा सीट के लिए निर्विरोध निर्वाचित हो गई हैं। मणिपुर विधानसभा सचिवालय के सचिव और निर्वाचन अधिकारी ने उन्हें कल औपचारिक रूप से विजेता घोषित किया। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि 2025-26 में देश में बागवानी उत्पादन लगभग 3,778 लाख टन रहने का अनुमान है। 2024-25 की तुलना में ये 70.39 लाख टन की वृद्धि को दर्शाता है। और फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट के पहले मैच में मेजबान मेक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हरा दिया है। मेक्सिको ने 9वें और 67वें मिनट में गोल कर मैच अपने पक्ष में कर लिया। ये टूर्नामेंट 20 जुलाई तक अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में आयोजित किया जा रहा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: This is Akashvani. The news read by R.S. Raghu. Prime Minister Narendra Modi has said when many major economies are facing uncertainty and economic challenges, India's growth story continues to inspire the world. Chairing the 11th Governing Council meeting of Niti Aayog at Rashtrapati Bhavan Cultural Centre in New Delhi, he emphasised the need to further strengthen the nation's resolve towards self-reliance and highlighted the importance of adopting and implementing global best practices, particularly in the renewable energy sector. Mr. Modi said, as India progresses towards achieving the vision of Viksit Bharat, the collective responsibility of the centre and state becomes even greater. This year's theme was Inclusive Human Development for Viksit Bharat at 2047. Union Finance Minister Nirmala Sitharaman participated in the virtual meeting on Global Convergence for Growth Summit from New Delhi yesterday. Ministry of Finance, in a social media post, said that the summit was held to bring together leaders of advanced and emerging economies to discuss ways of supporting a balanced growth anchored in an efficient global framework. French President Emmanuel Macron presided over the summit. President Draupadi Murmu will be on a two-day visit to Uttarakhand beginning today. During the visit, the President will review the passing out parade of 158th regular course and 141st technical graduate course at the Indian Military Academy, Dehradun. The Ministry of Panchayati Raj has said that four Panchayati Raj-related initiatives have been selected for the National Awards for E-Governance 2026. The Ministry said that it highlights the growing role of Gram Panchayat in advancing digital governance and citizen-centric delivery. It said that the Panchayat Advancement Index has received the Gold Award under the category of Digital Transformation by Use of Data Analytics in Digital Platforms. It added that the index assesses the performance of Gram Panchayat across the country based on indicators linked to localized sustainable development goals. The ministry said that Kadepur Gram Panchayat in Sangli district of Maharashtra has won the gold award, while Bijoy Nagar Gram Panchayat in West Tripura district of Tripura has secured the silver award under the category of grassroots level initiatives by Gram Panchayat for deepening and widening of service delivery. As India enters the kharif sowing season, a WhatsApp-based AI advisory service named Oilseeds Kisan Mitra emerged as a powerful tool for the research-based knowledge about oilseed cultivation directly to farmers' mobile phones, anytime and in their own language. The Ministry of Agriculture and Farmers' Welfare said that the initiative enables any oilseed farmer in India to access free, trusted and instant crop advisory simply through WhatsApp. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar has expressed concern that ongoing conflicts are imposing costs and triggering changes far beyond the regions. The minister said this while participating in a discussion with his Finnish counterpart Elina Valtonen and Assistant Foreign Minister of UAE Lana Nusseibeh on emerging powers and the new geopolitical competition at the Kulat Taranta talks in Finland. Dr. Jayashankar also stressed the need for the international community to continue efforts to mitigate their consequences and create conditions for diplomacy. He emphasized the importance of de-risking and diversifying supply chains, building greater resilience and redundancy in an increasingly volatile world. He further reiterated that India's energy choices are guided by national interest, with purchases based on considerations of affordability and availability. In badminton, PV Sindhu and Tanvi Sharma advanced to the women's singles quarterfinals of the Australian Open in Sydney today. Two-time Olympic medalist Sindhu defeated compatriot Isharani Varua 22-20, 21-12 in the round of 16. She will next face Chen Su Yu in another All-India pre-quarterfinal clash. Tanvi Sharma overpowered Malvika Bansod 21-13, 21-15. And that is the end of this news bulletin.
0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। सुबह के 5:10 हुए हैं। लीजिए अब प्रस्तुत है कार्यक्रम आओ योग करें।

नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर हिमानी चौखन। मैं हूं आपकी योग विशेषज्ञ। जैसे कि आप जानते हैं कि आज के दौर में ऐसा लगता है कि मानो तनाव हमारी जिंदगी का एक हिस्सा बन गया है। जिसे देखो वह तनाव से पीड़ित है। यहाँ तक कि आजकल बच्चे भी तनाव का शिकार होते जा रहे हैं। यदि तनाव से मुक्त पाना है तो इसका एक ही प्रभावी तरीका है और वह है योग। वैसे तो हर योग की अधिकतर क्रियाएं करने से आप तनाव से मुक्त हो सकते हैं, परंतु प्राणायाम में भ्रामरी प्राणायाम सबसे ज्यादा इफेक्टिव यानी सर्वश्रेष्ठ माना गया है तनाव को कम करने के लिए। तो भ्रामरी प्राणायाम को करने के लिए आइए सीखते हैं कि किस प्रकार भ्रामरी प्राणायाम किया जाता है। भ्रामरी शब्द भ्रमर से लिया गया है, जिसका मुख्य अर्थ है भंवरा। इस प्राणायाम के अभ्यास के समय निकलने वाला स्वर यानी निकलने वाली आवाज भ्रमर के गुंजन के स्वर की तरह ही होती है। आइए सीखते हैं अभ्यास विधि। सबसे पहले आप किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएं और आंखें बंद कर लें। उसके पश्चात आप शंखमुखी मुद्रा धारण करें। यदि आप शंखमुखी मुद्रा नहीं जानते तो आप अपने दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में भी रख सकते हैं। धीरे धीरे नियंत्रण रूप से श्वास को बाहर छोड़ते हुए धीरे धीरे श्वास भरें और छोड़ते समय भंवरे जैसी आवाज को निकालने का प्रयास करें। इस तरह भ्रामरी प्राणायाम का एक चक्र माना जाता है और हर बार जब भी आप भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो इस अभ्यास को कम से कम 4 से 5 बार अवश्य दोहराएं। भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास तनाव से मुक्त करता है और चिंता, क्रोध और अति सक्रियता को घटाता है। भंवरे जैसी आवाज का प्रतिध्वनि प्रभाव आपके मस्तिष्क और आपकी कोशिकाएं, आपकी तंत्रिकाओं पर भी बहुत ज्यादा प्रभाव डालता है। यह महत्वपूर्ण शांतिकारक अभ्यास है, मतलब इस अभ्यास को करने से आपका तनाव काफी हद तक कम होता है और आपको एक शांति का अनुभव होता है। यह एकाग्रता और ध्यान की भी आरंभिक अवस्था मानी जाती है। तो आज के सेशन में हमने सीखा कि भ्रामरी प्राणायाम से आप किस प्रकार अपने तनाव को कम कर सकते हैं। प्रतिदिन करें योग, रहे निरोग।